सुप्रभात आगरा। आप सभी श्रोताओं की सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। साथियों, आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के

फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से, जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में, इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सभी श्रोताओं की सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। इस समय हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम सभी देशवासियों का एक एक पग देश की प्रगति के लिए होना चाहिए, देश के सम्मान के लिए होना चाहिए। आइए मिलकर आगे बढ़ें और पूरे संसार में, पूरे विश्व में देश को सम्मान के लिए प्रगति पर चलते रहें।

जागरूकता रूपी बादलों की घटा चारों ओर छा गई है। ज्ञान की बूंदें रिमझिम बरस रही हैं। रेमन, उठ और अपने मन रूपी खेत को संभाल, अन्यथा सारा पानी फसल बहा ले जाएगी। विवेकवान बन और अपने जीवन को सार्थक कर।

हे माता वैष्णवी, हम सब भक्त तेरी संतान है, तेरी कृपा से हम सबका कल्याण होता है। हे मां, तेरी महिमा अपरंपार है। हमें शक्ति दीजिए, हमें ऊर्जा दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। हे जगदीश्वरी, हे सर्वेश्वरी, हे जीवेश्वरी, हम सबका कल्याण कीजिए।

प्रभु के पैरों में पैजनी और छन छन की मधुर स्वर, गले में वनमाला, बांसुरी की मीठी तान। हे कान्हा, आपका ये रूप हम सबके मन को मोह लेता है। हमारे जीवन में ऐसा ही सौंदर्य भर दीजिए, हमारा नमन स्वीकार कीजिए।

तराना इत्यादि आप सुनते हैं, वैसा ही ये एक और प्रकार है। इसे चतुरंग कहते हैं, चार अंगों का इसमें समावेश है। राग मिश्र खमाज का आधार लिया।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। गायक कलाकार थे पंडित कुमार गंधर्व, लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और साथी। इसके साथ ही आज की वंदना अब यहीं संपन्न होती है। आप सभी श्रोताओं की सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। चिंतन में आज का विषय है सर्वे भवन्तु सुखिनः।
1: यदि आज हम वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो यह कटु सत्य स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आज संपूर्ण विश्व अशांति की ज्वाला से दग्ध है। कहीं आतंक और विद्रोह की आग सुलग रही है तो कहीं शोषण का दमन चक्र चल रहा है। शांति और सह अस्तित्व की भावना न जाने कहां तिरोहित हो गई है। यदि हम औरों की बात न करते हुए केवल अपने देश की स्थिति पर ही विचार करें तो आश्चर्य होता है कि क्या यह वही देश है जहां राम, कृष्ण, महावीर और गौतम बुद्ध जैसी पुण्यात्माओं ने जन्म लिया था। परस्परोग्रहो जीवानाम की भावना से विश्व को अभिभूत करने वाला यह देश आज न जाने किस चक्रव्यूह में फंस गया है कि आज हमें अपने चारों ओर हिंसा, अमैत्री, अनाचार और कटुता का बोलबाला दिखाई देता है। सत्य, अहिंसा, दया और करुणा की कल कल बहती सरिताएं न जाने कहां विलुप्त हो गई हैं। धर्म और दर्शन के सिद्धांत न जाने किन किताबों के पन्नों में दफन हो गए हैं। निश्चय ही कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। अब यह हमारा दायित्व है कि हम इस गड़बड़ को खोजें और उसके कारणों का विश्लेषण करें और तदनुसार अपने आचार विचार और कार्य व्यवहार को परिमार्जित करें। और इसके लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपने गौरवशाली अतीत का मंथन करें, क्योंकि इसी अतीत में छिपा है शांति और सह अस्तित्व का बीज मंत्र। आज विश्व में संघर्ष की जो स्थिति है और जिसके कारण विश्व शांति बार बार खतरों से दो चार होती है, उसका मूल कारण है सह अस्तित्व के सिद्धांत की अवहेलना। जब जब किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र में मैं का भाव जागृत होता है, तब तब अशांति की नाग अपने फन उठाकर मानवीय जीवन मूल्यों को दंश देने लगते हैं और इन्हीं दंशों से घबराकर शांति के कपोत उड़न छू हो जाते हैं। यदि हम तटस्थ भाव से प्रकृति के नैसर्गिक सिद्धांत पर विचार करें तो हम पाते हैं कि प्रकृति के समस्त जीव शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। सबका जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा है। यदि हम अकारण किसी जीव को खतरा पहुंचाते हैं

उसका परिणाम अंततः गत्वा समग्र मानव जाति को भोगना पड़ता है। किसी एक की भूल का प्रायश्चित सबको ही करना पड़ता है। जब जब इस भूभाग पर दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, सहयोग और सह अस्तित्व की भावना को अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कुचला गया है, तब तब शांति और अहिंसा के कदम लड़खड़ा कर गिर पड़े। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध इस ऐतिहासिक सत्य के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। मानवीयता के नाम पर कलंक सिद्ध हो चुकी इन घटनाओं से सबक लेकर ही मानव एक बार फिर शांति और सह अस्तित्व की खोज में निकल पड़ा और इसी खोज ने जन्म दिया संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को। परंतु आज एक बार फिर कुछ स्वयंभू राष्ट्रों के अहम के कारण शांति का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि जहां स्वार्थपरक अहम होता है वहां अशांति और हिंसा की पृष्ठभूमि स्वयं तैयार हो जाती है और इसे

0: परंतु आज एक बार फिर कुछ स्वयंभू राष्ट्रों के अहम के कारण शांति का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि जहां स्वार्थपरक अहम होता है वहां अशांति और हिंसा की पृष्ठभूमि स्वयं तैयार हो जाती है, और इसी अनुकूल पृष्ठभूमि पर मानवीय मूल्यों के दमन की फसल लहलहाने लगती है। यही कारण है कि विश्व के सभी धर्मों ने दया, करुणा, मैत्री और सद्भाव जैसे मानवीय गुणों की वृद्धि की कामना की है, क्योंकि इन सद्गुणों के अभाव में सृष्टि की सुरक्षा असंभव है। अतः विश्व शांति के लिए जरूरी है अहिंसक समाज की स्थापना, और इसकी शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी होगी। इस शुरुआत के लिए हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को आत्मसात करना होगा, और तभी हम अपनी भावी संतति को प्रेम और सौहार्द से युक्त खुशहाल पृथ्वी का नेतृत्व सौंप सकेंगे। परंतु यह सब तभी संभव है जब हम अपनी पुरातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को अपने व्यवहार में उतार कर इस भावना की सुरभि को जन जन के मन प्राण तक पहुंचाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाव भवेत्।
1: चिंतन में आज का विषय था सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण साथियों, अब से थोड़ी देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। उसके ठीक बाद सुबह 6:45 पर हमारे किसान भाई सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज की वार्ता का विषय होगा डेयरी व्यवसाय के लिए पशुओं का चयन। जानकारी देंगे डॉक्टर योगी गुप्ता। स्तन की गांठ और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर मधु राजपाल की लघु वार्ता हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुबह 7:10 पर। आसपास आप सुनते हैं सुबह 7:31 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुबह 8:45 पर, और गीत मंजूषा आप सुनते हैं सुबह 9:25 पर, और सुस्तरिता सुबह 10 बजे। इस बीच सुबह 9:45 पर लोक संगीत में आज हम आपको रघुवीर सिंह चाहर के गाए कुछ प्रचलित लोक गीत सुनवाएंगे। सुबह 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह का राग अहिर भैरव में ख्याल गायन प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। लोक मंजरी में दिन में 12 बजे मंगल सिंह और साथियों के गाए कुछ ब्रज लोकगीत आप सुन सकते हैं। नए तराने दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे। आज रविवार है, आज के दिन हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम बाल मंडल। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे आशा के रंग और सपनों के रंग विषय पर। रोचक जानकारी में धूल भरी आंधी का रहस्य बच्चों को बताया जाएगा। बाल गीत होगा बंदर मामा पहन पैजामा। इसके अलावा कहानी होगी सदाबहार चलते चलते में। आउटडोर खेलों को दें प्राथमिकता। जी हाँ, समय 1:15 कार्यक्रम बाल मंडल। सुगम संगीत में आज सुनिएगा सुधीर नारायण की गाई चंद ग़ज़लें। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम आज की अतिथि में आज हम आपको सुनवाएंगे वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर उमेंद्र नारायण से अनिंद्र सिंह की बातचीत। गीत कुंजन दिन में 3 बजे प्रसारित होगा। हमारे युवा साथी सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी संध्या 5:30 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मृदा संरक्षण और हरित आवरण। खेल दुनिया में फीफा के सितारे की संभावनाएं। इसके अलावा आज हम आपको श्वेता सागर की वार्ता सुनवाएंगे आशा से ही सृजन संभव है। समय 5:30 कार्यक्रम युववाणी। संध्या 6 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम्य लोक। इस कार्यक्रम में लोकगीतों के अलावा आज डॉक्टर हरिश्चंद्र की वार्ता का विषय होगा पशुओं में टीकाकरण कब और कैसे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पर चर्चा।

होगी, मौसम की जानकारी और मंडी भाव आपको बताए जाएंगे। हमारे श्रमिक साथी सुनते हैं कार्यक्रम मजदूर मंडल संध्या 6:30 पर। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय होगा श्रमिकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता। राकेश कुमार बोरिया की वार्ता होगी स्वच्छता अभियान में आमजन की भूमिका। 7:10 पर आज डॉक्टर आरपी पांडे की वार्ता का विषय होगा आओ बचाएं कल के लिए जल। मेरी माटी मेरा देश आप सुनते हैं संध्या 7:31 पर। रात 8:00 गाने नए पुराने। 8:30 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत। दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम मनोप्रसारित होगा और दिल्ली केंद्र से ही रात 10:00 सुनेगा अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा का अनुप्रसारण। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्री राम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

0: सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे राजेंद्र कचरू और चतुर सेन। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में किसान भाई सुने डॉक्टर यूडी गुप्ता की वार्ता। विषय है डेयरी व्यवसाय के लिए पशुओं का चयन।
1: किसान भाइयों, दूध की बढ़ती कीमतों एवं मांग के कारण आम आदमी का रुझान डेयरी पशुओं को व्यवसाय का रूप देने की तरफ गया है। लंबे समय तक पशुपालन कृषि के सह व्यवसाय के रूप में पनपता रहा है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से इसे अलग से व्यवसाय का रूप मिलना शुरू हुआ है। डेयरी व्यवसाय की सफलता के लिए पशुओं के चुनाव पर ध्यान देना आवश्यक है। आमतौर पर एक एकड़ भूमि पर एक गाय या भैंस रखी जाती है, परंतु यदि भूमि उपजाऊ है तो यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। संख्या के निर्धारित करने के उपरांत पशुओं की किस्म जैसे भैंस, देसी गाय या संकर गाय के विषय में निश्चय करना भी आवश्यक है। यदि हरा चारा व दाना भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में संकर गाय को रखना बेहतर रहता है। यदि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो और सिर्फ भूसे या पुआल पर ही पशु रखने हों तो ऐसी स्थिति में देसी गाय या भैंस का रखना ही ठीक रहता है। किस्म के चुनाव के बाद नस्ल का चयन भी आवश्यक है। बेहतर तो यही है कि फार्म पर एक ही नस्ल के पशु रखे जाएं। एक से अधिक नस्ल के पशु रखे जाने पर पशुओं की कीमत कम मिलती है। नस्ल का चुनाव उसकी उपलब्धता, लोकप्रियता एवं कीमत पर निर्भर करता है। उत्तरी भारत में भैंस की मुर्रा, नीली रावी तथा भदावरी आदि नस्लें, गाय की साहीवाल, हरियाणा थारपारकर, राठी, मेवाती आदि नस्लें तथा संकर गायों की जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन तथा ब्राउन स्विस से उत्पन्न गायें आसानी से मिल जाती हैं। ये पशु बड़े बड़े डेयरी फार्मों जैसे इज्जतनगर, पंतनगर, करनाल, हिसार तथा लुधियाना आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। दुधारू पशु खरीदते समय पशु में मुख्य गुण जो देखे जा सकते हैं वो हैं, दुधारू पशु का स्वभाव सीधा हो, अत्यधिक सुस्त, तेज व भड़कीले पशु कम दूध देते हैं, पशु का पिछला धड़ भारी तथा अगला धड़ हल्का हो, गर्दन पतली, मस्तक चौड़ा, आंखें तेज, नथुने बड़े, कमर सीधी, पुट्ठे चौड़े एवं समतल, छाती का घेरा बड़ा, आयन बड़ा तथा आगे पीछे की ओर फैला हुआ, थन मध्यम एवं समान आकार वाले तथा दुग्ध सिराएं सुविकसित हों, पशु की टांगें छोटी व मजबूत हों, पशु की ऊंचाई कम तथा लंबाई अधिक से अधिक हो, दुधारू पशु को सामने ऊपर तथा बगल से देखने पर

0: उसकी आकृति त्रिकोणात्मक दिखाई दे। सामने से देखने पर कुंवर के पीछे का हिस्सा तथा कंधे के पीछे त्रिकोण बनता हो। यह त्रिकोण जितना बड़ा होगा, पशु की छाती उतनी ही चौड़ी होगी। छाती चौड़ी होने पर हृदय तथा फेफड़े को पर्याप्त जगह मिल जाती है। ऐसे पशु अधिक शक्तिशाली तथा उत्पादनशील होते हैं। ऊपर से देखने पर कूवड़ के ठीक पीछे के हिस्से तथा हुक बोन के बीच एक त्रिकोण बनता है। यह त्रिकोण जितना बड़ा होगा, पशु की श्रेणी गुहा उतनी ही बड़ी होगी। श्रेणी गुहा में पशु के जननांग बड़े होंगे तथा ऐसा पशु अधिक प्रजननशील होगा। इन लक्षणों के अतिरिक्त पशु की पतली, मुलायम व चिकनी त्वचा, क्रियाशील कान तथा चारा देखते ही उस पर झपटना उसके निरोगी होने के मुख्य लक्षण हैं। पशु खरीदते समय कुछ बीमारी के कीटाणु पशुओं में मौजूद रहते हैं, परंतु उनमें बीमारी के लक्षण न उभरने के कारण वे अन्य पशुओं में भी संक्रामक बीमारी फैला देते हैं। अतः पशु कितना भी स्वस्थ एवं निरोग लगे, उसे कम से कम 15 दिन तक अन्य पशुओं से अलग ही रखा जाए। यदि विदेशी नस्ल के पशुओं को फार्म पर रखना हो, तो उन्हें देसी नस्ल के पशुओं से अलग रखना चाहिए। साथ ही विदेशी नस्ल के पशुओं के रखरखाव में कुछ विशेष सावधानियां रखी जानी चाहिए, जैसे कि ये पशु आसानी से बीमारियां जो कि हमारे देश में प्रचलित हैं उनको आसानी से पकड़ लेते हैं, अतः इन्हें अन्य पशुओं से अलग रखना ही बेहतर रहता है। साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन विदेशी नस्ल के पशुओं से हमारे देसी नस्ल के पशुओं में भी आ सकती हैं, अतः इनको अलग-अलग रखने से देसी नस्ल के पशुओं में इन बीमारियों को फैलने से बचाया जा सकता है। विदेशी नस्ल के पशु अधिकतर ठंडी जलवायु के होते हैं, अतः विशेषकर गर्मी के मौसम में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्हें नियमित रूप से नहलाया जाए, जिससे कि गर्मी का उन पर बुरा प्रभाव न पड़े। कीमती पशु खरीदने के पश्चात पशुपालकों को उनका बीमा अवश्य कराना चाहिए। आजकल बीमा की सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हैं, अतः किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर भी पशुपालकों का मनोबल नहीं टूटता। यदि फार्म पर अच्छी नस्ल के पशु रखने हों, तो फार्म पंजीकृत करा लेना चाहिए। पंजीकृत फार्म के पशुओं की कीमत अधिक होती है तथा सरकार से ऐसे फार्मों को प्रजनन व उत्पादन संबंधी नीति निर्धारण में भी सहायता दी जाती है।
1: डेयरी व्यवसाय के लिए पशुओं का चयन, इस बारे में हमारे किसान साथी सुन रहे थे डॉक्टर यूडी गुप्ता की वार्ता। विषय था, जैसे कि हमने आपको बताया, डेयरी व्यवसाय के लिए पशुओं का चयन। कार्यक्रम था खेती की बातें, प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर। आपको एक बार फिर से बता दें, इसी सभा में 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा स्तन की गांठ और उपचार। जानकारी देंगे डॉक्टर मधु राजपाल। समय 7:10। दैनिक सूचना पर आधारित कार्यक्रम आसपास लेकर हम हाजिर होते हैं सुबह 7:31 पर।

आप सभी श्रोता जानते होंगे आज वृक्षारोपण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। पूरे प्रदेश में वृक्ष लगाए जा रहे हैं, पौधारोपण हो रहा है। हम आप सभी से भी अपेक्षा करते हैं कि आप जहां पर आपको जगह मिले जरूर आज पौधारोपण करें, वृक्ष लगाएं, वातावरण को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में अपना सहयोग करें। आप हैं आकाशवाणी आगरा के साथ मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयां ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरं एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबंधन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पंच ज्ञापन पत्राणाम आदान प्रदान कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारंपरिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं आत्मनिर्भरं भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामंत्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनं भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति सामान्य नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय

0: खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै 9 अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र

0: Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said that the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which appropriate legal action will be initiated. Consumer complaints alleged the supply of expired, spoiled, rotten, contaminated, and otherwise unsafe food products through Swiggy Instamart. Moving on to sports, in the FIFA World Cup, England have advanced to the semi-finals, beating Norway 2-1 at Miami Stadium, Florida this morning. Jude Bellingham's brilliant two-goal display inspired England to come from behind to beat Norway after extra time. Spain and France have already booked their places in the last four. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. In tennis, the 21-year-old Linda Noskova won her maiden Grand Slam title after defeating fellow Czech Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 in the Wimbledon women's singles final at Centre Court, London last night. And that is the end of this news bulletin.
1: सभी सुनने वालों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा में। 7:10 हो रहे हैं, इस समय हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है स्तन की गांठ और उपचार। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर मधु राजपाल।
2: स्तन की गांठ किसी भी महिला के लिए चिंता का विषय बन सकती है। आज हमारे देश में स्तन का कैंसर दूसरे नंबर पे कॉमन है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर में जल्दी पता लगा लेने और इलाज ले लेने में ही मरीज की भलाई होती है। लेट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचने पर यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। स्तन की गांठ दो प्रकार की होती है, एक तो बिनाइन यानी कि जो कैंसर नहीं है, और दूसरी कैंसर। बिनाइन गांठों में सबसे कॉमन टाइप की होती है फाइब्रोएडिनोमा। यह छोटी गांठ होती है जो कि स्तन में किसी भी उम्र पे, खासतौर से छोटी उम्र की लड़कियों को ज़्यादा होती है। इसमें गांठ मोबाइल होती है यानी कि अंदर से या खाल से जुड़ी हुई नहीं होती है, और मरीज को कोई दर्द नहीं महसूस होती है। हालांकि यह खतरनाक गांठ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी गांठ महसूस होने पर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, और अगर डॉक्टर राय देता है कि इसको निकलवा देना चाहिए तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में इसमें भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है। दूसरी एक बिनाइन कंडीशन होती है, स्त्रियों में 35 से 40 साल की उम्र के आसपास स्तनों में दर्द होता है। यह दर्द ज़्यादातर 15वें दिन के बाद से शुरू होता है और महीना होने के बाद में ठीक हो जाता है, और छोटी छोटी गांठें अंदर महसूस होती हैं। यह भी कोई खतरनाक स्थिति नहीं है, यह एक हार्मोनल कंडीशन है जो कि सादी दवाई देने से ठीक हो जाती है। अगर परेशानी ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवाई लेकर के अपने को ठीक कर लेना होता है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, वह है स्तन का कैंसर। यह गांठें खराब टाइप की होती हैं, और इनके साथ खास बात यह है कि इनमें दर्द नहीं होता है, इसलिए मरीज डॉक्टर के पास जाने में देरी करता है। तो स्त्रियों, कोई भी गांठ अगर स्तन में महसूस हो रही है तो घर पर बैठे नहीं रहना है और डॉक्टर को जाकर के रिपोर्ट करना है। इसके लिए एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आप लोग को सिखाती हूँ, सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को चेक करना। हर महीने से निपटने के बाद एक बार अपने आप को आप चेक करना सीखिए। चेक करने में अपने हाथ की उंगलियों से दबा दबा कर दोनों स्तनों को पूरा अच्छे से महसूस करना है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं दिख रही है, कहीं कोई गांठ जो खाल से चिपकी हो या अंदर चिपकी हो, या कोई भी गांठ महसूस हो रही हो, चाहे उसमें दर्द ना हो, पर आपको डॉक्टर के पास जाना है। और इस प्रकार की गांठ खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी छोटे छोटे अंदर की तरफ को दर्द भरे हुए लिम्फ नोड्स महसूस होते हैं, तब भी जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में। और अगर डॉक्टर देख करके, कुछ चेकिंग करके बताता है कि यह कैंसर है, तो उसका उचित उपचार लेना चाहिए, क्योंकि सही समय पर लिया हुआ उपचार आपकी जान बचा सकता है। जांचों में डॉक्टर ज़्यादातर वहाँ से छोटा सा टुकड़ा लेकर के या पानी लेकर के जाँच के लिए भेजते हैं, और देखते हैं कि यह कैंसर तो नहीं है। दूसरा, वहाँ का खास एक्सरे होता है जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, वो करा कर देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करके हम लोग देख लेते हैं, और अगर इन सब जांचों में आता है कि कैंसर है तो डॉक्टर राय देते हैं कि वह स्तन निकाल देना चाहिए। और अगर वो ऐसी राय देते हैं तो आप

0: करवा लीजिए। और कभी कभी जब स्टेज ज्यादा होती है तो इसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की भी सलाह दी जाती है। तो बहनों, आपने देखा कि स्तन की गांठ अगर हम ठीक समय पर इसका उपचार करा लें तो जानलेवा नहीं है और हम खुद जांच करके इसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसलिए यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम शर्माएं और हम डॉक्टर के पास ना जाएं। अगर हम ठीक समय पर पहुंच जाते हैं तो हम ठीक हो सकते हैं।
1: स्तन की गांठ और उपचार विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मधु राजपाल की लघु वार्ता कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। प्रसारण आकाशवाणी आगरा से किया गया और अब देशगान।

0: को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा।

0: सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज चलाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कल कुशीनगर में किया 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। अयोध्या में हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरा करने का तय हुआ लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन मिश्र ने चढ़ावा खबर मामले में कहा, भविष्य में नहीं होगी इसकी पुनरावृत्ति। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया जाएगा। इस पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार की ओर से 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के समीप और रामगढ़ ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ माँ के अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित कर वे प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी है। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे गोरखपुर।
2: हमारे संवाददाता ने बताया कि ये अभियान 27 विभागों के सहयोग से चलाया जाएगा।
4: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर जिले के रामकोला विकासखंड के टिकू अटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है, साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकार

0: सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने बताया कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
1: के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं,
2: गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
3: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी, और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में कल श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम सहित अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। आज होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्र ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
4: यह अपने में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
0: विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के कई जिलों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कल संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। गोरखपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का 7वां स्थापना दिवस कल संस्थागत गौरव, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के प्रति संकल्प लेने के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता ने संस्थान के सामूहिक संकल्प को रेखांकित किया। संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर हेमंत कुमार ने कहा कि एम्स गोरखपुर सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। प्रदेश के कई जिलों में कल से वर्षा का क्रम जारी है। कुछ जिलों में अधिक वर्षा के कारण जलजमाव होने से जनजीवन

प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। उधर लगातार हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूने लगा है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज चलाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशव्यापी अभियान का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कल कुशीनगर में किया 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। अयोध्या में हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख

0: करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। अयोध्या में हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरा करने का तय हुआ लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी इसकी पुनरावृत्ति। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा में। 7:31 हो चुके हैं। इस वक्त आप सभी श्रोता अपने मोबाइल सेट के करीब होते हैं, रेडियो सेट के करीब होते हैं, क्योंकि इस वक्त हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आसपास। आसपास में सूचनाएं होती हैं जो आपके काम आ सकती हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसी सूचनाएं छांट कर, संकलित कर आपके लिए लेकर आए। जी हाँ, तो फिर शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आसपास की। मैं हूं आपके साथ प्रदीप। सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। साथियों, मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र के कमजोर पड़ने से मानसून की जो सक्रियता थी वो कम हो गई है, और ऐसा पूर्वानुमान है कि 3-4 दिन आंशिक बादल तो छाए रहेंगे लेकिन तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, और उसके बाद बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। कल अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, हालांकि बादलों की वजह से उमस भी काफ़ी थी, लोग परेशान भी थे, और शुक्रवार दोपहर और रात में 2.2 mm की थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। शनिवार यानी कल बादल थे, कभी धूप थी, हवा के बहाव की गति भी कम होने से उमस तो रही ही। अधिकतम तापमान जो था 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सामान्य से न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विज्ञानी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र के कमजोर पड़ने से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से इसके बढ़ने से मानसूनी परिस्थिति में कमी आई है। 3-4 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा, मतलब कहने का यह है कि अभी गर्मी रहेगी। गर्मी रहेगी तो आपको सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, और ऐसे में हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य के प्रति सावधान नहीं रहेंगे तो परेशानी हो सकती है। ऐसे में हमें खासतौर पर अपने नन्हे मनों का ध्यान रखना है। मसलन हमें बासी खाने को ना कहना है, बाजार की चीज़ों को बिल्कुल मना करना है, और मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। खासतौर पर अपने घर, अपने मोहल्लों और अपने पूरे शहर में हम कोशिश करें कि हम सफाई में अपना योगदान करें।

और हमारी जो अगली सूचना है वो ऐसे श्रोताओं के लिए है जो पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। जी हाँ, पासपोर्ट बनवाए जाने की औपचारिकता के लिए अब लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। एक माह से डेढ़ माह की वेटिंग पहले चल रही थी, जो अब घटकर एक सप्ताह से 15 दिन की रह गई है। जी हाँ, हम बात आगरा की कर रहे हैं। आगरा में पासपोर्ट के लिए 2 केंद्र बने हैं, दोनों पर ही आसानी से अब समय मिल रहा है। वेटिंग कम होने के पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं। घूमने और पढ़ने जाने के उद्देश्य से जो लोग पासपोर्ट बनवाते हैं उनकी संख्या जुलाई में कम होने लगती है। हालांकि सर्दी के मौसम में फिर से इसमें बढ़ोतरी होगी, लिहाजा अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, हमारे ऐसे श्रोता भी हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या फिर अपनी आईडी के लिए पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो ये सूचना उनके लिए है। तो पासपोर्ट के लिए डेट अब आपको आसानी से मिल रही है। हमारी अगली सूचना है बीएलओ सुपरवाइजर्स के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ और सुपरवाइजर्स को एकमुश्त 6,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, राज्य में एसआईआर में 1,77,516 बीएलओ और 18,026 बीएलओ सुपरवाइजर्स तैनात हुए थे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्णय भारत निर्वाचन आयोग के 3 जून के निर्देशों और उत्तर प्रदेश शासन के 9 जुलाई के शासनादेश के अनुपालन में लिया गया है। तो साथियों, अच्छी सूचना है, बीएलओ और जो सुपरवाइजर्स हैं एसआईआर में उनको 6,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा।

और एक और अच्छी सूचना है कि आज पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण महायज्ञ चल रहा है और इसी क्रम में आगरा जिले में भी पूरी तैयारी के साथ ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच आगरा जनपद की बात करें तो 53,94,000 पौधे रोपे जाएंगे। इसमें वन विभाग के 19 लाख और अन्य विभाग 34,94,000 पौधे रोपेंगे। जी हाँ साथियों, पौधारोपण अभियान के तहत इन जो पौधों को रोपा जाएगा उनकी जीपीएस फोटो भी वेबसाइट एक हरिती में ऐप है उसमें अपलोड करनी होगी और पौधों की सिंचाई के लिए और ट्री गार्ड लगाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में इस समय अभियान के तहत पौध लगाए जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वृक्ष हमारे सांसों का आधार है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, प्राणवायु नहीं होगी तो फिर हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस सरकार के इस अभियान में हमें सहयोग करना है। सरकारी विभाग तो पौधे लगा ही रहे हैं लेकिन हम सबकी कोशिश भी रहनी चाहिए कि हम आज जरूर कम से कम एक पेड़ लगाएं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, अपनी माता जी के नाम, अपने पिताजी के नाम, अपने प्रिय मित्रों के नाम से हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। उसका पोषण करें, उस पेड़ को बड़ा होने दें, उसकी सिंचाई करें, उसकी रक्षा करें और जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो आपको बहुत खुशी भी मिलेगी साथियों। तो आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि सरकार के साथ साथ हमको व्यक्तिगत रूप से भी आज वृक्ष लगाने चाहिए। आपके पास जगह होनी है, अगर आपके पास खेत हैं, खेत के आसपास मेड़ों में लगा सकते हैं या कहीं भी खुली जगह जहां पर सरकार भी वृक्षारोपण कर रही है उनके साथ मिलकर हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो संस्थाएँ हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो भी आज सरकार के इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। और श्रोताओं, हम तो आपसे भी यही कहेंगे कि आप ज़रूर आज एक वृक्ष लगाएं क्योंकि पूरा प्रदेश में ये काम हो रहा है। और वैसे भी इस समय जुलाई का महीना चल रहा है और बारिश हो रही है, बारिश के दिनों में जो भी पौधा आप लगाएंगे वो बहुत अच्छी से ग्रो करेगा, बहुत अच्छी से बड़ा होगा। तो आइए हम भी संकल्प लेते हैं कि आज ज़रूर हम सरकार के इस अभियान में सहयोग करेंगे और कम से कम एक पेड़ लगाएंगे। हो सकता है अपनी माँ के नाम लगाएं, पिताजी के नाम लगाएं, अपने प्रिय मित्रों के नाम से लगाइए।

साथियों, हम में से कई श्रोताओं को जब भूख लगती है तो हम पूरे भरोसे के साथ से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और तुरंत हमारे कुछ मिनटों में हमारे पास खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अभी कुछ लापरवाहियां ये जो ऑनलाइन कंपनीज हैं वो कर रही हैं, जिसके तहत अभी कार्यवाही भी हुई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी जो सुप्रसिद्ध कंपनी आपने सुनी होगी, आप उनके माध्यम से खाना भी मंगाते होंगे, उन पर अभी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI जिसको हम बोलते हैं, उसने कार्यवाही की है। और इस तरह से हमें भी ध्यान रखना होगा कि हम ऑनलाइन खाना मंगाना कम से कम करें। बहुत ज़रूरी हो और आवश्यकता हो तभी हमें ऑनलाइन खाना मंगाना चाहिए, लेकिन हम लोगों की आदतें हो गई कि हम घर परिवार में बैठ के भी ज़्यादातर बाहर से खाना मंगाने में सहूलियत समझते हैं, लेकिन वो खाने की शुद्धता क्या है, उसकी पौष्टिकता क्या है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। तो साथियों, ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम क्या खाना मंगा रहे हैं, उसका क्या प्रमाण है कि वह शुद्ध है या पौष्टिक है। बेहतर यही होता है कि हम अपने घर में ही शुद्ध और ताज़ा भोजन तैयार करें। अब चूंकि कार्यवाही भी हो रही है तो इसलिए सतर्क होने की आवश्यकता है। कार्यवाही तभी होती है जब कुछ गलत मिलता है। तो ऐसा आरोप मिला है कि ऐसी कंपनियों ने सड़ा गला और बासी भोजन दिया है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। तो हम तो साथियों यही कहेंगे कि हम जो भी बनाएं घर पर तरोताज़ा बनाएं, और या फिर कुछ फल फूल भी खा सकते हैं ताकि हम लोग का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। और वैसे भी कहा जाता है कि घर का भोजन हम जब भोजन शुद्ध होगा तरोताज़ा होगा, हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। लेकिन कई बार लापरवाही हो जाती है तो ऐसे में हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो एक सूचना यह है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक होती है जो दवाइयों की कीमत को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। जी हाँ, इस कंपनी ने मतलब FSSAI ने 39 नई दवा फॉर्मुलेशन की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, HIV, हृदय रोग और आँखों के जो संक्रमण होते हैं, इन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएँ, उनकी कीमतों को नियंत्रित किया है। जी हाँ, प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 DPCO के तहत ये दरें तय की गई हैं। इन कीमतों से मरीजों को दवाएं निर्धारित और किफ़ायती दरों पर मिल सकेंगी। हालांकि NPPA ने स्पष्ट किया है कि इन दवाओं के दाम घटाने का कोई ऐसा फैसला नहीं है, बल्कि उनकी अधिकतम खुदरा कीमतें तय करने की ये प्रक्रिया है, MRP जिसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। थोड़ा सा और जानकारी इस बारे में आपको हम दे दें। जैसे कि हमें सूचना मिली है, उच्च रक्तचाप जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, इसके इस्तेमाल में एक दवाई प्रयोग होती है, इसको एम्प्लोडिपिन बोलते हैं और बिसोप्रोलोल भी बोलते हैं, टेलमिसारन भी बोलते हैं। इनकी कीमत 14.474 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए एक दवाई होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन और एट्रोवास्टिन। इसकी कीमत भी 6.37 रुपये प्रति कैप्सूल निर्धारित हुई है। तो इस तरह से जो हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है NPPA, उसने इसके जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, अधिकतम जो मूल्य है, वो तय किया। अच्छी सूचना है। तो आप जब भी बाज़ार से दवाएं खरीदें तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं।

साथी, जब हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं रेलवे की, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें भरनी पड़ती हैं। कैप्चा भी आता है, ओटीपी वगैरह भी चीज़ें होती हैं। तो कुछ इसमें इसकी जो परेशानियां होती हैं उसको कम करने के लिए IRCTC की नई वेबसाइट जल्दी ही लॉन्च होगी। इसमें यात्रियों को टिकट बुकिंग पर अतिरिक्त जो कैप्चा आता है, पॉपअप्स आते हैं या स्लो इंटरफेस जैसी मुश्किलों से निजात मिलेगी। रेल मंत्रालय ने नई वेबसाइट में 4 बड़े बदलाव किए हैं। इससे

जब हम टिकट बुक करेंगे तो उसकी रफ्तार तेज़ होगी और हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये बदलाव क्या हैं आपको बता दें, नई वेबसाइट में बेहतर अनुभव के लिए अनावश्यक कैप्चा, पॉपअप विज्ञापन और ग्राफिक्स और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीज़ें अब नहीं होंगी। उसके अलावा नई वेबसाइट में टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स की संख्या भी कम कर दी गई है, जिससे यात्रियों के लिए रिजर्वेशन प्रक्रिया तेज़ और सुविधाजनक हो जाएगी। उसके अलावा सभी क्लासेस में सीट की उपलब्धता एक है ये, और इसको 15 जुलाई तक लॉन्च की जाने की संभावना है। नई IRCTC वेबसाइट को अभी इंडियन

है ये, और इसको 15 जुलाई तक लॉन्च की जाने की संभावना है। नई IRCTC वेबसाइट को अभी इंडियन रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है। चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है इसलिए नया पोर्टल बस कुछ ही दिनों में आपके पास उपलब्ध होगा। श्रोतो, अगर आप ताजगंज, रकाबगंज, बालूगंज, छिपीटोला, फतेहाबाद रोड, गोबर चौकी, कोतवाली, दरेसी, रावतपाड़ा, बेलनगंज, छत्ता, काला महल, अलबतिया, सुभाष नगर, दयालबाग, बालाजीपुरम, सिकंदरा, आवास विकास कॉलोनी, पश्चिमपुरी, शास्त्रीपुरम, राजपुर चुंगी और ट्रांस जमुना कॉलोनी के निवासी हैं तो ये सूचना आपके लिए है, क्योंकि जलकर विभाग की टीम ने शनिवार शाम से बिजलीघर चौराहे स्थित शिवाजी मार्केट के पास पानी की पाइपलाइन को बदलने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत रविवार यानी आज और कल पानी नहीं मिलेगा। 14 जुलाई की सुबह से जलापूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें 70 वर्ष पुरानी लाइन बदलने के कारण यह असुविधा हमारे इन श्रोताओं को होगी, लेकिन इस बीच में जलगल की टीम टैंकरों से पानी की व्यवस्था करेगी। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। तो हम आपको बता दें कि आप टोल फ्री नंबर से पानी मंगवा सकते हैं, टैंकर के लिए फोन कर सकते हैं। नंबर है 1800-2702-722। एक बार फिर से 1800-270-2722।

श्रोताओं, ये थी कुछ सूचनाएं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का काम चल रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोगों को वृक्षों की जरूरत है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और हम जानते हैं कि हम दिन भर में जितनी ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसके लिए कम से कम हमें ऐसा माना जाता है कि 3 बड़े और स्वस्थ पेड़ों की जरूरत होती है। और हम जो सांसें लेते हैं वो ऑक्सीजन हमें पेड़ ही तो देते हैं। जी हाँ, इसके अलावा पेड़ों के बहुत सारे लाभ हैं, आप सभी जानते होंगे। हमारी जो स्वास्थ्य रक्षक दवाएं हैं वो भी जड़ी बूटियों से बनती हैं। उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उनके पेड़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन हम में से कई लोग इस बात को नहीं समझते, जानते, वृक्ष को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ये गलत है। अगर हम मानते हैं कि पेड़ नहीं होंगे तो फिर स्वास्थ्य कैसे हम लोग का सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें पेड़ों को धन्यवाद जरूर कहना चाहिए, क्योंकि यही हमें मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो प्राण वायु होती है। इसलिए जरूरी है कि हम आज के वृक्षारोपण में सहयोग करें। और जब वृक्ष होंगे, जिसको हम धरा के आभूषण भी बोलते हैं, हरियाली होगी तो ये प्रकृति बहुत खूबसूरत लगेगी। तब हम पक्षियों की चहचहाट भी सुन सकेंगे और स्वच्छ वातावरण में सांस भी ले सकेंगे। और ये भी आप जानते हैं कि जब वृक्ष होंगे तभी बारिश भी अच्छी होती है, और बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली की चादर प्रकृति ओढ़ लेती है, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। और ऐसे में निश्चित रूप से जब हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत की मिठास प्रकृति के साथ और भी अद्भुत होती है। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक गीत।

चलते चलते आपको गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी देते हैं। चौथा, एक व्यक्ति जिनका नाम नथीलाल है, इनकी उम्र 45 वर्ष है, इनका कद 5 फुट 7 इंच है, रंग सांवला है, शरीर मोटा है, लाल रंग की टी शर्ट ये पहने थे जब ये लापता हुए, और 11 अप्रैल 2026 से ग्राम नागर थाना निबोहरा तहसील फतेहाबाद से ये लापता हैं। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिलती है तो कृपया थाना प्रभारी निबोहरा को सूचित कर दें।

एक युवती जिनका नाम ईशा देवी है, इनकी उम्र 22 वर्ष है, इकरा बदन है, 5 फुट इनकी ऊंचाई है, गेहुआ रंग है इनका, और ये 16 मई 2026 से पलटुआपुर थाना निबोहरा से लापता है। इनके बारे में भी कोई सूचना अगर आपको मिलती है तो कृपया थाना प्रभारी निबोहरा को सूचित कर दें। एक किशोरी जिनका नाम संजना है, इनके पिताजी का नाम महेश है, ये उंदेरा थाना फतेहपुर सीकरी से लापता है। कद इनका 4 फुट के आसपास है और

0: श्रोताओ, आप सभी का आज का दिन बेहद खूबसूरत हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ आसपास कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। आप थे आकाशवाणी आगरा के साथ और अब समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड

0: के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, वैल्यूज भी हैं और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में

0: लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास

0: तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्र गिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब 1 हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher

0: कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। ईरानी बहरिया ने अगले हुक्म तक इस अहम बहरी गुजरगाह को बंद कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरिकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और टेनिस में लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत करने के बाद तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है और भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया और मुख्तलिफ अहम शोबों में कई समझौतों और मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में दिफा, सियाहत, खेलकूद, आफात से निमटने, डेयरी सनद और मवेशी पालने समेत कई शोबे शामिल हैं। वजीर आजम के दौरे की एक नुमाया तकरीब ऑकलैंड के सापर्क एरेना में मुनाकिद होने वाला कम्युनिटी प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। भारतीय बिरादरी के इस इज्तमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला दोतरफा तिजारती मुआहिदा भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के सफर को मजीद तेज करेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक काबिल एतमाद दोस्त करार दिया। न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के रोल को सराहा और वजीर आजम मोदी की कयादत की तारीफ की। वजीर आजम मोदी ने वजीर आजम लक्सन की बेहतरीन मेजबानी पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस दौरे ने भारत और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज किया है। जनाब मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत के वजीर आजम के न्यूजीलैंड के दौरे को 40 साल गुजर चुके हैं, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले दौरे में इतना तवील वक्फा नहीं होगा।
1: ये मेरा सौभाग्य है, मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
0: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर आजम मोदी के तीन मुल्कों के दौरे से तिजारत, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, तालीम, इख्तरा और अवामी रवाबित समेत मुतादिद शोबों में तआवुन को फरोग मिला है और इस दौरे से अहम और मुस्बत नतायज हासिल हुए हैं। वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हुन ने फू क्वा जजीरे के करीब पेश आने वाले उस तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। मुंबई में वियतनाम के कौंसिल खाने की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक वियतनाम के वजीर आजम ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो हादसे की वजूहात और मुतालिका कोताहियों की निशानदेही करें, जिम्मेदारी का तायुन करें और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करें। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जिन अफराद ने जाब्तों की खिलाफ वर्जी की है और जिनकी गफलत इस हादसे का सबब बनी है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यह अफसोसनाक हादसा कल उस वक्त पेश आया जब 36 अफराद, जिनमें

0: अमले के चार अरकान भी शामिल थे को ले जाने वाली तेज रफ्तार कश्ती रत्नगोई जजीरे के करीब अचानक एक बड़ी समुद्री लहर की जद में आकर उलट गई। मकामी हुकाम ने 21 अफराद को बहिफाजत बचा लिया, ताहम 15 भारतीय सयाह जिनमें दो खवातीन भी शामिल थीं जान की बाजी हार गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के फूकुआक जजीरे के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इस हादसे में 15 भारतीय शहरियों की मौत हो गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो इस अफसोसनाक कश्ती हादसे से बेहद गमजदा हैं। वजीर खारजा ने महलुकीन के अहल खाना से दिली ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया और हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। ईरान की सिपाही पासदारा ने इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कुब्रुस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी फौज ने कहा है कि ये फजाई हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि एक तजारती जहाज पर हमले में पायलट अमले का एक शख्स लापता है और हमले की वजह से लगी आग के इंजन रूम में हुए नुकसान के सबब जहाज अपना सफर मुकम्मल नहीं कर सका। जजीरा कशाम, बंदर अब्बास और सिरीक में इन हमलों के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। वहीं ईरान ने अगले नोटिस तक अपनाए हुरमुस को बंद कर दिया है। ईरान की सिपाही पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि उस जहाज ने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की थी। फौज ने कहा है कि किसी भी जहाज को स्ट्रेटजिक आबी गुजर
0: कुब्रुस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी फौज ने कहा है कि ये फजाई हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि एक तजारती जहाज पर हमले में पायलट अमले का एक शख्स लापता है और हमले की वजह से लगी आग के इंजन रूम में हुए नुकसान के सबब जहाज अपना सफर मुकम्मल नहीं कर सका। जजीरा कशाम, बंदर अब्बास और सिरीक में इन हमलों के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। वहीं ईरान ने अगले नोटिस तक अपनाए हुरमुस को बंद कर दिया है। ईरान की सिपाही पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि उस जहाज ने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की थी। फौज ने कहा है कि किसी भी जहाज को स्ट्रेटजिक आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि खित्ते में अमरीका की दखल अंदाजी बंद नहीं हो जाती। सिपाही पासदारा ने इनकलाब की जानिब से किन तबाही वार करने के बाद जब जहाज रुक गया तब ये ऐलान किया गया। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ सालिसी जारी रहेगी। दूसरी तरफ ओमान ने अबनाए हुरमुस से जहाजों के गुजरने के लिए दो अलहदा रास्ते तजवीज किए हैं, एक ईरानी समंदर से और दूसरा ओमान समंदर से। इससे पहले को बातचीत में तेहरान से इसी तरह की तजवीज को मुस्तरद कर दिया था। न्यूज डेस्क से जिज्ञासा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुजव्वजा एक मुल्क एक इंतखाब बिल का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की दो रोजा मुशावरत गोवा में इख्तिताम पजीर हो गई। अपने दौरे के दौरान कमेटी ने रियासती हुकूमत, सियासी पार्टियों, कानून साजों, कानून के माहिरीन, अवामी शोबे के इदारों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मीडिया से तबादला ख्याल किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आइन के

0: ये नहीं है पूरे मुल्क में एक ही दिन पोलिंग हो, लेकिन लोकसभा और असेंबली इंतखाबात दोनों एक साथ मरहलेवार अंदाज में 5 साल में एक बार कराए जाएं। उन्होंने कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले तमाम शराकत दारों से मशवरे ले रही है। कमेटी का अगला दौरा लखनऊ का होगा। महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आवामी फलाह बहबूद से मुतालिक 405 करोड़ रुपए की मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगी बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वो अपने पार्लियामानी हल्के गांधीनगर में एक वसी शजरकारी मुहिम का भी आगाज करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गांधीनगर लोकसभा हल्के को मुल्क के 70 हल्कों में शामिल करने के लिए एक बड़े शजरकारी मंसूबे का आगाज किया है। आबोहवा की तब्दीली से निपटने के मकसद से चलाई जाने वाली इस मुहिम के तहत रवान साल पूरे हल्के में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत महकमे जंगलात अहमदाबाद और गांधीनगर अजला में तकरीबन 60,00,000 देसी पौधे लगाएगा। इसके लिए वन कवच मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा, जो मियावा की तकनीक का गुजरात में तैयार करदा मकामी नमूना है और जिसका मकसद तेज रफ्तार माहौलियाती बहाली और घने जंगलात का क्याम है। जनाब अमित शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में मुनाकिद होने वाले इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप की 11वीं मीटिंग और जराइम की तहकीकत करने वालों के पहले बैन अल-अक़वामी मुकाबले का इफ्तिताह करेंगे। बाद में वो देहगाम का दौरा करेंगे, जहां नए तामीर शुदा APMC सब्जी मंडी का इफ्तिताह करेंगे और अमृत महोत्सव की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
1: एक बड़ी शजरकारी मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश हुकूमत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से रियासत भर में पौधारोपण महाअभियान 2026 का आगाज करेंगे। वो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और ताल रिंग रोड की करीब एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधे लगाएंगे। इस मौके पर वजीर आला एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और लोगों से पौधारोपण महाअभियान में जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेने पर जोर देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
0: 27 महकमों के इश्तराक से अंजाम दी जाने वाली बड़ी शजरकारी मुहिम में महकमे जंगलात को 15,50,00,000 पौधे लगाने का सबसे बड़ा हदफ दिया गया है। महकमे देही तरक्यात 10 करोड़, महकमे ज़रात 3,25,00,000, बागवानी का महकमा 1,50,00,000 और पंचायती राज का महकमा 1,22,00,000 पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5,50,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस साल महाअभियान 2026 के तहत कई नए जंगलात कायम किए जाएंगे, जिनमें समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन और कापी वन शामिल हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने फूड बिजनेस ऑपरेटर स्विगी इंस्टामार्ट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर सारिफिन की मुतादिद शिकायत के बाद 9 नोटिस जारी किए हैं। फसाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को तफसीली वजाहत और तामील से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इदारे ने खबरदार किया है कि ऐसा न करने की सूरत में मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सारिफिन की शिकायत पर इल्जाम आयद किया गया है कि स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए मुद्दत इस्तेमाल खत्म हो चुकी, खराब सड़ी गली, आलूदा और दीगर गैर महफूज गजाई अशिया फराहम की जा रही थी। नाइट एंगल ऑफ दी साउथ के नाम से मशहूर नामवर गुलूकारा इस जानकी गुज़िश्ता रोज कर्नाटक के शहर मैसूरू में बढ़ती हुई उम्र से मुतालिक सेहत मसाइल के बायस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले 4 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मशरकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मगरबी बंगाल, गंगा के मैदानी इलाके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा शामिल हैं। फीफा आलमी कप में इंग्लैंड ने आज सुबह फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टेनिस में 21 साल लिंडा नोस्कोवा ने कल रात लंदन के सेंटर पोर्ट में खेले गए विंबलडन खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में अपनी हमवतन कैरोलिना मुकोवा को 6-2, 5-6, 7-6, 3 से शिकस्त देकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। और ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
2: कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे न्यूजीलैंड से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत न्यूजीलैंड

0: के दरमियान दफा तजारत टेक्नोलॉजी समेत 18 अहम माहदे तजारत को 38,000 करोड़ रुपए से जायद तक पहुंचाने का हदफ।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाही पाजारन इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू किया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आप सभी श्रोताओं की सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर 8:45 हो रहे हैं। आपके लिए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में, सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि और यह है प्रोग्राम की पहली पेशकश। फिल्म का नाम है साजन।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी हाँ, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और लता मंगेशकर को। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत जतिन ललित का था। आप हैं आकाशवाणी आगरा के साथ और सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। अगला गीत

नजर से नजर चुराना और फिर दिल तक दिल की बात पहुंचा देना, उसके बाद किसी के दिल में बस जाना और फिर किसी की जिंदगी में आ जाना। जी हां, हमारे फिल्मी गीतकार इन्हीं शब्दों से मोहब्बत भर देते हैं अपने गीतों में। ऐसा ही कुछ आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। अभी आपने राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत सुना, अलका याग्निक की आवाज में। गीत के बोल समीर के थे, संगीत नदीम शमून का था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार लता मंगेशकर और उदित नारायण, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत उत्तम सिंह का।

धड़कनों में उनकी चाहत का असर होने लगा। फासला जो दरमिया था रफ्ता रफ्ता खोने लगा। जब से छुई है कानों को उनके कदमों की आहट, दिल की महफिल में मोहब्बत का समा होने लगा। फिल्म का नाम मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत अनु मलिक का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि को अब यहीं संपन्न करते हैं। आपको बता दें हमारे केंद्र से फिल्म संगीत अब आप सुनेंगे 9:25 पर गीत मंजूषा कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको कुछ पुरानी फिल्मों के गीत सुनवाएंगे। उसके बाद आप फिल्म संगीत सुनते हैं 10:00 सुरसरिता कार्यक्रम में। उसके बाद दिन में 12:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ नई फिल्मों का गीत सुनवाते हैं। दिन में 3:00 सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। रात 8:00 आज हम आपको सुनवाएंगे गाने नए पुराने, और रात 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। इसके अलावा आप फिल्म संगीत सुनते हैं हमारे केंद्र से युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी में, जिसे हम प्रसारित करते हैं 5:30 पर, और श्रमिक श्रोताओं के कार्यक्रम मजदूर मंडल में भी हम आपको फिल्म संगीत सुनवाते हैं, जिसका प्रसारण समय रहता है 6:30। आप हैं आकाशवाणी आगरा के साथ मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर, और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर।

आज हम आपको रघुबीर सिंह चाहर के गाए कुछ ब्रज लोकगीत सुनवाएंगे। हम आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं, सुबह के 9:15 हो रहे हैं। हम आपको ले चल रहे हैं अपने लखनऊ स्टूडियो, जहां से आप सुनेंगे सामयिक चर्चा बस थोड़ी देर में।

0: आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, युवाओं में ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल से बढ़ रहे हियरिंग लॉस के खतरे पर बलरामपुर अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं ओम अवस्थी।
2: लगातार लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल हमारे कानों पर क्या असर डालता है, आखिर क्यों युवाओं में टिनिटस की बीमारी बढ़ रही है और बच्चे स्लीप एपनिया के शिकार हो रहे हैं, और बढ़ते प्रदूषण और वह बदलती लाइफस्टाइल में इन बीमारियों के लक्षणों को नजरअंदाज करना क्यों भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकता है, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बलरामपुर अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर।
3: धन्यवाद, नमस्कार।
2: पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में हियरिंग लॉस और टिनिटस के मामले बढ़े हैं, आपके पास इससे जुड़े किस तरह के मरीज आ रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आई?
3: आमतौर पर टिनिटस की जो समस्या होती है ये ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा मिलती है। उम्र के साथ कान की नसें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती हैं और कान में सीटी बजना, सनसनाहट होना, झेंगुर की आवाज आना, भारीपन रहना, ये समस्या रहती है। मगर आज के परिवेश में यंग एज के जो बच्चे हैं या टीनएजर्स कह लें, जो आजकल मोबाइल के फोन पे हैं या हेडफोन लगा के लगातार क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं या म्यूजिक सुनते हैं लाउड नॉइज में, तो ये समस्या आजकल टीनएजर ग्रुप में ज्यादा तक मिल रही है और मान के चलिए 10-20% पूरी ओपीडी में टिनिटस की कंप्लेन वाले बच्चे आने शुरू हो गए हैं।
2: क्या ईयरफोन का लगातार इस्तेमाल सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है और क्या इसका पूरी तरह से इलाज संभव है?
3: देखिए, जो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है यानी तेज आवाज के कारण जो कान की सुनने की क्षमता गिरती है, वो दो तरह की होती है। एक टेम्पररी शिफ्ट जो साधारणतः प्रिकॉशन लेने पे या समय पे इलाज कराने पे वापस आ जाती है, और दूसरी होती है जो परमानेंट शिफ्ट। परमानेंट शिफ्ट जैसे तेज धमाके या इस तरह के लाउड एक्सपोजर में लगातार रहने से फिर वो हियरिंग लॉस परमानेंट शिफ्ट में जाता है। होता यह है कि कान के जो सबसे अंदर का हिस्सा है वहां पर इनर हेयर सेल्स होती हैं, लगातार तेज आवाज इन्हीं इनर हेयर सेल्स को धीरे धीरे कमजोर कर देता है और मृत पाय जाती है। चूंकि इनका रिजेनरेशन यानी कि दोबारा ये ठीक नहीं होती है, इसीलिए ये टिनिटस की समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर हियरिंग लॉस में भी बदलती है। तो जो ईयरफोन का यूज कर रहे हैं लगातार, उसमें के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप कितनी देर तक और किस इंटेंसिटी पे अपने कान को लाउड नॉइज का एक्सपोजर दे रहे हैं। यदि ये मध्यम इंटेंसिटी पर है और बीच बीच में आप उसमें थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं तो ये समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर लगातार आप उसका ओवर यूज कर रहे हैं तो ये समस्या धीरे धीरे टिनिटस की, कान में सीटी बजना, सनसनाहट होना, कुछ लोगों में ईयरफोन लगाने के कारण कान में एक भारीपन बना रहता है, हल्का हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, अनिद्रा, यानी ये सब भी सारे कैरेक्टर है, केवल टिनिटस ही नहीं है, चिड़चिड़ापन है, लैक ऑफ स्लीप है, आंखों पे ग्लेयरिंग सिम्टम्स है, ये सारे भी इसके साथ रेडिएशन के इफेक्ट के दायरे में आते हैं।
2: जी, आपने जैसे बताया कि ये दो तरह से होता है, तो सुनने की क्षमता कम होने के शुरुआती संकेत क्या है, मतलब वो क्या लक्षण है जिससे माना जाए कि आप डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है?
3: आमतौर पे ये जैसे कोई भी टीवी का प्रोग्राम देखते समय रिमोट से वॉल्यूम बढ़ा लेना, किसी व्यक्ति के बोलने पे बार बार उसकी तरफ इशारा करके बोलना आपने क्या कहा, सर में भारीपन बना रहना और ऐसा लगना कि आवाज कान तक तो आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं हमको कान में उसकी क्लैरिटी प्रॉपर नहीं है, तो ये शुरुआती लक्षण है जिसको आप टाइम पे अगर देखते हैं, पहचानते हैं, या जहां पर शोर नहीं है आप वहां बैठे और कान में आपकी सीटी या सनसनाहट की आवाज बनी हुई है, तो जैसे ही लक्षण शुरू हो, कान की कोई प्रिसीडिंग यानी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि आपको कोई कान की बीमारी रही है, सब कुछ सामान्य ही था, तो सब सामान रहने के बाद लाउड साउंड करने के बाद अगर इस तरह के लक्षण आए, सर में भारीपन है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, कान में सीटी बज रही है, तो फिर डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए।
2: अभी हाल ही में इस संदर्भ में एम्स में एक स्टडी हुई जिसमें डॉक्टर्स ने एक फॉर्मूला दिया 60-60 रूल और उसको अपनाने की सलाह दी, इसके बारे में थोड़ा बताएं ये क्या है और इससे किस तरह से मदद मिलती है?
3: ये 60-60 रूल बेसिकली इसलिए

0: बनाया गया है कि यदि आप लगातार काम में तेज आवाज का इस्तेमाल हो रहा है या कोई क्लासेस कर रहे हैं या कॉल सेंटर में काम करने वाले हैं तो 60 मिनट तक आप कान में ईयरफोन का इस्तेमाल करें, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके 60% से ऊपर ना जाएं। जैसे मान लीजिए जो वॉल्यूम है वो 0 से 10 के बीच में, तो उसको 6 से ऊपर ना बढ़ाएं। दूसरा, अगर 85 डेसिबल से ऊपर आप लगातार कोई भी चीज लगातार सुन रहे हैं तो वो कान में टेम्पररी शिफ्ट को परमानेंट शिफ्ट की तरफ धकेल देता है। तो 60-60 रूल यही है कि 60 मिनट और 60% ऑफ इंटेंसिटी, और उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का फिर ब्रेक लें। दो दो ढाई ढाई घंटे जो लगातार ऑनलाइन लगे रहते हैं वो ठीक नहीं है। 10 से 15 मिनट का ब्रेक आपके कान को सुरक्षित भी रखेगा और आपकी सुनने की क्षमता भी बनी रहेगी।
1: अच्छा, क्या जैसे आपने बताया कि ब्रेक लेना जरूरी है, क्या कोई ऐसी भी लिमिट है कि दिन भर में कितनी देर तक ईयरफोन का इस्तेमाल करना सुरक्षित माना गया है?
0: देखिए, इस पे कोई इस तरह की शोध नहीं है, बस ये कहा जाता है कि कोई भी चीज की इंटेंसिटी अगर 85 डेसिबल से ऊपर लगातार 3 से 4 घंटे से ज्यादा है तो वो नुकसानदेह है।
1: जी, आजकल मार्केट में कई तरह का इस तरह का भी है कि नॉइज कैंसलेशन हेडफोन आ गए हैं जो सामान्य हेडफोन की तुलना में सुरक्षित बताए जाते हैं, क्या वाकई इस तरह का कुछ फर्क पड़ता है या कोई भी हेडफोन हो हमें ये 60-60 रूल को अपनाना ही चाहिए?
0: जो ANC करके रूल आया है वो ये कहते हैं कि वो बहुत सारी जैसी साउंड है जो कान में बाहर से भी आ सकती थी, अगल बगल से भी आ सकती थी, उसको वो थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी कम कर देते हैं तो थोड़ा सेफ हो जाता है। और हेडफोन में ये अभी कोई इसका स्टैंडर्ड पैमाना तो बना नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, जो ओवरहेड यूज हेडफोन है वो बेटर माने जाते हैं जो ईयर में हम लोग लगाते हैं प्लग के तौर पे। तो जो बड़े साइज के ओवरहेड हेडफोन है दे आर बेटर देन द प्लग साइज हेडफोन्स।
1: ओके, जैसे ये जो आपने बताया इन सावधानियों के साथ ही आदमी को किस तरह के अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, किन लोगों को हियरिंग टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए या मतलब ये टेस्ट के लिए कब जाना चाहिए?
0: देखिए, सुनाई में कोई भी किसी भी तरह की किसी भी एज में दिक्कत अगर हो रही है, स्कूल गोइंग एज में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड एज में भी इम्पोर्टेंट है और यंग एज में भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरह से कान में भारीपन, कान में सीटी या सनसनाहट, बातचीत करने के समय ऐसा लगना कि हमको कान में कुछ महसूस सा हो रहा है, तो फिर आपको तुरंत जाके एक बार ENT चेकअप करा लेना चाहिए। ओल्ड एज में तो मुझे लगता है कि अगर आप 60+ है तो आपको कम से कम साल में एक बार जाके ENT डिपार्टमेंट दिखाना चाहिए। जैसे आई के लिए विजन टेस्ट होता है वैसे कान के लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट होते हैं, तो एक वर्ष में अगर एक बार आप जाके ऑडियोमेट्री टेस्ट करा लेते हैं तो आपको अपनी श्रवण शक्ति का भी अंदाजा लग जाता है या उसमें अगर कोई कमी आ रही है तो समय से उसका इलाज भी शुरू हो जाता है।
1: जी निश्चित, ये एक टेस्ट कराना तो है ही, अगर क्या इसके अलावा कोई बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, घरेलू उपाय हैं, कोई आदतें हैं जिनको हम अपना सकते हैं कानों को स्वस्थ रखने के लिए?
0: कानों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जो हमारी एक परंपरा चली आ रही है जो तेल डालने वाली, ये कान में पानी और तेल कान को दोनों से बचाना चाहिए। यदि आपका कान बार बार खराब होता है, इन्फेक्शन होता है, तो कॉटन में वैसलीन लगा करना है पहली चीज। दूसरा, नियमित अंतराल पे अगर आपको कान में दर्द बना रहता है तो अपने मन से कहीं से भी लेकर कोई भी दवा कान में ना छोड़े, क्योंकि यदि कान का इन्फेक्शन है या कान में वैक्स है या कान में फंगल इन्फेक्शन है तो ये किसी एक दवा के कारण नहीं बल्कि उसी की दवा के द्वारा ही ठीक होगा। तो घर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कान में तेल और पानी ना जाए, किसी भी दवा का ब्लाइंडली इस्तेमाल ना किया जाए, थोड़े से भी लक्षण अगर होते हैं तो जाके एक सिंपल सा रेगुलर चेकअप करा सकते हैं।
1: जी, सुनने संबंधी दिक्कतों के साथ साथ आजकल छोटे बच्चों में स्लीप एपेनिया की समस्या भी बढ़ी है, यह क्या है और माता पिता इसे कैसे पहचान सकते हैं?
0: देखिए, स्लीप एपेनिया बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ये स्लीप एपनिया बेसिकली एक सिंड्रोम है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, और जनरली छोटे बच्चों में ये ओबेसिटी के साथ भी आता है कि जैसे मोटापा बहुत ज्यादा है बच्चों में, खान पान गड़बड़ है बच्चे का। तो इसको समझने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि स्लीप एपनिया का जो बच्चा है या एडल्ट भी है तो रात को वो खर्राटे ले रहा है कि नहीं, उसके खर्राटे बहुत तेज हैं कि नहीं। दूसरा, क्या दिन में उसको हर समय सुस्ती बनी रहती है या कहीं भी दिन में वो 2 मिनट के लिए बैठता है तो सो जाता है। तो अगर ये दोनों चीजें बनी हुई हैं तो चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब दूसरा, स्लीप एपनिया छोटे बच्चों में क्या होता है कि कभी कभी एडिनॉइड के कारण भी, क्योंकि एडिनॉइड क्या है, एक लिम्फेटिक टिश्यू है जिसे टॉन्सिल होते हैं, तो गले के अंदर अगर टॉन्सिल बढ़े हैं और नाक के पीछे अगर एडिनॉइड बढ़ा है तो निसंदेह उस व्यक्ति को नाक के रास्ते सांस लेने में दिक्कत आएगी। जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो वो खर्राटे लेगा। ये खर्राटे धीरे धीरे धीरे धीरे आपके शरीर में ऑक्सीजन की रात में मात्रा कम कर देते हैं। अब जब शरीर में से ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में जो पहुंचती है कम हो जाती है तो अचानक से झटके के साथ नींद खुलती है, नींद खुलती है तो एयर हंगर होता है। तो ये अगर बार बार ये प्रक्रिया बनी रहती है तो इसका धीरे धीरे मस्तिष्क पर भी और हृदय पर भी, दोनों पर ही इसके दुष्परिणाम होते हैं।
1: आपने खर्राटे का जिक्र किया, क्या हर खर्राटा लेने वाला मतलब बच्चा हो या एडल्ट, क्या वो खतरे की निशानी है या ये खर्राटे लेना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है?
0: खर्राटे ये डिपेंड करता है कि खर्राटे रात में आप जो आपके स्लीप साइकिल है उसमें कितनी अवधि तक है। यदि किसी समय आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है या तकिए के कारण सर ऊंचा हो जाता है और थोड़ी देर के लिए पोस्चरल चेंज के कारण खर्राटे आते हैं तो ये सामान्य है। लेकिन अगर पूरी रात आपका खर्राटे बने रहते हैं, सुबह आप उठते हैं तो आपको थकान से महसूस होती है, बॉडी

0: लो एनर्जी लेवल का फील करता है, दिन में आप किसी भी समय सो जाते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं आपको झपकी आ जा रही है, तो फिर ये लक्षण इस बात इंगित करते हैं कि ये आपका जो स्नोरिंग है ये अब बीमारी वाली स्नोरिंग है, ये साधारण स्नोरिंग नहीं है।
1: आपने खान पान और मोटापे का जिक्र किया कि स्लीपेपेनिया के लिए एक कारण वो भी होता है, तो इसका इलाज क्या है? क्या सर्जरी इसका इलाज है या जीवन शैली में बदलाव करके भी इसको ठीक किया जा सकता है?
0: देखिए छोटे बच्चों में अगर स्नोरिंग है खर्राटे, स्लीप एपनिया पे मैं नहीं बात कर रहा अभी, मैं स्नोरिंग पे पहले बता रहा हूँ कि अगर स्नोरिंग आ रही है बच्चे को और उसको लगातार स्नोरिंग के कारण उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है, तो ये एंटी चेकअप कराएं। अगर अगर एडिनॉइड बहुत बड़े हुए हैं और टॉन्सिल बहुत बड़े हुए हैं तो सर्जिकली उसको रिमूव करके वो सामान्य जीवन जी सकता है। जनरली जो एडिनॉइड होते हैं वो टीनेज तक आते आते 13-14 साल तक अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बने हुए हैं परसिस्टेंट किए हुए हैं तो कभी कभी ये यंग लोगों में भी मिलते हैं और परसिस्टेंट रहते हैं, तो उसको नाक की जांच के जरिए, दूरबीन की जांच के जरिए देखा जा सकता है, एक्सरे करा के देखा जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है। यंग ऑनसेट जो एज में स्लीप एपनिया है ये थोड़ी सी ट्रबलसम इसलिए है कि जब आपके दिमाग तक ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं पहुंचती है और उसके सारे लक्षण आपको दिखने लगते हैं, खर्राटे भी आते हैं, बॉडी लो फील करती है और सर में भारीपन बना रहता है, तो बहुत से लोग मशीन लेते हैं, सीपैप मशीन लगाते हैं और बहुत से लोग सर्जिकल जाते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, उसको फॉलो करिए, फिर उसको फॉलो करके अगर आप अपनी ओबेसिटी को कम करते हैं, अपना भोजन का समय शाम को जल्दी रख लें, सुबह नियमित व्यायाम कर लें, भोजन बहुत भारी न लें, अगर ये सारी चीज करते हैं तो ये समस्या काफी हद तक बिना सर्जरी किए दूर की जा सकती है। तो योगा और एक्सरसाइज और डाइट प्लान, ये तीनों चीजें मिलकर इसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं।
1: निश्चित रूप से ये डाइट बहुत महत्वपूर्ण रहती है और योगा वगैरह भी। इसके साथ ही जैसे आजकल प्रदूषण के कारण भी लोगों को नाक कान और गले से जुड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं, ऐसे में जो लोग लगातार फील्ड में रहते हैं या जिनको ऐसी जगहों पे काम करना है जहाँ पे प्रदूषण थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो लोग क्या सामान्य सावधानियां रखनी चाहिए उनको और वो कैसे अपने नाक कान गले को स्वस्थ रख सकते हैं?
0: देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है मॉर्निंग में उठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका जो नासिका से लेकर श्वसन तंत्र है वो एक बार पूरे दिन के लिए सक्रिय हो जाता है। दूसरा, कोविड के दिनों में जब पॉल्यूशन खत्म हो गया था तो बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो एलर्जिक ट्रीटमेंट ले रहे थे कि तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत आराम मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रिकॉशन, यदि आप ढंग से प्रिकॉशन लेते हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा धुआं है, धूल है, प्रदूषण है, मास्क का इस्तेमाल जो लोग करना भूल गए हैं वो मास्क का फिर से इस्तेमाल करें, बचें, ड्यूरेशन से बचें, जैसे कि साउंड में ड्यूरेशन है वैसे इसके साथ भी है, पार्टिकल जो नाक के रास्ते होते हुए श्वसन तंत्र तक पहुंचता है और फिर वो धीरे धीरे एलर्जी और फिर एलर्जी आगे कन्वर्ट होकर अस्थमा में कन्वर्ट होती है। तो जितनी भी एलर्जिक के पेशेंट्स हैं लगभग 40% पेशेंट बाद में धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो एलर्जी के लक्षण को पहचानें, अगर छोटे बच्चे में शुरू से ही कुछ इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, नाक बह रही है बार बार, छींकें बहुत आ रही, जुकाम बना हुआ, कान में भारीपन है, तो उसको सीधा स्क्रीनिंग कराएं उसकी कि कहीं वो एलर्जिक तो नहीं है, और यदि वो एलर्जिक है तो फिर उस हिसाब से धीरे धीरे करके उनके आसपास की सारी चीजें जो उस तरह के एलर्जेंस वाले हैं उससे उनको दूर रखें। और सेम अगेन चीजें किया, अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज, ये इसका बेनिफिट इसमें भी मिलता है आपको कि आगे चल के आपके एलर्जी के लक्षण कम होने लगते हैं।
1: जी, ये जो एलर्जी के लक्षण, बहुत सारे लोगों में ऐसी भी दिक्कतें आती है कि जैसे ही सीजन चेंज होता है वो तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं या उनका गला खराब हो जाता है या लगातार उन्हें बार बार जुकाम होता है, इसकी क्या वजह होती है? उनको क्या ध्यान रखना है? क्यों ये हर सीजन चेंज पे उनको ये प्रॉब्लम होती है और ये सिर्फ सर्दी में नहीं, इवन गर्मी में भी उनको ये दिक्कत होती है, बारिश में भी होती है?
0: देखिए एलर्जी वाला पार्ट को बोलते हैं एलर्जी मार्च, होता यह है कि जब एलर्जी का सीजन आता है तो सीजन का मतलब ये कि जब पॉलन्स निकलते हैं उस समय मैक्सिमम एलर्जी होती है, वो पॉलन धीरे धीरे वायुमंडल में फैल जाते हैं और आपके नाक से श्वसन तंत्र तक पहुंचते हैं और वहां से एलर्जी के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, उनको 12 महीने कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या बनी रहे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके लक्षण पहचाने कि अगर छींके बनी हुई है लगातार, आंख में खुजली रहती है, तलों में खुजली रहती है, तालू में लगता है आपको ऐसा है, या साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि बीच बीच में हमारे कान भी बंद हो रहे हैं एलर्जी के कारण, या आप नाक में हमेशा एक इचिंग सेंसेशन बना रहता है, स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, फेशियल हैवीनेस लगता है, चेहरे पे भारीपन लगता है, और आंख के नीचे अगर हल्की सी ब्लैकनिंग आ रही है तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं एलर्जी के पेशेंट हैं, और इन लक्षणों को फिर पहचानते हुए फिर जाके अपना ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कराएं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चों के लिए ये जो एलर्जी टेस्ट हो रहे हैं, ये जो स्क्रीनिंग हो रही है, एक एडल्ट जिसकी बार बार नाक बंद हो रही है या गले की समस्या से जो पीड़ित है, वो ऐसे कौन से सामान्य 2-4 टेस्ट हैं जो करा सकता है और इसके बारे में सामान्य जानकारी इकट्ठा कर सकता है?
0: आप देखिए एडल्ट अगर है तो केवल अपने लक्षणों को पहचाने वो एलर्जिक है या नहीं, किसी एक विशेष मौसम में नाक का बंद होना, नाक से पानी गिरना, छींके आना, सर में भारीपन रहना,

0: लगातार या नाक से सांस लेने में कठिनाई होना, अगर ये 5 लक्षणों में कोई भी लक्षण आपके पास बार बार आ रहे हैं तो फिर सीधा अपने ENT सर्जन को कंसल्ट करें। मैं कहूं कि दो तीन चीजों को अगर अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन सबके पीछे एक इलाज है, वो है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप एलर्जी से लड़ सकते हैं। बाकी एलर्जी से बचने का प्रिकॉशन है केवल, वो प्रिकॉशन को आपको फॉलो करना है। और इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो जैसे अपने डाइट में आंवला है, हल्दी है, शहद है, ये इनको इंकॉर्पोरेट करें तो आपको शायद एलर्जी की बहुत दिनों तक दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: निश्चित रूप से हमारे श्रोता आपके दिए गए सुझावों को अपनाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे, जिससे हमें नाक कान और गले से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे, युवाओं में ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल से बढ़ रहे हियरिंग लॉस के खतरे पर बलरामपुर अस्पताल के ENT विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे ओम अवस्थी। आकाशवाणी
3: आप सभी श्रोताओं की सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय है पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत मंजूषा का। माना कि रूठना मोहब्बत की निशानी है, मगर मान जाना भी तो उल्फत के रीत है ना। धड़कने थम सी जाती हैं जब कोई रूठ जाता है, तो फिर आइए ऐसे मनाइए कुछ इस तरह से।

मेरे सनम, जी हाँ, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे, तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ। आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीत के बोल एक बार फिर मजरू के, और संगीत भी एक बार फिर ओपी नैयर साहब का।

हवा में आज फिर कोई पुरानी दास्तां आई है, बहकती इन घटाओं में किसी की याद छाई है। नरो के दिल खुद को इस बेईमान मौसम में मोहब्बत मुस्कुरा कर आज खुद महफिल में आई है।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी के गाए, आनंद बख्शी के लिखे फिल्म लोफर के इस गीत के साथ ही गीत मंजूषा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 हो रहे हैं। आपको ले चलते हैं लोक संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं रघुवीर सिंह चाहर के गाए कुछ प्रचलित लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं रघुवीर सिंह चाहर को। अभिनय का गाया ये लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रघुवीर सिंह चहर के गाए कुछ प्रचलित लोकगीत। आप हैं आकाशवाणी आगरा के साथ मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस समय हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

अंग्रेजी में कहते हैं। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शान वैशाली और साथियों की आवाजों में गीत के बोल योगेश के थे, संगीत प्रवीण कुमार का था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अगला गीत फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। गायक कलाकार अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत भी अमिताभ भट्टाचार्य का।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आप सुन रहे थे स्मृति चौहान और असीस को। फिल्म का नाम था अय्यारी। गीत के बोल मनोज मुंतशिर के थे, संगीत रोचक कोहली का था।

आपने अमावस फिल्म का गीत सुना? अरमान मलिक की आवाज में गीत के बोल जुनैद वासी के थे, संगीत असद खान का था। उसके पहले आपने एयरलिफ्ट फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया, जिसमें गायक कलाकार अरिजीत थे, गीत कुमार का था, संगीत अमान मलिक का था। आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता, आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में स्वयं अमित त्रिवेदी के गाए जयदीप साहनी के लिखे फिल्म अंधाधुंध के गीत के साथ ही सुर सरिता कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: ऊपर से जाते बत्ती है ना है धूप ना कसूर ना कसूर।
0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से इसके बाद आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम नए तराने में, उसके बाद दिन में 3:00 गीत कुंजन में, रात 8:00 गाने नए पुराने में और रात 8:30 पर चित्रपट संगीत के तहत।

आप सभी श्रोताओं की सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर। इस समय सुबह के 10:30 होने को है। समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गजेंद्र सिंह का गाया राग अहीर भैरव में ख्याल गायन। तो सुनते हैं राग अहीर भैरव, कलाकार गजेंद्र सिंह।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गजेंद्र सिंह का गाया राग अहीर भैरव मिखाल। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आप घर में हो अथवा दफ्तर में, अपना काम समाप्त करने के उपरांत विद्युत उपकरण बंद करना मत भूलिए।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस बार बीमा सेक्टर के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि किस तरह से दुर्घटना के समय जो बीमा राशि मिलती है वो हमारा बहुत बड़ा संबल बनती है और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग दुर्घटना के समय या फिर उससे पहले छोटी छोटी जो प्लानिंग्स करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा साथ देती है, हिम्मत देती है, जीवन में आगे बढ़ने का संबल उसी से हमें प्रदान होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस सेक्टर का जिक्र किया है, हम कितना जानते हैं इसके बारे में और क्या हमारे मन में सवाल हैं, उन सबके जवाब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। इस विषय के बारे में हम ज्यादा जानेंगे, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक हैं, मुख्य अधिकारी हैं पीएनबी बैंक से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: हमारे साथ हैं श्री कुलभूषण शर्मा जी, आप जीवन बीमा निगम से हैं, रीजनल मैनेजर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारे साथ डिप्टी जनरल मैनेजर हैं SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, श्री ह्यूबर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
3: थैंक यू मैडम।
0: श्री अशोक कुमार हैं, आप AGM हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सहायक महाप्रबंधक। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत।
4: थैंक यू मैम।
0: तो ऐसा कर

0: श्रोताओं, सबसे पहले हम मन की बात का वो हिस्सा सुनते हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीमा क्षेत्र का जिक्र किया है, दुर्घटना बीमा का उल्लेख किया है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें।
0: तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख किया और साथ ही हमें प्रेरित किया कि इस क्षेत्र के बारे में हमारी जानकारी और बढ़े। तो इनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आइए साथियों, पहले बात करते हैं दुर्घटना बीमा की। छोटा कदम बड़ा बदलाव कैसे बनता है, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। और मैं सबसे पहले अशोक चंद्र जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि अगर हम दुर्घटना बीमा की बात करते हैं तो नाम थोड़ा सा डराता है, ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद हमें कुछ राशि मिलेगी तो दुर्घटना ही क्यों हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में हम इन चीजों से बच भी नहीं सकते, जब बुरा समय आता है तो बताकर नहीं आता। और ऐसे में जहां हमें संगी साथियों की, परिजनों की जरूरत पड़ती है, वहीं जरूरत पड़ती है कुछ धनराशि की भी जो हमें हौसला दे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आम नागरिकों के जीवन में लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका क्या महत्व है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने जिक्र किया, आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जून 2026 के मन की बात कार्यक्रम में दो चीजों का उन्होंने उल्लेख किया, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। और ये दोनों जो स्कीम्स हैं ये लोगों की लाइफ से जुड़े हुए हैं, और किसी तरीके की अनहोनी अगर होती है आपके लाइफ में तो आपके परिवार को कैसे एक आर्थिक

0: मदद मिले, उसके अंतर्गत ये दोनों कार्यक्रम, दोनों जो स्कीम्स हैं उसके भीतर आती हैं। और इसके माध्यम से आई थिंक बहुत बड़े सेक्शन को कंट्री के भीतर, पॉलिसीज के भीतर, जीवन बीमा के भीतर हम उनको कवर कर सकते हैं, और उनको एक किसी भी चैलेंजेज अगर आती हैं लाइफ में तो उसको हम उनके माध्यम से मदद कर सकते हैं
1: जी।
0: और इसका इंपॉर्टेंस यह है कि देखिए, लाइफ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा लाइफ का एक पहलू होता है, जीवन सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं। और उसके अंतर्गत ये जो एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 साल से 50 साल के लोगों को 436 रुपए में 2 लाख तक के इंश्योरेंस कवर दिए जाते हैं, और वैसा ही है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंतर्गत 20 रुपए में आप किसी भी तरीके की अगर दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना से आप अगर डिजेबल हो जाते हैं या आप असामयिक देहांत हो जाता है, तो उसमें भी आपके जो परिवार वाले हैं जिसको आपने नॉमिनेशन किया है उनको भी 2 लाख का ये मदद मिलता है। इस कार्यक्रम को मैं इससे देखता हूं कि जब आप 12 साल पहले अगर जाएं, 2014 में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री के भीतर स्टार्ट किया गया, वित्तीय समावेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का विस्तार किया गया, जिसमें आज करीब 56 करोड़ लोग बैंक की प्रणाली से जुड़े हैं
1: जी,
0: और उसमें करीब 2,67,000 करोड़ की डिपॉजिट उन स्कीम्स में मौजूद है, तो उसको ही आगे कैसे ले जाया जाए, उन लोग जो बैंक के से जुड़े और बैंक में खाता उन्होंने खोला, तो बैंक का खाता खोलना तो एक इमीडिएट एक रिक्वायरमेंट थी और उसमें हम लोगों ने उसमें मदद की लोगों को खाता खोलने में, लेकिन उसको और आगे लेकर कैसे जाएं, उसमें ये जो 2 स्कीम्स हैं जो सुरक्षा आपको प्रोवाइड करती हैं उसको आगे ले जाने का प्रयास स्कीम्स के माध्यम से किया जा रहा है। और मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन 2 स्कीम से जुड़े। आई थिंक इतनी कम राशि में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज
1: जी,
0: एक तो दुर्घटना के लिए और एक जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं वो
1: जी,
0: आई थिंक किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में नहीं मिल सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्कीम्स के साथ जुड़े और इन स्कीम्स का लाभ उठाएं
1: जी। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, जब हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन की, ऐसे में हमारे देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो स्थापित काम कर रहा है, उनके लिए फिर भी ये बात सरल लगती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनका बहुत ही संगठित क्षेत्र में जो काम नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वित्तीय समावेशन में क्या हम उन्हें भी शामिल कर रहे हैं इन पॉलिसीज के थ्रू?
2: मेरे विचार में वित्तीय समावेशन में जब जीवन बीमा के हितलाभों को जोड़ा गया, तो शायद प्रधानमंत्री महोदय अपने एक दीर्घकालिक एजेंडा के तहत ग्रामीण क्षेत्र को या उन क्षेत्रों को जोड़ना चाहते थे जिनको इंश्योरेंस कंपनीज टारगेट नहीं कर रही थी, उनका लक्ष्य नहीं ले रही थी, क्योंकि माना यह जाता था कि उनके भुगतान योग्य क्षमता कम है, इसलिए कम राशि में बीमा किया गया। मेरे विचार में शायद हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सस्ती ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और 20 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शायद पूरे विश्व की सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी होगी
1: जी।
2: जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, मुझे लगता है हमें अपने लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी मानव का अपने परिवार के लिए 2 प्रकार का मूल्य है। पहला भावनात्मक, जो कोई किसी का माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है। दूसरा है उनका कोई ना कोई वित्तीय मूल्य है, जिसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में आंकते हैं, मानव जीवन मूल्य के आधार पर। मैं जितना अपने परिवार के लिए कमा के देने वाला हूँ वो मेरा मानव जीवन मूल्य है, अगले 10 वर्ष में मैं कितना कमाने वाला हूँ ये मेरे मानव जीवन मूल्य का आंकलन हो सकता है। और मान लीजिए मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो मेरे परिवार को एक वित्तीय क्षति होती है जिसके लिए बीमा समाधान उपलब्ध है। 2 लाख का बीमा समाधान सस्ता है, लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि क्या 2 लाख पर्याप्त है, इसलिए शायद 2 संदर्भ में इसको किया गया। 2 लाख का जो जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ है
1: जी,
2: उसमें हमने किसी भी प्रकार की मृत्यु को कवर किया है, और दुर्घटनावश मृत्यु के लिए हमने 20 रुपए में 2 लाख का और कवर किया है। ये प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस है, और इसके बारे में हम जितनी जागरूकता फैलाएंगे उतना बढ़िया होता जाएगा। और आज के डेट में अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं नवंबर 2025 के अनुसार, 25,79,00,000 लोग इस बीमा योजना से जुड़ चुके हैं
1: जी।
2: अभी तक 10,02,628 मृत्यु दावों का भुगतान किया गया है, जो विश्वास बढ़ाता है इस प्रणाली में कि बीमित लोगों को जब भी इस तरह का कोई अकस्मात इमरजेंसी आएगा तो भुगतान किया जाएगा
1: जी। तो भरोसा बढ़ता है इससे। यहाँ अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से अगर हम तुलना करें तो भारतीय बीमा

0: बाजार में आप क्या बड़े बदलाव देख रहे हैं? अब लोग इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा अवेयर हुए हैं क्या? और जिस तरह से अर्निंग को लेकर बहुत कॉशियस रहते हैं, वैसे सेविंग्स के साथ साथ क्या इंश्योरेंस की तरफ भी उनका ध्यान बढ़ा है? क्या कहेंगे आप?
1: धन्यवाद नीलम जी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि पीएमजेजेवाई और पीएमएसवाई ये भी इंश्योरेंस की एक स्कीम्स हैं जो कि अफोर्डेबल कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराती हैं
0: जी।
1: तो ये जो हमारा वित्तीय समावेशन है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है तो इसमें हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर देना पड़ेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने वित्तीय समावेशन का नियम फार्मूला लाए
0: जी।
1: इसको उपयोगी कैसे करें, वित्तीय समावेशन क्या है, कैसे इसको ले आ पाए, तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि उपयोगी और किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे बैंकिंग, ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान, खासकर कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूह के लिए उचित लागत पर कम से कम उनको खर्च करना पड़े। भारत में वित्तीय समावेशन के तहत जो बीमा योजना उपलब्ध है उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इसमें उपलब्ध हैं। आप अगर इसको देखें कि अभी तक हमारे पास 31 मार्च 26 तक हमारे देश में कितना पीएमजेजेवाई और कितना पीएमएसवीवाई लोगों को उपलब्ध हुआ है
0: जी,
1: तो पीएमजेजेवाई 23,35,00,000 एक फिगर है जो अभी तक हमारे देश में 31 मार्च 26 तक दी जा चुकी है
0: जी।
1: पीएमएसवीवाई 53,97,00,000 इतने लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है। टोटल इसको अगर इस तरह से देखें कि इसमें पीएमजेजेवाई और एसबीआई पूरे जो समूह है उसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस सभी इसको उपलब्ध कराते हैं, तो सभी को टोटल मिला के ये संख्या उपलब्ध कराई है। इसमें हमारे एसबीआई का अगर आप शेयर देखें
0: जी,
1: तो लगभग पूरे बैंकिंग क्षेत्र में हमारा 35% का शेयर है और 30% का शेयर पीएमएसवीवाई में है। इसको अगर समझें कि पीएमजेजेवाई क्यों जरूरी है, तो पीएमजेजेवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है लोगों के लिए, कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए या कम निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। और अगर उनका कोई व्यक्ति जो मेन कमाने वाला घर का मुखिया होता है उसकी किसी कार्य से दुर्घटना होने पे या दुर्घटना होने पे उसका किसी तरह की क्षति होती है, मान लीजिए कि उसका आधा पैर हाथ या इस तरह की दुर्घटना में उसको जो काम करने की है उसकी क्षति होती है, तो उसको कोई बीमा किसी तरह का नहीं मिलता। इसी तरह अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है। और हमारे देश में ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में या निम्न आय वर्ग के लोग हैं जिनके पास इस तरह की कोई सुरक्षा बीमा उपलब्ध नहीं है
0: जी।
1: तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो की थी, ये पूरी तरह लाइफ इंश्योरेंस है और इसमें सिर्फ ₹436 एनुअल प्रीमियम है, वार्षिक प्रीमियम सिर्फ ₹436 है। इसको भुगतान करके कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। उसके साथ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका बैंक में खाता होना चाहिए
0: जी,
1: ये उसकी कंडीशन है। और ₹436 में लेने के बाद एक साल के लिए उसको ₹2,00,000 का बीमा पूरे एक साल के लिए मुफ्त है कि अगर उसके साथ कुछ भी घटित होता है
0: जी,
1: तो उसका ₹2,00,000 उसके नॉमिनी को प्राप्त हो जाए
0: जी। इस बारे में मैं आपसे और भी जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपकी पसंद का एक गाना सुनवाना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को। अशोक जी, आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
1: मैं ना भूलूंगा
0: जी,
1: जो शोर फिल्म का गाना है उसको आप सुनवाइए
0: जी, बहुत ही प्यारा सा गाना।

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई दो योजनाओं की, जो कि बीमा योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, और साथ ही बीमा क्षेत्र के बारे में हम अपनी जानकारी भी बढ़ा रहे हैं हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं पीएनबी बैंक से प्रबंध निदेशक श्री अशोक चंद्र जी, हमारे साथ हैं जीवन बीमा निगम क्षेत्र के रीजनल मैनेजर श्री कुलभूषण शर्मा जी। इस समय स्टूडियो में श्री ह्यूबर्ट हैं, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और श्री अशोक कुमार हैं एजीएम एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक। और हम बात कर रहे थे कि ये योजनाएं क्यों शुरू की गई और इनका लाभ किस तरह से मिल रहा है आमजन को। तो मैं अशोक जी अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जो निम्न आय वर्ग है उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं जो कि इसी तरह का असंगठित

0: क्षेत्रों में जो काम करते हैं या श्रमिक हैं, मजदूर हैं, क्या वो भी इसका लाभ ले सकते हैं?
1: या बिल्कुल, इस स्कीम में केवल एक ही क्राइटेरिया है, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए
0: जी,
1: और एज जो है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर 18 साल से 50 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, और अगर आपने ये लिया हुआ है तो 55 साल तक आप इसको अवेल कर सकते हैं
0: जी।
1: दूसरा, इसमें और कोई किसी भी तरीके के प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं, और जैसा कि हमारे शर्मा जी ने भी बताया आपको कि बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है, और इतने कम रुपए में आप कोई ऐसी स्कीम के अंतर्गत आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं
0: जी।
1: मैं देख रहा था कि 436 रुपए जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर है और 20 रुपए जीवन सुरक्षा बीमा योजना के भीतर है, और अगर आप चाहें तो दोनों आप एक साथ ले सकते हैं, तो टोटल आपकी जो खर्च होती है वो 456 रुपए खर्च होता है
0: जी।
1: आप 365 दिन से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो 1 रुपए 24 पैसे, 1.25 रुपए में आपको ये स्कीम 2 लाख का कवरेज आपको मिल रहा है
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि जितने लोग हैं और जिस आयु वर्ग में 18 से 50 साल के इस ग्रुप में है, आई थिंक उनको तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना तो लेना ही चाहिए, और ये गांव में तो है ही, शहर में भी है, इनफैक्ट सारे सर्विस सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं हम लोगों ने खुद लिया हुआ है
0: जी।
1: मैंने अपना खुद इंश्योरेंस कवरेज दोनों स्कीम में लिया हुआ है, इसका लाभ तो हमारे देश के सारे नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लें और एक सुरक्षा कवच के रूप में एक अपने नॉमिनीज को प्रोवाइड करें
0: जी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही कम हमें इसके लिए भुगतान करना है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोटा कदम बड़ा बदलाव, कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट एक देना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण जी, जैसा अभी सर ने बताया अशोक चंद्र जी ने, कि हम लोग जो सर्विस सेक्टर में हम भी ले सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी आप डिटेल में इस बारे में बताएं कि एक परिवार में क्या ऐसा कोई नियम है कि एक ही व्यक्ति ले सकता है, जो परिवार का मुखिया है वही ये बीमा ले सकता है, और इसके लिए क्या कोई आय प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, क्या प्रक्रिया है?
2: जहाँ तक प्रधानमंत्री योजनाओं का संदर्भ है, दोनों ही योजनाओं में किसी प्रकार का आय का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता
0: जी।
2: किसी भी प्रकार का सदस्यों के रूप में संख्या का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास खाता है, जो खाता धारक है, वो उसे ले सकता है
0: जी।
2: केवल एक शर्त है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार ये लाभ नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी उनका खाता है और पीएनबी में भी खाता है, तो दोनों जगह से 2-2 लाख का वो बीमा नहीं ले सकता
0: जी।
2: इसके अलावा और कोई भी इस पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, परिवार के अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 अगर वो खाता धारक हैं तो बीमा ले सकते हैं, और प्रीमियम देने की दशा में प्रीमियम की कटौती होना पर्याप्त है मृत्यु की दशा में बीमा राशि देने के लिए। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं मांगते। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, नामांकित व्यक्ति का केवाईसी मांगा जाता है जिसमें उनका आधार कार्ड वैध है और उनके खाते का होना, और खाते को भी नेफ्ट किया जाएगा, सीधा ग्राहक के खाते में पहुंचता है पैसा, उसका पंजीकरण किया जाना आवश्यक होता है। केवल इतनी ही शर्तें इस पे लागू हैं
0: जी। अगर उन्होंने पहले से प्राइवेट सेक्टर में कोई बीमा लिया है तो क्या वो एक अवरोधक है या उसके साथ ही बीमा लिया जा सकता है?
2: चाहे उन्होंने निजी क्षेत्र में लिया हो या सरकारी क्षेत्र में लिया हो
0: जी।
2: अगर पीएमजेजेवाई के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बीमा लिया गया है तो उसकी इस पे कोई भी बाध्यता नहीं है। ये 2 लाख का बीमा राशि पीएमजेजेबीवाई में और 2 लाख की बीमा राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उपलब्ध है
0: जी। इस बारे में मैं आपसे और सवाल करूंगी, लेकिन पहले एक सवाल कि आप कौन सा गाना सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं?
2: आज का जैसा वातावरण है
0: जी,
2: किशोर कुमार जी का एक गाना है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, वो मुझे मेरा वैसे भी फेवरेट गाना है, बहुत मुझे अच्छा लगता है,
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे विशेषज्ञ आज हमें बता रहे हैं दुर्घटना बीमा के बारे में विस्तार से और क्या प्रक्रिया है, किस तरह से उचित माध्यम से इसका लाभ लिया जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले दिनों आपने क्या ऐसा बड़ा बदलाव देखा है? क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो जागरूक हैं बीमा के बारे में?
1: बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नीलम जी आपने। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजरा है
0: जी।
1: तो जब कोरोना में बहुत सारे हमारे देशवासियों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोगों का अपना कार्ड छूटा, तो इन परिस्थितियों में ये जिसने जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले से नामांकन किया था हमारे देशवासियों ने, उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिली। तो इसमें नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों में जितना अधिक से अधिक लोगों ने नामांकन किया है उसी हिसाब से उसी रेशियो में कंपनियों ने उनको भुगतान किया, और इसमें भुगतान का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है
0: जी।
1: इसमें क्लेम तुरंत हो जाता है और बहुत समय नहीं लगता, लगभग एक माह के अंदर क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। पहले मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कौन एनरोलमेंट कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितनी उम्र तक ये वैलिड है
0: जी।
1: तो इसमें जीवन ज्योति बीमा योजना ये पूरी तरह से बीमा योजना है। इसमें किसी भी कार्ड से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। इसमें कुछ नहीं पूछा जाता कि मृत्यु कैसे। इसका प्रीमियम मात्र 436 रुपए है, साल भर के लिए है। अगर किसी ने बीच में प्रीमियम लिया है तो उसको प्रोरेटा पे वो कम हो जाता है
0: जी।
1: और 1 जून से 31 मई हर साल उसके लिए वैलिड होती है। इसका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट माध्यम से मई के 31 मई के आसपास आपके खाते से डेबिट होता है। तो सभी भाइयों ने जिन्होंने अभी तक स्कीम ली है उनसे अनुरोध है कि वो कृपया ये सुनिश्चित करें कि जब भी मई महीने में इसका रिन्यूअल आए तो अपने खाते में सफिशियंट बैलेंस रखें
0: जी।
1: क्योंकि अगर एक बार रिन्यूअल में पैसा नहीं कटा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो फिर से आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो पहला तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, इसमें जो एनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया था कि 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है वो इसमें एनरोल कर सकता है। ये स्कीम 55 साल तक लागू रहती है। अगर आपने 18 से 50 साल के बीच में एनरोलमेंट कर लिया है तो स्कीम का लाभ आप 55 साल की उम्र तक ले सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के खाते कवर होते हैं। बैंक में आपका ओडी है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सेविंग बैंक है, चालू खाता है, सभी खाते इसमें कवर है। आपका बैंक में खाता होना चाहिए। जो इसकी

0: पॉलिसी है उसमें एक 30 दिन का कूलिंग पीरियड रहता है कि अगर उस पीरियड में कुछ बात होती है तो उसके बाद आपको वो पैसा मिलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए इसमें एनरोलमेंट कर लेना चाहिए
1: जी।
0: दुर्घटना की स्थिति में ये तुरंत लागू हो जाता है, जैसे ही आपने किया है ये उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सुरक्षा बीमा योजना की। तो सुरक्षा बीमा योजना ये एक तरह से पूरी तरह दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु होने पर या विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करते हैं
1: जी।
0: इसका प्रीमियम मात्र 20 रुपए है, साल भर का प्रीमियम मात्र 20 रुपए है और इसमें 18 से 70 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसका खाता बैंक में या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए
1: जी।
0: ये आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता दोनों को कवर प्रदान करती है। 18 से 70 वर्ष के जो भी खाता धारक हैं और किसी भी तरह का उनका बैंक में खाता है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है या चालू खाता है, बचत खाता है, वो इसके लिए एलिजिबल है।

0: मृत्यु और विकलांगता दोनों को कवर प्रदान करती है। 18 से 70 वर्ष के जो भी खाता धारक हैं और किसी भी तरह का उनका बैंक में खाता है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है या चालू खाता है, बचत खाता है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें तुरंत एनरोलमेंट करा सकते हैं
1: जी।
0: ये पॉलिसी भी 1 जून से 31 मई तक के लिए वैलिड होती है और मई महीने में इसका फिर से रिन्यूअल प्रीमियम आपके खाते से डेबिट होता है
1: जी।
0: तो उसको आप सफिशियंट अपना मई महीने में बचत रखें जिससे कि आपके खाते से उसका प्रीमियम डेबिट हो सके
1: जी।
0: इसमें 2 लाख का कवर है जो एक्सीडेंटल केस में है और इसका क्लेमेंट बड़ा ही सिंपल है। इसको आप जैसे ही किसी की मृत्यु होती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और उसके कारण के साथ कि किस कारण से मृत्यु हुई है आप उस बैंक में दे दें तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं और वहां से क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। इसमें एक चीज जो हमने नोटिस की है वो हम कहना चाहेंगे कि जब भी इस कंपनी में, इस इंश्योरेंस स्कीम में जब भी कोई व्यक्ति नॉमिनी करे तो ध्यान रखे कि अपनी नॉमिनी का नाम ध्यान से उसमें भरें
1: जी।
0: क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब नॉमिनी का नाम होता है तो पहले कई बार गलत भर दिया जाता है जिसको सुधारने में फिर काफी समय लगता है। तो इसका ध्यान रखना है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो जो भी आपकी नॉमिनी है उसका नाम ठीक से भरा जाए
1: जी। ये आपने पूरी प्रक्रिया हमें समझाई और बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो अब विचार कर रहे होंगे ये बीमा लेने के लिए, उन्हें पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और जो हमारे हेल्प करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, हमारे घर में जो काम के लिए आते हैं, चाहे हमारे ड्राइवर भैया हैं, माली काका हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी बताएं इसके बारे में, क्योंकि उनके लिए बेहद उपयोगी ये होगा। और जो जानकारी है उससे हमें पता चलता है कि बहुत ही सरल तरीके से ये बीमा लिया जा सकता है। अशोक चंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी सर, अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी जब हम लेते हैं तब उसमें शुरुआत में तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़े अच्छे से समझा दिया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस पैसे की, तो एक तो अगर वो दुर्घटना बीमा है या मृत्यु बीमा भी है, तो होता यह है कि एक तो परिवार वैसे ही दुखी है, परेशान है, मनोबल उनका बहुत कम है और उसमें हिडन क्लॉजेस भी सामने आते हैं, निजी क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या इस तरह का कोई लूप होल, क्या कमी इस पॉलिसी में भी है, इन योजनाओं से जुड़ी है?
2: नहीं, इनफैक्ट इस स्कीम की यही ब्यूटी है
1: जी
2: कि जितना ये सरल है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, उतना ही सरल है इसके कोई भी क्लेम अगर आते हैं तो उसके निपटारा के लिए भी
1: जी।
2: और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो भी दोनों स्कीम के अंतर्गत जो इंश्योरेंस ली जाती है, चूंकि ये बैंक के माध्यम से होता है, जैसा कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने बताया आपको कि खाता होना आपका जरूरी है, बैंक में खाता होना चाहिए और बैंक के खाते में ही इसका प्रीमियम जो है वो डेबिट होता है। और बैंक एक मीडियम है जो ये फैसिलिटी आपको इंश्योरेंस की प्रोवाइड करता है, तो इसमें किसी भी तरीके के जो क्लेम होते हैं तो हमारे बैंक के जो साथी हैं वो उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके और रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज में उसको दाखिल करते हैं और बैंक पूरा सहयोग करता है इसमें, इसको निपटारा करने के लिए। और जैसा कि अभी चर्चा में आया कि क्लेम सेटलमेंट अगर देखा जाए तो 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इसमें
1: जी,
2: प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में, और करीब 97% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में। तो इसमें किसी भी तरीके की शंका और कठिनाई आप नहीं समझें कि इंश्योरेंस तो मिल गया लेकिन आगे क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा, बहुत ही सरल है और ये प्रायोरिटी में आता है हमारा, चूंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ये पार्ट है, तो बैंकों का भी दायित्व तो बनता है इसमें और इंश्योरेंस कंपनीज का भी दायित्व तो बनता है
1: जी
2: कि इसको कैसे जल्दी से इस तरीके के कोई सेटलमेंट क्लेम आए हैं तो उसको निपटारा किया जाए
1: जी। और यहाँ इसी मोड पर आपकी पसंद का एक गाना
2: मेरी तरफ से, अगर आप कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है
1: जी,
2: अगर इस गाने को आप सुनाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी
1: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है हमारे श्रोताओं के लिए, तो लीजिए सुनिए ये गाना।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि बीमा जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, और विशेष तौर से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा को हम समझ रहे हैं अपने विशेषज्ञों के माध्यम से। हमारे विशेषज्ञ बहुत ही सरल भाषा में, और बैंकिंग प्रणाली किस तरह से सहयोग करती है वो हमें बता रहे हैं। दुर्घटना बीमा, छोटा कदम बड़ा बदलाव, किस तरह से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है हमारी छोटी छोटी बचत से, हमारे छोटे छोटे प्रयासों से। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, आम तौर पर ऐसा होता है कि हम जब भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बेहद सरल लगता है कोई भी भुगतान करना, या अब पेमेंट हमें जब आती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही एक साइबर फ्रॉड जो है, साइबर क्राइम्स जो है, उसका जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जब ये बीमा योजना जो है पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली पर ही निर्भर है, तो आपको क्या लगता है कितना सुरक्षित ये पूरा कार्य है, और छोटी छोटी बचत जो लोग अपनी जोड़कर देंगे और मुसीबत के लिए उस समय के लिए वो अपना धन संचय करते हैं कि जरूरत के समय हमें काम आए, क्या इसमें इस तरह का कोई डर जुड़ा है साइबर फ्रॉड का?
1: बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में फ्रॉड होने की संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता
0: जी।
1: PMJJY या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इससे जुड़ी संस्थाएं हैं उनके ढांचे में ये पूर्ण व्यवस्था की गई है कि ऐसे फ्रॉड को रोका जा सके और फ्रॉड ना हो। दोनों के सहयोग से अगर ग्राहक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है
0: जी,
1: तो फ्रॉड की संभावना नगण्य अथवा शून्य हो जाती है। मेरे विचार में इस क्षेत्र में अगर हम दोनों योजनाओं की बात करें, हमारा जो ग्राहक है वो बहुत अधिक इंटरनेट अथवा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और भुगतान की विधि हमने नेफ्ट के द्वारा रखी है
0: जी।
1: तो हमारी सांझी जिम्मेवारी बनती है बीमाकर्ता की और बैंक की कि नेफ्ट का जो सही आंकड़े हैं उनकी प्रविष्टि की जाए, उनको भली प्रकार जांच लिया जाए, और क्योंकि ये पैसा सीधा जो बेनिफिशियरी है उसके

0: खाते में जाने वाला है, फ्रॉड को रोका जा सकता है। मेरे विचार में यहाँ उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक को हम दोनों कंपनीज पे भरोसा करना चाहिए, जिस बीमा कंपनी से उन्होंने बीमा लिया है या जिस बैंक से उन्होंने अपना खाता रखा है, दोनों ही सुदृढ़ हैं इस मामले में, जागरूक हैं, ग्राहक उन्मुखी हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो।
1: जी, और क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी शामिल नहीं है कि वो बहुत ही लालच कुछ दे कि हम बहुत कम समय में आपको ये प्रोविडेंट देंगे, ये लाभ देंगे, तो वो जोखिम भी कम हो जाता है, इसमें भरोसा बनाए रखा जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कई बार इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं कि किसी को सांप ने काट लिया, उसकी वजह से मृत्यु हो गई, या बिजली गिरी है कहीं पर, या किसी घर का निर्माण हो रहा था, छत ढह गई है, बारिश या भूकंप में इस तरह की दुर्घटना हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दौरान, जबकि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं और घर का माहौल भी जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो कैसे मदद होती है इन योजनाओं के माध्यम से?
2: धन्यवाद नीलम जी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि जब इस तरह की दुर्घटना उनके साथ हो जाए तो वो किस तरह इसके साथ डील करें। तो पहला तो ये कि दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है, किसी भी कारण से होती है, तो जीवन ज्योति बीमा योजना में कवर मिलता है। तो उसके लिए सिर्फ हमें मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति है जिसका बीमा किया गया है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो वो बनवाने के लिए तुरंत उसका प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो सवाल आपका था कि जो सुरक्षा बीमा योजना है, चूंकि एक्सीडेंटल स्कीम है, इसमें 2 लाख का बीमा कवर है, उसमें एक्सीडेंट से है, तो जैसे सर्पदंश से अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें ये डॉक्टर कन्फर्म करेगा कि हाँ इस वजह से इसकी मृत्यु हुई है, हमारे जो खाता धारक है उसकी, वो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगा। तो ये जो 2 रिपोर्ट होंगी, इसको जैसे ही बैंक में सबमिट करेंगे तो बैंक इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए उसको पोर्टल पर डाल देगी।
1: जी,
2: ऐसे ही जो आपने बोला कि आकाशीय बिजली गिरने से अगर होती है, तो वो भी इसमें कवर है, दुर्घटना बीमा योजना में दोनों कवर है, तो इसमें हो जाएगा। अगर मकान गिरने से हुआ है तो वो भी इसमें कवर है। तो कोई भी दुर्घटना होती है और उसके कारण अगर मृत्यु होती है तो इसमें दोनों तरह का बीमा मिलेगा।
1: जी,
2: सुरक्षा बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा और जीवन बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा। तो अगर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप के दसने से, बिजली आकाशीय बिजली गिरने से, या उसका मकान ढहने से हुई है, तो उस केस में उस व्यक्ति को 2+2 4 लाख रुपए का क्लेम बैंक से और जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे पास हो जाए।
1: जी, और कितनी समय सीमा के भीतर ये मिलता है, या कितने दिन का समय उसे दिया जाता है ताकि परिजन स्वयं को संभाल सकें, क्योंकि कुछ समय उन्हें अपने लिए भी चाहिए होता है, तुरंत वो क्लेम के लिए नहीं आ सकते, तो कितना समय उनके पास होता है?
2: सो इसमें देखिए, 1 महीने का समय मिलता है कि हम कम से कम 1 माह में उसको जितनी जल्दी सहायता करें उतना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो 1 माह या 2 माह या 3 माह में नहीं कर पाए तो क्लेम उसको नहीं मिलेगा।
1: जी,
2: जब उसको पता चले उसके डोमिनी को कि हमारा इंश्योरेंस था, पति का उसके खाते से पैसे कटे हैं, तो जैसे ही उसको पता चले वो इन कागजों के साथ बैंक में संपर्क करें। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग भी मदद करते हैं कि हमारा काफी नेटवर्क है। आप जानते हैं कि बैंक में न सिर्फ ब्रांचें हैं, हमारे ग्राहक सेवा केंद्र भी हैं। तो हमारा जो नेटवर्क है, हम उन लोगों को, क्योंकि ग्राहक सेवा केंद्र गांव में रहता है और एक गांव के लगभग काफी लोगों को वो परिचित होता है, तो जैसे किसी की मृत्यु होती है, जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का प्रतिनिधि है उसको पता चल जाता है, तो वो उसको मदद करता है कि इन्होंने जीवन बीमा लिया था, इन्होंने सुरक्षा बीमा योजना लिया था, तो वो उसके कागज बनवाने में भी मदद करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट कराने में बैंक को भी मदद करते हैं।
1: जी, यानी सुओ मोटो एक्शंस भी हैं, मदद की जाती
2: है। यस,
1: जी। यहाँ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बीमा लेते वक्त अपना नॉमिनी नहीं किसी ने रजिस्टर किया है, उसकी जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होता है?
2: ये जो हमारी सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें प्री कंडीशन है नॉमिनी का नाम देना। जब भी हम बीमा एनरोल करते हैं उसी समय नॉमिनी का नाम उसमें डालना आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसमें नॉमिनी नहीं मिले। बस गलती कई बार ये हो जाती है कि चूंकि फॉर्म अक्सर अंग्रेजी में भरे जाते हैं तो स्पेलिंग में कई बार लोगों से गलतियां हो जाती, या लोग कुछ बुलाते हैं घर पे कुछ और, कई बार उस नाम को भर देते हैं, बट नॉमिनी उसमें डालना कंपलसरी है, उसके बिना बीमा आज की तारीख में नहीं मिलता है। तो इस तरह की कोई शिकायत इसमें नहीं है।
1: जी, आपसे जानना चाहूंगी सर, प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हैं, विशेष तौर से महिलाओं के लिए हैं, छोटे छोटे समूह में महिलाएं ग्रुप इंश्योरेंस भी ले रही हैं। ऐसे में जो महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और कभी कभी वो अपने घर पर भी नहीं बताना

0: चाहती हैं अपनी बचत के बारे में, कई बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो क्या इसमें किसी विटनेस की भी जरूरत होती है जब वो बीमा लेती हैं? किसी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं साथ में, या ग्रुप इंश्योरेंस का भी कुछ इसमें हो सकता है?
1: नहीं, इसमें कोई विटनेस की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ इंड्यूस्ड फॉर्म होता है और उसमें खुद वो अपना डिटेल्स भरे जाते हैं इसमें, और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जैसा कि अभी बताया गया आप
0: जी।
1: और सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो बहुत ही अच्छा है, जितनी महिलाएं उसके भीतर ग्रुप के भीतर काम कर रही हैं, आई थिंक सारी महिलाएं इस दोनों स्कीम्स का लाभ उठा सकती हैं। और आज के डेट में अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हम देखते हैं इसको
0: जी।
1: और उसमें अगर इसको सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर ये लाभ भी उनको प्रोवाइड की जाए बैंकों के माध्यम से या अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से उनको इसमें भी जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ी क्रांति देश के भीतर हो सकती है। देखिए आज जो भारत के भीतर स्थिति है, आई थिंक 4-5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में है, और जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं और उसके भीतर हम काफी काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी गांव-गांव तक होना चाहिए। और उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके माध्यम से हम जो लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं उनको अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है
0: जी।
1: ये दो स्कीम्स का तो लाभ हमको मिलता ही है लेकिन इसके माध्यम से उनको ये भी जानकारी मिलती है कि हमें आगे और भी किसी तरीके के इंश्योरेंस कुछ लेने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो एक बहुत बड़ा रोल विकास के दर में काम करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये।
0: और कंपनियां जो है जो कि कुछ इंप्लॉयज के साथ में काम कर रही है, वो हायर करते हैं टैलेंट को, क्या कंपनी अपनी तरफ से उनका इंश्योरेंस करवा सकती है या ये इंडिविजुअल लेवल पर?
1: नहीं, ये होता तो इंडिविजुअल लेवल पे ही होता है, उसके बैंक के खाते से ही होता है
0: जी।
1: और अभी तो जीवन सुरक्षा पोर्टल डेवलप हो गई है जिससे किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मिस सेलिंग नहीं हो, कस्टमर के कंसेंट लेने के बाद ही इसको दोनों पॉलिसीज को लोगों को मुहैया कराई जाए। और उसके लिए अभी जीवन सुरक्षा पोर्टल में आप लोग अप्लाई करते हैं और उसमें बैंक के जो साथी हैं उसमें मदद करते हैं और उसके बाद उनके कंसेंट के बाद ही ये पॉलिसी ली जाती है। लेकिन जरूर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को मदद करना चाहता है तो वो जो प्रीमियम पे कर रहा है उतनी प्रीमियम राशि वो रीइंबर्स कर सकता है उनको, और आई थिंक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी कर रहे हैं, उनको ये इसका लाभ प्रोवाइड करने के लिए पूरी जो प्रीमियम है वो रीइंबर्स कर देते हैं, उनके खाते में वो क्रेडिट कर देते हैं, ये किया जा सकता है इसमें
0: जी। ये किया जा सकता है जी। कुलभूषण शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जीवन बीमा निगम के बारे में तो भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये जो ध्येय वाक्य है ये लोगों को रटा हुआ है। ऐसे में जब हमारे बैंक्स भी अब बीमा प्रणाली से जुड़ रहे हैं तो कई बार भारत में क्योंकि इतना विशाल देश है और भौगोलिक विशेषताएं हमारी हैं लेकिन विविधताएं भी हैं उसमें, कई जगह स्थानीय बैंक भी होते हैं जो कि सरकारी बैंक नहीं है, निजी क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं और वो एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं, क्या वो इस तरह का बीमा जो है वो करवा सकते हैं या ये योजना वो उपलब्ध करवा सकते हैं, एंटाइटल हैं वो?
2: नीलम जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आमतौर पर धारणा ये है कि निजी बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं शायद अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक हैं वो RBI के द्वारा नियंत्रित हैं, वो नियामक है, उनके द्वारा ही उनको लाइसेंसिंग किया जाता है, तो यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा कि छोटे बैंक या निजी बैंक उस परिधि में नहीं आते हैं। मैं उत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो सेंट्रलाइज हब है उसका प्रभारी हूँ
0: जी।
2: मेरे पास इस समय लगभग 130 छोटे बड़े बैंक्स हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हमारे साथ MOU साइन करके कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। और अखिल भारतीय स्तर पे पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये हमारे उत्तर क्षेत्र LIC से जुड़े हुए हैं जिनका पूरे भारत का कार्य करने का तरीका हम देख रहे हैं
0: जी।
2: कहीं भी हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया है कि किसी निजी बैंक ने या किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक ने इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण कार्य किया हो, तो लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए। हमारी जो भी राजकीय व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बहुत सक्षम है और जितने भी नियामक हैं वो अपना कार्य भली प्रकार कर रहे हैं, और ये तो योजना ही सरकार की है और इसमें वित्तीय सेवाएं विभाग हमारे मॉनिटर के रूप में काम करता है, समय समय पर इसकी समीक्षाएं की जाती हैं, जो भी आंकड़े हैं उस पे अनुसंधान किया जाता है
0: जी।
2: अगर कुछ ऐसा होता तो आज तक पकड़ में आया होता, तो मुझे लगता है कि हम भरोसा दिला सकते हैं देश की जनता को कि ये जो भी प्रणाली है एकदम बढ़िया कार्य कर रही है और वो चिंता मुक्त होके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी बैंक हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, सबको जो लाइसेंस दिया गया है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है, और उस प्रक्रिया के

0: उनका उत्तरदायित्व भी बनता है। यहां मैं एक नामांकन के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।
1: जी
0: नामांकन क्योंकि आवश्यक है तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्यवश जिस व्यक्ति को नामांकित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी इसका बीमा धारक है वो अपना नामांकन परिवर्तन करा ले, क्योंकि अगर नामांकन नहीं है वैध रूप से तो मृत्यु की दशा में पैसा किसको दे, ये बैंक के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न करता है और उसके लिए जो नियम है वो बहुत बहुत सख्त हैं। या तो एक सस्सेक्शन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जो न्यायालय से मिलता है और उसमें बहुत समय लगता है, या बैंकिंग प्रणाली में एक और है सर्टिफिकेट ऑफ लीगल हीयर्स, उनके जो भी वारिसों का एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसको बनाना पड़ता है
1: जी।
0: तो अंग्रेजी में कहते हैं स्टिच ऑन टाइम इज बेटर। तो अगर हम पहले से ही ध्यान रखें, वैध नॉमिनेशन रखें, वैलिड नॉमिनेशन रखें और नॉमिनी की अगर मृत्यु हो जाती है तो तुरंत नया नॉमिनी निर्धारित कर दें, तो ये भुगतान देने में दोनों संस्थाओं को भी आसानी होगी और जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ भी समय अनुसार मिल पाएगा, क्योंकि मृत्यु दावा का भुगतान समय अनुसार होना बहुत आवश्यक है
1: जी। और जो नॉमिनी है उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, वो नाबालिग भी हो सकती है।
0: अगर नाबालिग है, मान लीजिए किसी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बालिग नॉमिनी नहीं है, तो उसके लिए एक अपॉइंटी को नियुक्त किया जाता है
1: जी,
0: जो उसके साथ मिलके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है
1: जी। अभी कुछ समय पहले आपने डेटा बताया कि पूरे देश में इसका लाभ उठा रहे हैं लोग, बेहद जागरूक हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़कर बीमा योजना में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं ह्यूबर्ट सर आपसे जानना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट का किस तरह का एक्सपीरियंस है? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग?
2: थैंक यू मैडम फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सी, इंडियाज विजन बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन डिपेंड्स ऑन एम्पावरिंग एवरी सिटीजन
1: जी,
2: इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एम्पावरमेंट। अ डेवलप्ड नेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच एंड एवरी सिटीजन इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली एम्पावर्ड। वी एज अ बैंकर, as an insurance company, as a post office, we are working on it so that each and every nook and corner of India, the financial accessibility is there.
1: Ji.
2: We are working on it so that each and every individual, whether you are in the rural area, extreme corner of in the northeast, extreme corner in the southwest, that financial accessibility should be there. We are working on it. That is one of the prime goal of our this one. That is financial inclusion. We want each and every individual citizen of India should be financially inclusion, financially strong, economically strong, so that India becomes a developed nation.
1: Gee.
2: We specifically in Northeast, yes, there are difficult terrain, there are difficult road condition, where financial accessibility is very difficult, where we cannot reach to the villages, which is far away where there is no proper accessibility.
1: Gee.
2: But still then, we try our best as a financial sector, as an insurance company, post office. We ensure that the financial services, banking services, insurance services is reached to the corner by way of opening customer service points, by way of giving this mitras from time to time. Post offices, postmen are reaching there. So not only in Northeast, in other parts there are also difficult centers, but still then we are doing our best so that India, everyone is economically strong, everyone is, the financial services is reached to each and every citizen of India. This is like as a banker, as a financial services, we are working on it.
1: जी, thank you so much for sharing it. और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था वो भारत का पहला गांव है माणा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम जन सेवा जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, यही ध्येय है। तो ये जो योजनाएं शुरू की गई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका लाभ इसी प्रकार से मिलता रहे सभी को। हम आम तौर पर जब दुर्घटना की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब हम बीमा ले रहे हैं यानी हम किसी परिजन की मृत्यु की कामना कर रहे हैं, लेकिन ये भावना नहीं है। ये योजनाएं जो हैं हमें ये बताती हैं कि जब बहुत कठिन समय है, जब चाहकर भी हमारे अपने परिजन कुछ नहीं कर पाते हैं किसी दुख की घड़ी में, जब दुर्घटना के समय शारीरिक दुख वो साझा नहीं कर सकते किसी का, और अचानक जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसे टाला नहीं जा सकता, उस समय के लिए मानसिक रूप से हम खुद को तैयार करें, लेकिन आर्थिक रूप से हमें सक्षम बनाए रखने के लिए ये योजनाएं इंट्रोड्यूस की गई हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे बैंक और हमारा बीमा क्षेत्र इस तरह से काम कर रहा है कि देश के कोने कोने तक इनका लाभ पहुंचे। और यही उद्देश्य आकाशवाणी का हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस बारे में जागरूकता फैले और लोगों को पता

0: चले कि वो स्वयं भी इसका लाभ ले सकते हैं और हमारे जो हाउस हेल्प हैं, हमसे जुड़े हुए ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, निम्न आय वर्ग से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम समझाएं कि किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि कोरोना ने भी हमें सिखाया है कि कब एक छोटी सी मदद बहुत बड़ी हो सकती है और कब बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी मिलकर हमें वो संबल नहीं दे पाती जो कोई एक व्यक्ति एक सही समय पर आकर हमें देता है। तो यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का भी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको इन योजनाओं के बारे में और बीमा क्षेत्र के बारे में काफी कुछ जानने समझने को मिला होगा। मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से सबसे पहले तो अपने विशेषज्ञों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगी। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ रहे हमारे साथ श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक से। हमारे साथ थे श्री कुलभूषण शर्मा, आप जीवन बीमा निगम क्षेत्र से रीजनल मैनेजर आप हैं। श्री ह्यूबर्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर उप महाप्रबंधक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और श्री अशोक कुमार आप सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। श्री अशोक चंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी आवश्यक बातें हमें बताई, हमें जरूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्री कुलभूषण शर्मा जी, आपने जीवन बीमा निगम के बारे में भी बताया, लेकिन आपने ये भी बताया कि कैसे परस्पर भरोसा जो है वो रखा जाना चाहिए इस पूरी प्रणाली में, और छोटी छोटी चीजें जो हम बीमा योजना लेते समय पूरा करें, उस कागज को कैसे हमें भरना है, वो कैसे हमारे लिए जरूरी है, ये आपने हमें समझाया, जैसे नॉमिनी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी।
0: अशोक कुमार जी, आपने बहुत अच्छे से सारा डेटा हमारे सामने रखा और हमें बताया कि किस प्रकार से इनका लाभ लिया जा सकता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे इनरोल करना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ह्यूबर्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आपसे अनुमति लेती हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम दुर्घटना बीमा, छोटा कदम बड़ा बदलाव, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ और कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं ब्रज लोकगीत। हमारे आज के कलाकार हैं मंगल सिंह और साथी। आइए सुनते हैं मंगल सिंह और साथियों का गाया ये लोकगीत, श्री गौराजी घोटे भंग।

श्री गौरा जी खोटे भंग छान के पी रहे त्रिपुरारी। ये लोकगीत आपने सुना मंगल सिंह और साथियों के स्वर में। आइए अब सुनते हैं इन्हीं के स्वर में राधा रोबे अकेली बैठ अंगना, ये लोकगीत।

राधा रोबे अकेली बैठ अंगना, जाके आंसू टपक रहे दो नैना। ये लोकगीत आप सुन रहे थे मंगल सिंह और साथियों के स्वर में। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं ब्रिज लोकगीत लोकमंजरी कार्यक्रम में। कलाकार हैं मंगल सिंह और साथी।

श्री बांके बिहारी नंदलाल बिरज में आए जई हो, ये लोकगीत आपने सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत लेकर ग्वालन को साथ, एक बार फिर मंगल सिंह और साथियों के स्वर में।

लेकर ग्वालन को साथ जिन गेंद को खेल रचायो है। ये लोकगीत आपने सुना और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मंगल सिंह और साथियों के ही स्वर में ये लोकगीत श्री यशोदा के जाए नंदलाल।

0: श्री यशोदा के जाए नंदलाल चरा में ब्रज में गैया। ये लोकगीत आप सुन रहे थे मंगल सिंह और साथियों के स्वर में। इसके साथ ही ब्रज लोक गीत का कार्यक्रम लोक मंजरी अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार थे मंगल सिंह और साथी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं आंखें फिल्म का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। प्रवीण भारद्वाज के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

आखिरी फिल्म का गीत आपने सुना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। जतिन ललित के संगीत निर्देशन में गीत के बोल प्रवीण भारद्वाज के थे। आशिक बनाया आपने, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं हिमेश रेशमिया, इसे फिर से सुन लें। गीतकार हैं समीर, संगीत हिमेश रेशमिया का है, आवाजें हैं हिमेश रेशमिया, कृष्णा और साथियों की।

आशिक बनाया आपने, इस फिल्म का गीत आपने सुना हिमेश रेशमिया, कृष्णा और साथियों के स्वर में। गीत रचना समीर की थी, संगीत हिमेश रेशमिया का। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई तरह नहीं। आशिकी 2 फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं अंकित तिवारी की आवाज में। संदीप नाथ के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अंकित तिवारी ने।

0: आशिकी टू फिल्म का गीत आपने सुना अंकित तिवारी की आवाज में। संदीप नाथ के लिखे इस गीत को संगीत दिया था खुद अंकित तिवारी ने। कार्यक्रम का अगला गीत बिग ब्रदर फिल्म से है। गीत रचना आनंद राज आनंद की, संगीत आनंद राज आनंद का, आवाजें आनंद राज आनंद, जसपिंदर नरूला और साथियों की।
1: हाँ भी थल्ले आजा, तेरे ना गल करनी है।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं खिलाड़ी 786 फिल्म का गीत जावेद अली, श्रेया घोषाल और साथियों के स्वर में। शबीर अहमद के गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

खिलाड़ी 786 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जावेद अली, श्रेया घोषाल और साथियों के स्वर में। शबीर अहमद के लिखे इस गीत को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: नमस्कार, लीजिए सुनिए दोपहर एक बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा
1: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवा की जोड़ी का मुकाबला

0: की कलीद करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में 242 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश ने भी अपने जंगलात को फैलाने में कामयाबी हासिल की है। फितरत में अदम तवाजुन के लिए जरूरी है कि हर शहरी माहौल के तई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। एक पेड़ माँ के नाम जैसे इकदाम माशरे को फितरत से जज्बाती तौर पर जोड़ते हैं। वजीर आला ने कहा,
1: प्रधानमंत्री जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जब देशवासियों से कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का हिस्सा बने, तो मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम यूपी के अंदर संपन्न हुआ और यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है। नए नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है।
0: उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत का अहद करें। इस दौरान वजीर आला ने मौके पर लगाए गए दरख्तों का मुआयना भी किया और उनकी मुनासिब हिफाजत की हिदायत दी। सैनिक स्कूल के तुलबा, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट्स ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वजीर आला ने बच्चों से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की और एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत सेल्फियां भी लीं। उन्होंने नौजवानों को माहौलियाती तहफ्फुज के सफीर के तौर पर काम करने की तरगीब दी। रियासत में शजरकारी मुहिम 2026 का आगाज आज से हो गया। रियासती हुकूमत ने इस शजरकारी मुहिम के जरिए 35 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। रियासत के तमाम महकमे, स्कूल, कॉलेज और इदारे इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नामा निगार ने बताया कि ये मुहिम 27 महकमों के तावन से चलाई जाएगी।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: रियासत गिर शजरकारी मुहिम के तहत हापुड़, चित्रकूट, हमीरपुर, संत कबीर नगर, कौशाम्बी, पीलीभीत और अमरोहा में भी एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाकर माहौलियाती तहफ्फुज़ का पैगाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में नायब वजीर आला और वजीर सेहत ब्रजेश पाठक ने आज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शजरकारी मुहिम के तौर पर एक पौधा लगाया। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि दरख्त लगाने से न सिर्फ माहौलियात बेहतर होता है बल्कि इर्द गिर्द हरियाली भी आती है जिससे हमें साफ ऑक्सीजन मिलती है। उन्होंने कहा कि आम आवाम एक पेड़ मां के नाम महाअभियान को कामयाब बनाने के लिए अथक मेहनत कर रही है। लखनऊ में शजरकारी मुहिम के तहत 3,360 मकामात पर पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के पिपराइच असेंबली हलके में 757 करोड़ रुपए से ज्यादा के 24 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन मंसूबों से खित्ते में तरक्की होगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बेहतर राब्तों से मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। वजीर आला ने कहा,
1: स्पीड जितनी

0: प्रगति होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी, और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
1: अयोध्या में राम मंदिर की तामीर कमेटी की 3 रोजा मीटिंग के तीसरे दिन कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने 2 रोजा मीटिंग के दौरान किए गए अहम फैसलों का जायजा पेश किया। उन्होंने वजाहत की कि ये मीटिंग 2 मरहलों में हुई, जिसके दौरान रामकथा म्यूजियम और मंदिर की तामीर से मुतालिक कई अहम मसाइल पर हतमी फैसले किए गए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि रामकथा म्यूजियम की तमाम गैलरियों के स्क्रिप्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है। म्यूजियम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भगवान श्री राम के जंगल के सफर की नुमाइश करेगा। ये दरियाए सरयू से शुरू होकर उत्तर घाट पर इख्तिताम पजीर होगा। अकीदतमंदों की तादाद में कमी की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वालों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो अफवाहें ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग 22 जुलाई को होगी, जिसमें सीईओ की तकरीरी और कमेटियों और जेली कमेटियों के मुस्तकबिल समेत कई इंतजामी अमूर पर फैसले किए जाएंगे। और रियासत के कई इजला में कल से बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ इजला में मूसलाधार बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है, जिससे आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से
3: आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 1:16 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम बालमंडल।

नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम बाल मंडल में और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी राशि दीदी। बच्चों, रविवार का दिन है यानी हमारी मुलाकात का दिन है और ये तो आप जानते ही हैं कि हम जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ फ्रूटफुल बातें तो करते ही हैं। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही अद्भुत विषय पर। हमारा विषय है आशा के रंग सपनों के संग। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा विषय है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बच्चों, आप लोगों के लिए आशा का मतलब है एक प्यारी सी मुस्कान और हर नई सुबह में कुछ नया सीखने की चाह। जब आप अपने मन में आशा के रंग भरते हैं तो हर मुश्किल काम आपको आसान लगने लगता है। ये रंग आपको सिखाता है कि अगर आज कोई खिलौना टूट जाए या पढ़ाई में कोई बात समझ ना आए तो कोई बात नहीं, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों, आशावादी बच्चे हमेशा खुश रहते हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से अपने दोस्तों, अपने परिवार के चेहरे पर हमेशा खुशियां लाते हैं। सपनों का साथ बच्चों के जीवन को और भी जादुई बना देता है, ये तो मुझे भी फील होता है और आपको भी कहीं ना कहीं होता ही होगा। खुली आंखों से देखे गए सपने हम जैसे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या एक अच्छा इंसान बनने में बड़ा मदद करते हैं। बच्चों, जब आशा के खूबसूरत रंग इन सपनों के साथ मिलते हैं तो आप जैसे बच्चे अपने लक्ष्य को पाना सीख जाते हैं। बच्चों, सपने देखना बच्चों के दिमाग को नई उड़ान देता है और आपको हर दिन कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हर बच्चे को अपने मन में उम्मीदों के रंग सजाकर रखने चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे दिल से मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, करेंगे ना आप भी दिल से मेहनत? जरूर करेंगे। और आपके जितने भी सपने हैं ना, आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा हार्डवर्क और आप अपने सपनों को साकार होता हुआ देखेंगे। यही मेरी भगवान से कामना है। तो चलिए, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल मंडल और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी राशि दीदी। बच्चों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी आशा के रंग सपनों के संग विषय पर, और अब वक्त हो चला है गीत सुनने का, जो है जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, और लिया गया है ये गाना फिल्म सुर से।

सुना बच्चों ये आपने गीत, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल। अब पता नहीं हमारा दिल क्या ढूंढता है और क्या नहीं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक अगले सेगमेंट का। सेगमेंट का नाम है रोचक जानकारी, और जिसमें आज हम बात करेंगे धूल भरी आंधी के रहस्य के बारे में। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये धूल भरी आंधी चलती कैसे है? बच्चों, मौसम में कब क्या हो जाए ये तो केवल वैज्ञानिक जान सकते हैं, लेकिन प्रकृति इतनी बलवान है कि कभी कभी वैज्ञानिक भी गलत साबित हो जाते हैं। तेज हवाएं जब चलती हैं तब आनंद तो बड़ा आता है, लेकिन जब वो अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। बच्चों, आप जानते हैं धूल भरी आंधी तब चलती है जब तेज हवाएं जमीन पर मौजूद सूखी मिट्टी, रेत और धूल को ऊपर उड़ा देती हैं। गर्मियों के दिनों में जब सूरज की तेज धूप के कारण जमीन बहुत गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठने लगती है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा बहुत तेजी से दौड़ती है, जबकि यही तेज रफ्तार जमीन पर बिखरी धूल मिट्टी को अपने साथ आसमान की तरफ खींच लेती है, जो एक बड़े धूल के बादल जैसी दिखने लगती है। आंधी चलने से पहले अचानक मौसम बदलने लगता है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। देखते ही देखते आसमान का रंग पीला, फिर नारंगी और फिर भूरा हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। इस समय हवा इतनी तेज होती है कि पेड़ों के पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं और कई बार तो कमजोर पेड़ उखड़ भी जाते हैं। धूल के हवा में तैरने के कारण हमें सामने की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कम विजिबिलिटी कहा जाता है और अंग्रेजी में कहते हैं लो विजिबिलिटी। बच्चों को धूल भरी आंधी के समय अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आप अगर घर के बाहर हो और आंधी शुरू हो तो तुरंत अपने घर के अंदर चले जाइए और घर के सभी दरवाजों को, खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए।

0: आप बाहर हैं तो अपनी आंखों को धूल से आपको बचा लेना चाहिए। बच्चों, अपनी आंखों को धूल से बचाइए, उन्हें बंद रखिए, चश्मा पहन लीजिए, नाक और मुंह को रुमाल से मास्क से ढक लीजिए। आंधी की रुकने के बाद जब बारिश होती है ना बच्चों, तो हवा में तैर रही सारी धूल जमीन पर बैठ जाती है और मौसम फिर से साफ हो जाता है। धूल भरी आंधी के बाद आंखों में जलन होना बड़ी आम बात है। लालपन या खुजली होना एक आम समस्या है। धूल के छोटे छोटे कण आंखों की सुरक्षा का कवच जो है उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे राहत पाने के लिए, आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आप आसान घरेलू उपाय अपना सकते हैं। जैसे ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोएं। आंखों में धूल जाते ही उन्हें रगड़े नहीं, भले ही कितनी भी इचिंग हो, लेकिन रगड़ने से कॉर्निया पर खरोच आ सकती है, जिससे आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है। तो जब आपको आंखों में खुजली हो तो ठंडे पानी से जोर से छींटे मारें, ठंडी सिकाई करें। साफ सूती कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ लीजिए और इस कपड़े को आंखों पर 5 से 10 मिनट के लिए रखें। ये आपकी आंखों को बहुत आराम पहुंचाता है और खुजली के कारण हुई आंखों की सूजन और जलन को कम करने में बड़ा मददगार साबित होता है। बच्चों, एक खास बात और, अगर ये उपाय करके भी आपको आराम ना मिले तो आप अपनी आंखों की जांच किसी नेत्र चिकित्सालय में जरूर कराएं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी। तो बच्चों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जल्द हम लौटेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल मंडल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: हां जी बच्चों, तो ब्रेक से आ गए हम वापस और स्वागत है फिर से आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम बाल मंडल में। और सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को मेरे द्वारा, यानी आपकी प्यारी राशि दीदी से। तो बच्चों, अब वक्त हो चला है एक बाल गीत को श्रवण करने का, जिसका शीर्षक है बंदर मामा पहन पजामा।

0: बंदर मामा पहन पजामा, क्या बाल गीत था ना बच्चों। बच्चों आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मेरी किताब में ये बहुत प्यारा बाल गीत आता था और मैं बड़ा गा गा कर ये सबको सुनाती थी जितने भी लोग मेरे आसपास होते थे, और बंदर को देख के स्पेशली मैं ये पोएम अपनी जरूर गाती थी। अच्छा बच्चों, तो अभी हमने सुना बाल गीत और अब वक्त हो चला है कहानी को श्रवण करने का, जिसका शीर्षक है सदाबहार।
1: 18 अगस्त 2015 सुबह के 6 बजे। रोज की तरह आज सुबह भी मकान नंबर 10 के बाहर से म्यूजिक की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। वही मधुर क्लासिकल धुन शर्मा अंकल के कानों में पड़ी और वे गुस्से से मकान की खिड़की को घूरने लगे। अरे रुचिका उठो, 6 बज गए और ये लो तुम्हारी कॉफी। स्नेहा अपने रोज के कामों में से एक करती हुई म्यूजिक की धुन पे थिरकती हुई खिड़की को खोलती है, ताजी हवा को अपने चेहरे पे महसूस करती है और सदाबहार के पौधे को पानी देते हुए शर्मा अंकल की तरफ देखती है। शर्मा अंकल उसको इस तरह देखते हैं मानो कह रहे हों कि ये रोज रोज के तुम्हारे नाटक से मैं परेशान हो गया हूँ, अखबार भी नहीं पढ़ा जाता मुझसे। और स्नेहा उनको इस तरह देखती है जैसे कह रही हो कि अंकल ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये म्यूजिक बंद नहीं होगा। स्नेहा और रुचिका दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे और रूम शेयर करके दिल्ली में रह रहे थे। अरे भैया वो वाला दो। स्नेहा रोज की तरह 8 बजे अपने कॉलेज की तरफ जाते वक्त एक दुकान के पास रुक गई, इंटर्नशिप के फॉर्म्स लेने के लिए उस दुकान वाले से बहस कर रही थी। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वह बहुत समय से इंटर्नशिप के पीछे पड़ी थी। फॉर्म लेते वक्त ही वह उसी दुकान के बाहर रोड के किनारे बेहोश होकर गिर गई। 19 अगस्त 2015 सुबह के 12 बजे स्नेहा अपनी भारी आंखों को खोलते हुए देखती है एक सीलिंग लैंप और रुचिका की शक्ल। स्नेहा ठीक तो हो तुम, रुचिका ने घबराते हुए पूछा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, भला हो उस आदमी का जो तुम्हें समय रहते यहां पहुंचा है। कौन, स्नेहा ने अपनी कमजोर और डगमगाती आवाज से पूछा। तभी उसे दरवाजे के बाहर एक लड़का दिखाई दिया। वह स्नेहा को इस तरह देख रहा था मानो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा हो, और उसे होश में आता देख वह वहां से चला गया। स्नेहा तुम्हारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हिम्मत से काम लेना होगा हमें। तुम्हें जो मैं बताने जा रही हूं उस बात से तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं होता, इस सब से जीवन रुकता नहीं है, हमें बहादुरी दिखानी होगी। स्नेहा तुम्हें एड्स है। देखो एड्स का होना यह साबित नहीं करता कि तुम गलत हो, हो सकता है किसी डॉक्टर की गलती से तुम्हें इन्फेक्टेड सिरिंज के तौर पे बीमारी ट्रांसफर हो गई हो, इस सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें दिमाग से काम लेना होगा और सतर्क रहना होगा। मैंने तुम्हारी मदद के लिए सारा इंतजाम किया है, तुम्हारे डाइट प्लान्स, दवाइयाँ, तुम्हारे ट्रीटमेंट्स और सारे अपॉइंटमेंट्स फिक्स किए हैं। स्नेहा बस तुम्हें वही स्नेहा बन के दिखाना होगा जो तुम पहले थी। डॉक्टर की इन सब बातों को सुनकर स्नेहा को मानो बहुत बड़ा झटका पहुंचा, वह फिर बेहोश हो गई। 29 अगस्त 2015 सुबह के 6 बजे। इतने दिनों के बाद आज भी स्नेहा के घर के बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रुचिका ने मकान छोड़ दिया था और सदाबहार का वो पौधा मुरझा गया था। वह अपने डॉक्टर के बताए अनुसार एक ऐसे संस्थान में जा रही थी जहां उसी के जैसे पीड़ित लोग रहते हैं। वहां किसी भी तरह की दवाई से मरीजों का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि अंदरूनी तौर पर उन्हें मजबूत किया जाता है। वह अपने घर से बाहर निकली थी कि शर्मा अंकल उन्हें रास्ते में मिल गए। बेटे वो जो तुम जो गाने बजाती थी सुबह। हाँ अंकल, बोलिए। वो दोबारा बजा लिया करो, आदत पड़ गई थी उसकी। मानो स्नेहा को एक आस दिखाई दी।

0: उसे लगा कि कोई है उसके संग जो आज भी खड़ा है। थोड़ी देर बाद स्नेहा उस संस्था में पहुंच गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि मरीजों के लिए कोई कपड़े नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मशीनें नहीं थी, बल्कि एक जमघट लगा हुआ था जिसके बीच में बैठ के एक लड़का गिटार बजा रहा था। हाय स्नेहा, कैसी हो? जब उसका गाना ख़त्म हुआ, स्नेहा उसके पास जाके बैठ गई और उस लड़के ने उससे ये पूछा, मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मुझे एड्स है। ये कोई परेशानी है भला? देखो मेरे गिटार पे क्या लिखा है, इसका अर्थ है लव लाइफ, अपनी जिंदगी से प्यार करना सीखो। ये जो तुम्हें परेशानी मिली है, ये तुम्हें मिली है क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो इसे झेल सकती हो, इसे हरा सकती हो। ये किसी और को नहीं मिली क्योंकि तुम ही हो इसे हराने के योग्य। स्नेहा चुपचाप उसकी बातों को सुनती रही और वह लड़का अपनी जादूगरी को उसके अंदर उतारता रहा। जब दोबारा उसके गाने का समय हुआ तो वह वहां से चल दी। स्नेहा ने एक लड़की को रोककर पूछा कि वो कौन है, तो उस लड़की ने बताया कि इस लड़के को ब्लड कैंसर है। स्नेहा अब समझ चुकी थी कि वह लड़का उसे क्या समझाना चाहता था। 30 अगस्त 2015 सुबह के 6 बजे तेज म्यूजिक की वह आवाज़ फिर से मकान नंबर 10 के बाहर से सुनाई देने लगी। शर्मा अंकल के कान मानो तरस गए थे इस आवाज़ को सुनने के लिए। 3 हफ्ते बाद सदाबहार के उस पौधे में देखा तो एक कली खिलाई थी।
1: वाह बच्चों, सुनी ना आपने कहानी? कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों अभी हमने सुनी थी हमारी कहानी जिसका शीर्षक था सदाबहार, और अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के इस अंतिम सेगमेंट का। बच्चों चलते चलते के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स के बारे में। बच्चों आपको आउटडोर गेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्यारे बच्चों आउटडोर गेम्स आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। लाभदायक मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप गेम्स खेलते हैं और स्पेशली कोई स्पोर्ट एक्टिविटी को करते हैं तो यह आपकी बॉडी को बहुत फिट रखता है। जब आप मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन को छोड़कर खुले मैदान में कदम रखते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों खुशी से झूम उठते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या छुपन छुपाई जैसे खेल, ये खेलने से आपके शरीर का संपूर्ण विकास होता है। दौड़ने और कूदने से आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, हड्डियां फौलादी होती हैं और शरीर में गजब की फुर्ती आती है। सुबह या शाम की तेजी ताजी हवा और सूरज की रोशनी से आपको भरपूर विटामिन डी मिलता है जो आपको बीमारियों से दूर रखता है और आपको हमेशा तंदुरुस्त और ऊर्जावान बनाए रखता है। मैदान पर खेलने का जादू सिर्फ आपकी सेहत तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये आपके दिमाग को भी सुपर कंप्यूटर की तरह तेज बनाता है। जब आप बाहर खेलते हैं तो दिन भर की पढ़ाई का तनाव और थकान पल भर में गायब हो जाती है। खेल आपको सिखाते हैं कि कैसे अपनी टीम के साथ मिलकर जीत हासिल करनी चाहिए और अगर कभी हार भी जाएं तो मुस्कुराकर दोबारा कैसे कोशिश करनी है, ये आपको खेल ही सिखाते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, सोचने की क्षमता तेज होती है और स्कूल की पढ़ाई में भी आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ लगने लगता है। इसलिए प्यारे बच्चों आज ही अपने आप को समझाएं कि आउटडोर गेम्स जो हैं हमारी लाइफ के बहुत ज़्यादा अच्छे पलों में से एक होते हैं। जब आप आउटडोर गेम खेलते हैं तो ये आपके अंदर टीम बिल्ड क्वालिटी को बढ़ाते हैं। बच्चों मोबाइल के नकली वीडियो गेम्स खेलने से बेहतर है कि आप मैदान में पसीना बहाएं, खुलकर हंसें और नए नए दोस्त बनाएं। याद रखिए जो बच्चा खेल के मैदान में दौड़ता है वही असल जिंदगी में एक विजेता की तरह आगे बढ़ता है। तो उठिए, अपनी नींद को जरा बाय बाय करिए, अपने आलस को जरा गुड बाय करिए, अपनी गेंद और रैकेट को उठाइए और चले जाइए मैदान की ओर और खुली हवा में सांस लीजिए। बच्चों वक्त हो चला है अपने कार्यक्रम के समापन का और अब जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि आज हमने करी है ढेर सारी बातें। पहले करी थी चर्चा आशा के रंग सपनों के संग पर, फिर सुना हमने गीत जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, उसके बाद हमने सुनी कहानी बंदर मामा, कहानी सदाबहार, सुना बाल गीत बंदर मामा पहन पजामा, रोचक जानकारी के सेगमेंट में हमने बात की थी धूल भरी आंधी का रहस्य के बारे में और अंत में हमने बात की इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम के बारे में। तो बच्चों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का।

अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे कार्यक्रम बालमंडल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सुधीर नारायण की गाई गजलें। सबसे पहले समाज फरमाइए डाक दहलवी का कलाम आफत की शोखियां हैं।

सुगम संगीत के प्रोग्राम में आप समाप्त फरमा रहे थे सुधीर नारायण की आवाज में दाग दहलवी का कलाम आफत की शोखियां हैं। आप समाप्त फरमाते हैं मजाज का कलाम हुस्न फिर फितनागर है।

मजाज का कलाम आप समाज फरमा रहे थे। हुस्न फिर फितनागर है क्या कहिए, दिल की जानिब नजर है क्या कहिए। आवाज सुधीर नारायण की थी। इसके साथ ही सुगम संगीत का प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया

0: ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज

0: 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला शत प्रतिशत इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका S जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
2: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में S जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। S जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। S जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि S जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबिएला ट्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 2:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम आज के अतिथि का। आज के अतिथि कार्यक्रम में टूरिज्म इंडस्ट्रीज पर वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर उमेंद्र नारायण शुक्ल से बातचीत सुनवा रहे हैं अनिंद्र सिंह की। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आगरा केवल ताजमहल का शहर नहीं है बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों, कला, शिल्प, खानपान और आतिथ्य परंपरा का एक जीवंत केंद्र है। हर वर्ष देश विदेश से लाखों सैलानी यहाँ आते हैं और ऐसे में पर्यटन केवल भ्रमण का विषय नहीं रह जाता है बल्कि ये रोजगार, उद्यमिता, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पर्यटन प्रबंधन संस्थान खंडारी परिसर आगरा में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर UN शुक्ला साहब। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार
3: जी। नमस्कार जी। जी
2: श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि पर्यटन प्रबंधन संस्थान खंडारी परिसर जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के शैक्षणिक कार्यक्रमों के तहत युवाओं को करियर अवसर प्रदान कर रहा है। संस्थान में पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन से संबंधित जो स्नातक, परा स्नातक और डिप्लोमा या शोध कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो शुक्ला साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि जो पर्यटन प्रबंधन संस्थान है इसकी स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई और आज किस प्रकार पर्यटन शिक्षा के क्षेत्र में ये अपनी भूमिका निभा रहा है।
3: जैसा कि पर्यटन प्रबंधन संस्थान ये केवल पर्यटन न होकर के पर्यटन एवं होटल प्रबंधन संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट
2: जी।
3: इसकी स्थापना 2003 में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के विभिन्न विभागों में पर्यटन एवं होटल से संबंधित जो पाठ्यक्रम चल रहे थे उनको समायोजित करके की गई। इसका मुख्य मकसद ये था कि जैसे हमारे यहाँ पहले हिस्ट्री डिपार्टमेंट में टूरिज्म होटल मैनेजमेंट का कोर्स चलता था, BA वोकेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स दाऊदयाल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत चल रहा था, MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स हमने स्टेट पेंशन के अंतर्गत चलाया। तो इन सभी पाठ्यक्रमों को, क्योंकि टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री एलाइड इंडस्ट्री है, एक दूसरे की पूरक है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाना ताकि उसमें हम एक्सपर्टीज विजन एक साथ उनको दे सके, पहला तो मकसद ये रहा
2: जी।
3: दूसरा ये है कि हम लोगों ने, आपको बड़ा ये जानकर के हर्ष होगा कि आगरा विश्वविद्यालय जिसको पहले जाना जाता था, आज इसको डॉक्टर भीमराव के नाम से जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नाम से, आगरा विश्वविद्यालय उन देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक रहा जिसने सबसे पहले पर्यटन एवं होटल मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1985 में चलाया। इससे पूर्व एक दो विश्वविद्यालय ही हुआ करते थे, अदरवाइज आगरा विश्वविद्यालय नंबर सेकंड या थर्ड में इस फील्ड में रहा है। उसके तत्पश्चात हम लोगों ने जो BA वोकेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट 1994 में UGC के प्लान के तहत देश के 25 विश्वविद्यालयों को जो कोर्स दिए गए उसमें से हमारा विश्वविद्यालय अग्रणी विश्वविद्यालय था जिसने 1994 में BA वोकेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट चलाया। तत्पश्चात हम लोगों ने मास्टर डिग्री टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन 1997 में और इसके अलावा एक PG डिप्लोमा और रन किया था। वर्तमान में जहाँ तक इस इन पाठ्यक्रमों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाने का और इनको चलाने का जो उद्देश्य है वो हम क्लियर करना चाहेंगे। आज आप देखिए पूरे ही विश्व पटल पर, न केवल भारत में, विश्व पटल पर बेरोजगारी का एक कॉलम है
2: जी जी।
3: और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगह अगर बेरोजगारी नहीं है, रोजगार बहुत अच्छा है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है बच्चे को तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बनी रहे और पैसा भी बना रहे और इन्जॉय भी करता रहे, ऐसा कुछ हो। तो हम देखते हैं कि पूरे ही विश्व में जितने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग जो रोजगार जनित हैं उसमें से हर 8वां व्यक्ति टूरिज्म इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री या एलाइड इंडस्ट्री से अटैच।

0: कहीं ना कहीं संबंध
1: कहीं ना
0: जरूर
1: कहीं
0: रखता
1: संबंध
0: है।
1: रखता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड लेवल पे 8th पर्सन टूरिज्म होटल इंडस्ट्री से अब तक संबंध रखे हुए रोजगार जनित। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज आईटी सेक्टर में बच्चे जा रहे हैं, वो ओवरनाइट में भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर लगे हुए हैं, दे कांट एंजॉय, वो बेसिकली एक मशीन बन गए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो पर्यटक घूमने के लिए आता है, आनंद
0: वो
1: लेने के लिए
0: अपने
1: आता
0: आप
1: है,
0: को एक आनंद की अनुभूति करता
1: हाँ,
0: है।
1: तो जो एम्प्लॉय है वो भी उसके साथ में एक आनंद की अनुभूति कर रहा है। यानी आप
0: बिल्कुल।
1: कमा भी रहे हैं और आप साथ साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम।
0: बिल्कुल।
1: तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, जो वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है, दैट इज ए फिल्म इंडस्ट्री। अगर फिल्म इंडस्ट्री के बाद आप किसी भी उद्योग की बात करेंगे या किसी भी प्रकार के रोजगार की बात करेंगे, तो वो केवल टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री ही है जो सेकंड ग्लैमरस इंडस्ट्री है, जहां पर की रोजगार में ग्लैमर भी है, चार्म भी है और साथ साथ में पैसा भी है। तो हमारा

0: उद्योग की बात करेंगे या किसी भी प्रकार के रोजगार की बात करेंगे तो वो केवल टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री ही है जो सेकंड ग्लैमरस इंडस्ट्री है, जहाँ पर कि रोजगार में ग्लैमर भी है, चार्म भी है और साथ साथ में पैसा भी है। तो हमारा जो मेन मकसद था उस समय में जब हम लोगों ने इस कोर्स को शुरू किया, तब तो ये सच है कि आगरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और इवन भारतवर्ष में ताजमहल एक अग्रणी स्थान पर था टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन आज आपको जानकर कि यह हर्ष होगा कि हिंदुस्तान तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही ताजमहल से अधिक इकोनॉमिक जनरेट करने वाले अयोध्या हैं, काशी हैं, मथुरा वृंदावन है और भी कई स्थान हैं।
1: बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि आगरा विश्व मानचित्र पर अगर देखें तो एक बहुत विशिष्ट पहचान बनी हुई है
0: जी
1: ताजमहल के चलते।
0: जी
1: लेकिन आगरा की अपनी पर बड़ी पर्यटन विशेषताएं और भी बहुत सारी हैं, तो ताजमहल से आगे जाके इस शहर के किन आकर्षणों को अधिक प्रभावी ढंग से लाए जाने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं?
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, टूरिज्म के विभिन्न आयाम हैं। अगर हम देखें इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, जो ताजमहल की बात करते हैं तो इसको हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल टूरिज्म में रखते हैं, एडवेंचर टूरिज्म, बीच टूरिज्म, कोस्टल टूरिज्म, विभिन्न प्रकार के टूरिज्म के आयाम हैं। और ये भी एक बहुत हर्ष की बात है, विश्व का ऐसा कोई शायद ही कंट्री होगा जिसमें सभी प्रकार के टूरिज्म की जो ना आपको आयाम
1: आपको
0: देखने को
1: उपलब्धता
0: मिलते हो।
1: मिले। हाँ
0: ये केवल ऐसा एक हिंदुस्तान है जिसके अंदर आप डेजर्ट टूरिज्म देखेंगे तो आपको डेजर्ट दो प्रकार का मिल जाता है। एक तो आइसी कोल्ड डेजर्ट है जो लेह
1: ले
0: लद्दाख है,
1: लद्दाख का
0: तो एक तरफ आपको जो है रेगिस्तान भी मिल जाता है जो राजस्थान
1: सैंड
0: का है,
1: राजस्थान।
0: राजस्थान का है। आप अगर बीचेज की बात करें तो वो यहाँ है, कोस्टल की बात करें यहाँ है, आइलैंड टूरिज्म की बात करें इधर है, हिल टूरिज्म है। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में भी हमारा कंट्री बहुत रिच है। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अनपर्पज से बात करते हैं तब भी हम रिच हैं। और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 562 जो स्टेट्स थी हिंदुस्तान की स्वतंत्रता से पहले, उन 562 रियासतों का किले, उनकी हवेलियाँ या उनके जो ना कह रखे महल, उन सभी से हमारा ऐतिहासिक पर्यटन भी बहुत ही रिच है। कल्चरल की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर 2000 से अधिक डायलेक्ट बोली जाया करती थी, आज भी अगर हम देखेंगे तो करीब 700-800 प्रकार की लिपियाँ बोली हैं। तो देश के विभिन्न कोनों में विभिन्न प्रकार की कल्चर हमको मिलती है। कहते भी हैं कि कोस कोस पर पानी
1: पानी
0: बदले
1: बदले
0: चार
1: चार
0: कोस पर
1: कोस पर
0: वाणी,
1: पानी।
0: ये
1: तो
0: हिंदुस्तान की विविधता है।
1: ये जो विविधता है, और ऐसे में आजकल तो जो देख रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन भी बहुत फल फूल रहा है, और एक और जो आयाम है पाक पर्यटन फूड टूरिज्म, वो उसकी भी बड़ी संभावना है क्योंकि हमारे देश में बहुत ही क्या कहें विविध
0: वैरायटी जो फूड का,
1: वैरायटी है। साउथ में अलग, आप जाएं पंजाब, नॉर्थ में जाएं तो क्या
0: बिल्कुल
1: रिच खाना है
0: बिल्कुल
1: हैं? आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे अलग कल्चर है, बंगाल में जाएंगे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इतनी जो विविधता है, आजकल तो एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म और कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये जो ये आयाम है, ये इनको आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं कि सिर्फ ताजमहल पे स्टकअप ना हो के किस तरह से इनको एक्सप्लोर किया जाए?
0: बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि टूरिज्म में जितने आयामों को आप जोड़ते चले जाएंगे किसी भी पॉइंट, उतना ही हम बेसिकली चार चांद लगा रहे हैं। जैसे ताजमहल बहुत सुंदर हमारे पास स्मारक है, लेकिन अगर हम इसके साथ में कुछ जीन्स एंड क्राफ्ट की बात करते हैं जिसको देख करके यहाँ पे सिल्ग्राम फेस्टिवल लगता है, हर साल आगरा में लगाया जाता है, तो जो वेराइटी जो कुजीन्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनको भी अगर हम विभिन्न प्रकार के यहाँ रेस्टोरेंट खोलते हैं, होटल्स में वो सब चीज़ें सर्व करते हैं, रादर देन हम केवल जो हम देखते हैं यूरोपियन या अमेरिकन कॉन्टिनेंटल होटल्स पे, जो फूड पे जो होटल्स केंद्रित होते जा रहे हैं, ये हिंदुस्तानी डिश को ही उठा ली जाए तो
1: अपनी
0: ये
1: मौलिक जो पाक विद्या है उस विधा को ही हम अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो हमारे लिए बहुत ऑप्शंस हो
0: बहुत
1: सकते
0: ऑप्शन है,
1: हैं।
0: बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और मैं समझता हूँ आज अच्छा खासा न केवल इंटरनेशनल टूरिस्ट बल्कि डोमेस्टिक टूरिस्ट भी इस पर बहुत अच्छा खासा खर्च करता है और इसमें रोजगार के बहुत अधिक अवसर हैं।
1: ठीक बात। तो जो आपका पर्यटन प्रबंधन संस्थान है,
0: जी
1: तो वो वर्तमान में ऐसे कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, इनकी अवधि, इनकी पात्रता, इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें।
0: जी बिल्कुल अवश्य देंगे। पहले तो एक हम छोटा सा संशोधन करना चाहेंगे, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन संस्थान वर्तमान में खंडारी कैंपस में न चल करके
1: जी
0: ये बाग फरजाना में संस्कृत भवन में आ गया है,
1: अच्छा, शिफ्ट हो गया है वो,
0: शिफ्ट हो गया है।
1: ठीक
0: संस्कृत
1: है।
0: भवन एक नई बिल्डिंग हम लोगों की बनी है और उसमें पर्यटन एवं होटल प्रबंधन संस्थान है जो कि हरिपर्वत से बिल्कुल पास में है, बाग
1: जी जी
0: फरजाना वहाँ पर संचालित हो रहा है। और जहाँ तक पाठ्यक्रमों का प्रश्न है, हमारे पास ग्रेजुएशन से लेकर के

0: पीएचडी तक के विभिन्न पाठ्यक्रम हैं। जैसे हम अगर उसको इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट करते हैं कि जो बच्चा इंटरमीडिएट करके आया है वो हमारे क्या क्या पाठ्यक्रम कर सकता है। तो अभी आपने जैसे कुजींस की बात की थी, तो इस प्रकार से हम डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन केवल कुजींस के पर्पज से इन फूड को प्रोड्यूस करने के लिए 1.5 साल का डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं। इसमें 1 साल तो बच्चे को हम अपने यहाँ पर स्टडी कराते हैं और 6 मंथ के लिए वो विभिन्न प्रकार के होटलों में जो 5-स्टार होटल्स हैं शहर के या शहर से बाहर, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करता है, वहाँ पाठ्यक्रम को सीखता है। ये जो ना 1.5 ईयर्स का पाठ्यक्रम है, बड़ा ही सस्ता पाठ्यक्रम है, 27,500 के आसपास इसकी फीस स्ट्रक्चर है लवशम में। दूसरा पाठ्यक्रम है बीए वोकेशनल इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ये पाठ्यक्रम हमारे यहाँ जो अन्य जो बीए पाठ्यक्रम चलते हैं उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट और ऐड हुआ है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अगर बच्चा ऐसे इसको पाठ्यक्रम को लेकर के सपोज करो कि वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहे वो भी कर सकता है, और उसके अतिरिक्त अगर वो टूरिज्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, होटल इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो उससे संबंधित भी
1: करियर ऑप्शंस दोनों तरफ खुले,
0: दोनों तरफ करियर ऑप्शंस खुला है। उसके संबंधित सारे पेपर्स उसको ट्रैवल टूरिज्म के भी पढ़ाए जाते हैं, अदर देन वो पेपर्स जो कि नॉर्मल बीए में चलते हैं। और ये एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित अभी हमने इस वर्ष से इसको रन करने जा रहे हैं, और इसमें हमने एआई टेक्निक को भी यूज किया है विभिन्न पाठ्यक्रमों में, ताकि ट्रैवल टूरिज्म में जो विभिन्न कोर्सेज आ रहे हैं, वर्चुअल टूरिज्म वगैरह विभिन्न विधाएं हैं, उनको भी हम कवर करते हैं। तीसरा पाठ्यक्रम है बीएचएमसीटी बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये एआईसीटीई अप्रूव्ड पाठ्यक्रम है, 4 ईयर्स पाठ्यक्रम है, और इसमें बच्चा जो 12th पास है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। इसका थोड़ा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ये लगभग 42,000 रुपये पर एनम फीस है और 4 साल का पाठ्यक्रम है। लेकिन यहाँ हम श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत ये पाठ्यक्रम चलता है, अतः स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं वो विद्यार्थियों को मिलती हैं, जैसे कि फीस रिटर्न से संबंधित सुविधा है वो भी अपना फॉर्म भर सकता है और उसको फीस रिटर्न मिल सकती है, बशर्ते उसकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, या स्कॉलरशिप है वो भी उसको बच्चे को मिलती है। तो ये सारी सुविधाएं भी बच्चे के लिए उपलब्ध हैं। ये हमारा 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है जो कि होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के सभी डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हाउसकीपिंग हो, चाहे
1: जितने
0: वो
1: भी उससे जुड़े एलाइड ये हैं,
0: सभी को कवर करता है। ये बेस्ट कोर्स है हमारा इसमें, इसके बाद उसको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं रहती है, ये तो होटल मैनेजमेंट किसी भी लेवल पर पहुंचना चाहता है।
1: ठीक।
0: चौथा पाठ्यक्रम हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। ये ग्रेजुएशन के बाद है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो ये ग्रेजुएशन के बाद बच्चा कर सकता है, और ये 1 ईयर कोर्स है इसका, 2 सेमेस्टर का, मतलब लगभग 17,000 रुपये इसकी फीस स्ट्रक्चर है। इसमें होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म मैनेजमेंट दोनों को ही कवर किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पाठ्यक्रम है एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट।
1: अच्छा।
0: ये 2 साल का पाठ्यक्रम है, यानी 4 सेमेस्टर पाठ्यक्रम है, आफ्टर ग्रेजुएशन इसमें बच्चा एडमिशन ले सकता है। ये ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए बेस्ट हम इसको पाठ्यक्रम को कह सकते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री ही केवल नहीं है, एक तो हमने एनईपी पर आधारित अभी जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी चल रही हैं उनको भी इसमें हमने ऐड किया है, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी इसमें मैंने बात की है, वर्चुअल टूरिज्म की बात की है, या साइबर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया है। तो ये एक बहुत लेटेस्ट इसको अभी डेवलप किया गया है। हिंदुस्तान के कई इंस्टीट्यूट में पाठ्यक्रम चलता है, लेकिन एनईपी पर आधारित न्यू तो उस पर ये अभी
1: आपके
0: कुछ, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें से हमारी यूनिवर्सिटी भी अग्रणी यूनिवर्सिटी में से एक है। और लास्ट हमारा है वो पीएचडी इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, जो कि केवल वही विद्यार्थी कर सकता है जो जिसने मास्टर डिग्री इस कंसर्निंग फील्ड में किया हो। ये वो एमबीए एचआर वाला भी कर सकता है, मार्केटिंग वाला भी कर सकता है, लेकिन उसके अलावा ट्रैवल टूरिज्म या होटल मैनेजमेंट जिसने एमबीए किया है वो इस पाठ्यक्रम को कर सकता है।
1: तो जैसे आपने कहा कि ये इतने सारे कोर्सेज हैं, इनको करने के बाद विद्यार्थी रोजगार भी पा सकता है इन क्षेत्रों में जो भी एलाइड एरियाज हैं उनमें भी, और चाहे तो अपना भी खुद का एक रोजगार शुरू कर सकता है। आपने कहा कि इतने सारे कोर्सेज पे आपने शुरू किए हैं, तो क्या आपके जो संस्थान में विद्यार्थियों को इन सब की एक सैद्धांतिक शिक्षा ही दी जाती है, या इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, फील्ड विजिट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, या और जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे जुड़ने के कुछ मौके भी उपलब्ध कराए जाते हैं?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहले तो हम बताना चाहेंगे विद्यार्थियों को कि इन पाठ्यक्रमों को करने के साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट में न केवल थ्योरेटिकल क्लास चलती है बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है। हमारे पास में उसकी लैब भी है जिसमें बच्चा जो ना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस सीखता है। जहाँ तक इंटर्नशिप की बात है, या हम जिसको हम कहें ट्रेनिंग की बात है,

0: वो हमारे हर पाठ्यक्रम में है। जैसे कि अगर हम BHM चिट्ठी की बात करें तो इसमें बच्चा 4 सेमेस्टर में कंप्लीट 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग करने जाता है, 5 स्टार या 5 स्टार डिलक्स होटल्स में जाता है। MBA ट्रेवल टूरिज्म की बात करें, इसमें भी बच्चा 2nd सेमेस्टर के बाद में ट्रेवल टूरिज्म इंडस्ट्री में या होटल इंडस्ट्री में, एयरलाइंस इंडस्ट्री में, इन जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए जाता है। हर एक पाठ्यक्रम के बाद ट्रेनिंग आवश्यक है। डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसमें 6 मंथ कंप्लीट वो ट्रेनिंग करने के लिए जाता है विभिन्न होटलों में। तो हम इसको इंटर्नशिप भी कराते हैं, थर्टिकल क्लासेस भी लेते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं।
1: ठीक
0: अब एक प्रश्न और उठता है, अभी आपने कहा था कि विभिन्न कोर्स जो उसको जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है,
1: जी
0: सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अभी तक लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि टूरिज्म या होटल इंडस्ट्री का पाठ्यक्रम करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मैं बिल्कुल कहता हूँ प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे हम बात करें कोई भी को पाठ्यक्रम करने के बाद यहाँ से बच्चा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इंडिया टूरिज्म में या डिफरेंट स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स में या हम स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस में या इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस में, अदरवाइज ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, देन एयरलाइंस में, और इसके अलावा इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, पासपोर्ट वीज़ा ऑफिस में, इन सभी जगह वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के लिए गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में भी अवेलेबल है, अदर देन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में तो बृहद रूप है
1: मेनली
0: सब
1: जो
0: मतलब।
1: हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो एरियाज हैं उन
0: जी
1: सब जगह अपॉर्चुनिटीज मौजूद
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: ठीक बात। पर्यटन उद्योग में सफल होने के लिए क्या वो स्किल्स हैं? क्या केवल जैसे कि आपने कहा कि कोर्सेज कराए, डिग्री ही पर्याप्त होती है, या आपका भाषा ज्ञान है, व्यक्तित्व आपका खुद का, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या आपकी व्यवहार कुशलता है, ये सब ट्रेट्स भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या इन पर भी काम किया जाता है?
0: बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने बेसिकली श्रोताओं की प्रॉब्लम्स को स्वतः बखान करके
1: क्योंकि
0: रखा है।
1: ये जो चीज़ें
0: हाँ
1: हैं, ये ही जो हैं वो मायने रखती हैं।
0: देखिए, हमारे सभी पाठ्यक्रमों में कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित पेपर्स हैं, इवन हर सेमेस्टर में है जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल बच्चे को सिखाते हैं। पर्सनलिटी डेवलपमेंट का पेपर्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल या पर्सनलिटी डेवलपमेंट का पेपर्स हम रखते हैं, जिससे कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल अपग्रेड हो। क्योंकि नो डाउट अदर देन नॉलेज, इस इंडस्ट्री में बच्चे का पर्सनलिटी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन बच्चे किसी बच्चे को ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि वो हिंदी मीडियम में या गांव से आ रहा है तो वो कैसे इस इंडस्ट्री में सफल हो सकता है, क्योंकि वो काम हमारा है, उसको रिफाइंड करना मेरा काम है। वो चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, उसको सभी को हमारे यहाँ क्लासेज में बाकायदा कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनलिटी
1: आपकी
0: डेवलपमेंट,
1: अपनी जो
0: इस
1: मौलिकता है, आपकी जो
0: सभी
1: अपनी
0: सिखाते हैं।
1: स्पेशलिटी है, उसको किस तरह से प्रस्तुतिकरण आपको करना है
0: जी
1: वो ज़्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप
0: बिल्कुल
1: गांव से हैं या किसी कस्बे से हैं या किसी शहर से हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जो अभिव्यक्ति प्रस्तुत
1: ज़्यादा
0: करना है
1: महत्वपूर्ण है।
0: उसको भी हम सिखाते हैं। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश के अलावा हमारे यहाँ एक फॉरेन लैंग्वेज भी जुड़ी हुई है, फ्रेंच ज्यादातर पाठ्यक्रमों में है, BHMCT में भी है, MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में भी है, जिसको हम इसमें MBA में तो 6 मंथ के लिए, BHMCT में हम 1 साल के लिए उसे भी सिखाते हैं।
1: जी
0: क्योंकि जिससे बाहर का पर्यटक जो आता है, ज्यादातर इंग्लिश के बाद जो सेकेंड लैंग्वेज है वो फ्रेंच ही है जो बोली जाती है अधिकतर कंट्रीज में, तो बच्चा उसको आराम से एस्कॉर्टिंग का काम है, कुछ अनवर्क है या होटल इंडस्ट्री में भी है तो उसको
1: तो
0: अच्छे से
1: वहाँ
0: डील
1: उसको
0: कर
1: परेशानी
0: सकेंगे।
1: बिल्कुल ना हो।
0: जी
1: आजकल का जो दौर है, डिजिटल तकनीक का दौर है, और डिजिटल तकनीक ने पर्यटन उद्योग के स्वरूप को भी बहुत हद तक प्रभावित क्या किया है, बदल के रख दिया है मैं तो कहूँगा।
0: बिल्कुल
1: ऑनलाइन बुकिंग्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, वर्चुअल टूर आपने जैसे कि कहा था, या AI है, और सोशल मीडिया, इनके लिए भी क्या विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है?
0: मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, आज से 4-5 वर्ष पहले जो भी पाठ्यक्रम चल रहे थे उस समय इतना डिमांड नहीं था। तो हमने अभी रिसेंटली नए अपने जो NEP पर आधारित, जब हमने इसको MBA ट्रेवल एंड टूरिज्म को किया, BA वोकेशनल एंड ट्रेवल टूरिज्म को इसको बनाया सिलेबस को, तो इसका विशेष ध्यान रखा है। और जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित जो भी जानकारी है उसके संबंध में हमने दो दो तीन तीन पेपर्स हर पाठ्यक्रम में डाले हुए हैं, और जिससे न केवल बच्चा वर्चुअल टूरिज्म के लिए बल्कि स्वयं की भी वो अपनी रील बना करके डेवलप करके उसमें अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार से भी डाले। और इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग फिल्म फेस्टिवल को आयोजित करते हैं हर साल,
1: जी
0: करीब 7 साल से लगातार हम लोग कर रहे हैं ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

0: करके, और उस फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट मूवीज को बनाने के लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, प्लेटफॉर्म भी देते हैं, और जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं ग्लैमर लाइफ फिल्म्स के, मिस्टर सुरेश तिवारी जी, वो हमारे बच्चों को असिस्ट करते हैं मूवीज बनाने के लिए, और विगत वर्षों में हमारे बच्चों ने मूवी बना करके प्रस्तुत भी की है। तो बच्चे को न केवल हम थ्योरेटिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ही ले जा रहे हैं, बल्कि हम उसको कहीं ना कहीं वर्चुअल टूरिज्म या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो रील्स बनाना है, जिनमें रोजगार सृजित करना है, इसको भी जोड़ रहे हैं।
1: ठीक बात। अब हम अगर आगरा के पर्यटन को ही देखें, उसको और अधिक समृद्ध अगर करना है हमें, तो क्या वो एरियाज हैं जहां आपको लगता है कि कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आगरा, नो डाउट हम लोग उसको मुगल नगरी के नाम से ज़्यादातर लोग पर्यटक जानते हैं, हम लोग भी इसी को इसी रूप में लेते हैं, लेकिन आगरा वास्तव में अगर देखा जाए बहुत पुराना शहर है। महाभारत टाइम पीरियड का ये शहर है। परशुराम की माँ रेणुका का जो धाम है वो आगरा में रेणुकता के पास में मिलता है आप। इसके अलावा जो चार शिव के मंदिर हैं कॉर्नर्स पे, चारों
1: जी,
0: कॉर्नर पे बसे
1: इनकी अपनी
0: हैं,
1: ऐतिहासिक
0: उनका
1: एक
0: अपनी
1: महत्व है।
0: ऐतिहासिक महत्ता है, बहुत पुराने मंदिर हैं। उसके अलावा शहर के अंदर 3 मंदिर, ऐसे 7 शिव जी के मंदिरों की नगरी बोली जाती है, और यानी इसका वजह रिलीजियस टूरिज्म में भी अपॉर्चुनिटी है।
1: जी
0: आगरा के पास में ही रुनकता है, जो कि अगर हम कहें तो सूरदास की न केवल जन्मस्थली है महाकवि सूरदास की, बल्कि वो एक इकोलॉजिकल टूरिज्म एंड एनवायरमेंट टूरिज्म का भी
1: एक
0: एक बहुत
1: केंद्र,
0: अच्छा
1: बिल्कुल
0: केंद्र है।
1: ठीक बात।
0: आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, कई देश बहुत छोटे छोटे कवि स्थलीय कवियों की स्थली से ही अपना टूरिज्म को अर्न कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा महाभारत है। यदि सूरदास के सभी पदों को जोड़ लिया जाता, जिसमें से केवल 10 या 11% मिले हैं, अगर सभी पदों को जोड़ लिया जाता तो वो महाभारत से भी 3 या 4 गुना बड़ा होता। यानी महाकवि सूरदास इतने बड़े कवि हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम समझते हैं उस जन्मस्थली को भी प्रोत्साहित और प्रमोट करने की टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी आवश्यकता है, और एक बहुत अच्छा टूरिज्म हम उससे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो शेक्सपियर या कालिदास के ही लेवल के नहीं, बल्कि आज के देश में ब्रजभाषा के क्षेत्र में सबसे अग्रिम पंक्तियों के कवियों में से एक हैं, और उनको एक प्रमोट करने की बहुत निहायत आवश्यकता है। तो इकोलॉजिकल टूरिज्म की, जैसे हमने बताया सूर सरोवर कीटम लेक है, इसके आगे एक हमारा जो एलिफेंट्स का जो कंजर्वेशन सेंटर है, हाथी
1: जी जी
0: संरक्षण
1: जी
0: केंद्र है, उसको भी हम ले सकते हैं। बियर रेस्क्यू सेंटर है सूर
1: जी
0: सरोवर में, उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं, राजस्थान के बहुत करीब आगरा है। आज के 150 वर्ष पूर्व अगर आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो आगरा में आपको वो सब कल्चर मिल जाती है जो राजस्थान में मिला करती थी, चाहे चोली और घाघर पहनती हुई महिलाएं हैं, ऊंट की सवारी है, जो अब बहुत कम लिमिटेड क्षेत्रों में रह गई है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसको हमें ज्यादा न सही तो चौकी धानी जैसे जयपुर में क्रिएट किया गया है, इस प्रकार से हम एक कल्चरल विलेज डेवलप करके इसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर सकते हैं, और टूरिज्म टूरिस्ट का एक स्टे तो बढ़ा ही सकते हैं शहर के अंदर।
1: हमारी जो विरासत रही है उसको हमें कहीं ना कहीं समझने, निखारने, संवारने की ज़रूरत है, और उनसे हमें क्यूज़ लेने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपने आप को इन क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: पर्यटन के साथ साथ अगर हम देखें तो स्वच्छता है, पर्यावरण संरक्षण है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, जैसे हमने अभी बात की, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन इस दिशा में जो आज की पीढ़ी है उस तक इसकी पहुंच जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी है। तो इस दिशा में ख़ास तौर पे युवाओं और जो समाज के कुछ लोग जो इसका ध्यान रखते हैं या इस पे थोड़ा सोच रखते हैं अपनी, उनकी जिम्मेदारियों को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे?
0: बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। देखिए जहाँ तक उनकी जिम्मेदारियों का प्रश्न है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम एक प्रश्न और समझते हैं कि उनको हम अपने संस्थान से कैसे जोड़ें। जब तक वो हमारे संस्थान से नहीं जुड़ेंगे तब तक न ही हम बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, और न ही वो इस फील्ड को बहुत अच्छे से समझ पाते। इसके लिए हम लोग हर साल, हमने अभी पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर टूरिज्म मीट करके शुरू किया है।
1: जी
0: टूरिज्म मीट में हम हर साल इन ऐसे आगरा शहर के तमाम व्यवसायियों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, और बाकायदा जिससे कि वो हमारे संस्थान से परिचित हों, हमारे विद्यार्थी उनके होटल इंडस्ट्री की, टूरिज्म इंडस्ट्री या एम्पोरियम्स या अन्य चीज़ों से परिचित हों। इसके साथ साथ हम एलुमनाई मीट, जो हमारे टूरिज्म के विद्यार्थी हैं
1: जी
0: विगत 25-30 वर्षों से जो पढ़ के निकले हुए हैं, जो देश विदेशों में कई जगह पर हैं, इसको भी हमने आयोजित करते हैं। अभी लास्ट ईयर ही हमने 2 अगस्त 2025 में एक बहुत बड़ा एलुमनाई मीट किया था, और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे विद्यार्थी केवल रोजगार

0: नहीं लिए हुए हैं बल्कि रोजगार दे
1: दे
0: रहे
1: रहे
0: हैं।
1: हैं।
0: ज़्यादातर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तमाम ट्रेवल इंडस्ट्रीज के, वो ट्रेवल इंडस्ट्री जिनके टर्नओवर 100 करोड़ रुपए पर एनम से ऊपर है, ऐसी इंडस्ट्रीज के वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं।
1: बहुत खूब।
0: कुछ अपना खुद का होटल चला रहे हैं, स्टार कैटेगरी के होटल्स भी चला रहे हैं, तो कई एक जनरल मैनेजर्स जैसे पदों पर भी आसीन हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं जो कि पासपोर्ट ऑफिस वगैरह में, इनमें भी है। तो इन सभी की हम एलुमनाई मीट भी आयोजित करते हैं, एनुअल हमने इसको टारगेट पर लिया है अब,
1: जिससे आपसी समन्वय जो है और बेहतर तरीके से
0: जिससे
1: संस्था के साथ।
0: समन्वय बेहतर हो और हमारे बच्चों का उनसे लिंक बने, उनका हमारे बच्चों से लिंकअप बने, तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती हैं और उनको भी अपने पुराने संस्थान में, जो कि अब नया बन गया है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उनको भी एक अच्छा फीलिंग होता है और एक अटैचमेंट रहता है।
1: ठीक बात।
0: तो
1: क्या पर्यटन क्षेत्र में भी स्टार्टअप या उद्यमिता की संभावनाएं आप देखते हैं? अगर कोई युवा है, स्वयं का अपना स्टार्टअप या पर्यटन व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो कैसे उनको को किन बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। स्टार्टअप का दौर है और मैं अगर कहूँ, जब लोग स्टार्टअप शब्द नहीं समझते थे तब सारे स्टार्टअप पर्यटन से शुरू हो रहे थे, चाहे वो रेस्टोरेंट का खुलना है, चाहे
1: कोई
0: वो
1: भी
0: किसी
1: नई
0: और
1: चीज़ है,
0: का।
1: वो आपने जैसे बताया था शुरुआत में कि सारी सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में वो
0: जी
1: पर्यटन से जुड़ी हुई हैं।
0: बिल्कुल, आप एक बहुत छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, बिल्कुल सभी के सामने, जो आगरा या आगरा के आसपास के लोग हैं, जयपुर के पास में जो मैंने चौकीधानी की अभी बात की, चौकीधानी का एक आइडिया एक सिंधी फैमिली है जिनके दिमाग में आया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 8 दिन राजस्थान को विजिट करने में दे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि राजस्थान में डिफरेंट प्रकार के फूड्स हैं, कुचीन हैं, राजस्थान में जो वहाँ की वीरता है, शिवैलरी है, वो फेमस है उसके लिए है, तो राजस्थान की विभिन्न प्रकार की कल्चर है, डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक्स है, वो सब है। उसने कहा इन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर हमको लाना है। तो उसने एक सिंपल, आप देखिए चौकीधानी जाकर के देखिए,
1: तो
0: उन्होंने
1: हर कोने की आपको राजस्थान के उसकी एक झलक वहां
0: एक
1: मौजूद
0: झलक
1: है।
0: आपको कहीं ना कहीं वहाँ मिल जाएगी। जो फूड हम लोग 400-500 रुपए में खा सकते हैं, वो फूड हम 1400-1500 रुपए की थाली खाने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए, एक तो उसकी वैरायटी ऑफ फूड्स भी दे रहे हैं, किस तरीके से देना चाहिए, जो राजस्थान की कल्चर उस प्रकार से परोस रहे हैं, और कहाँ परोसने चाहिए, राजस्थान की जो जितने भी युद्ध हुए हैं या और भी जो झलक है, जो कल्चरल है, वो सब उसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टार्टअप है, करोड़ों का स्टार्टअप है आप कह सकते हैं, जो ऐसे तमाम विद्यार्थी हमारे भी कहीं ना कहीं इसको खोल सकते हैं। आज 5-स्टार होटलों में हम देखते हैं कि हम इसको यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री के पैटर्न पर डेवलप कर रहे हैं। वास्तविकता अब टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा रिवर्स जाने की आवश्यकता है। अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करना है तो हमको अपने रूरल टूरिज्म को, जो आज के 200-400 वर्ष पहले था, उसको अगर हम डेवलप करें, एक छोटा सा गाँव टाइप का बना करके, विलेज टाइप का बना करके, हर्ष लेकर के, पुराने बर्तनों में भोजन दे करके, या उसको पुराने सब कल्चर से, तो आज जो पर्यटक जो दिन भर चकाचौंध में शहर की में रहता है, वो ऐसी चीजों को देखना ज्यादा पसंद
1: उसको
0: करता है।
1: नवीनता मिलेगी उसमें,
0: हाँ
1: और कहीं ना कहीं वो जुड़ाव भी महसूस होगा अपनी पुरानी
0: बिल्कुल
1: संस्कृति के साथ, पुरानी विरासत के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आखिर में अब आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई विद्यार्थी है और 12th किया है या उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और वो कंफ्यूज है कि क्या करियर बनाया जाए, तो क्या पर्यटन को एक करियर विकल्प के रूप में वो चुन सकता है, और अगर चुन सकता है तो क्यों?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो हाईली स्किल्ड पीपल्स के लिए हैं, जैसे IITs की अगर हम बात करें, या NITs की बात करें, या हम मेडिकल लाइन्स की बात करें, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो ठीक है मिडिल स्किल लोगों के लिए हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो ITI टाइप के छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो थोड़ा सा कंपेटेबली कम पढ़े लिखे हैं। टूरिज्म भी एकमात्र, टूरिज्म में होटल इंडस्ट्री एकमात्र ऐसा पाठ्यक्रम संचालित करती है जो न केवल हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड के लिए, किसी एक के लिए, बल्कि तीनों के लिए है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में हर प्रकार
1: हर
0: की
1: प्रकार
0: जॉब्स
1: का।
0: अपॉर्चुनिटीज हैं,
1: ठीक बात।
0: और अगर बच्चा रोजगार लेना चाहे रोजगार ले सकता है, रोजगार देना चाहे दे भी सकता है, वो किसी भी प्रकार से अगर आप देखें तो टूरिज्म में कहीं ना कहीं जुड़ सकता है। इवन यदि उसके पास कोई आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फोक सॉन्ग, इस प्रकार की कोई उसके पास में
1: कोई भी
0: टेक्निक
1: स्किल है
0: है,
1: अगर कोई।
0: वो स्किल भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं टूरिज्म से जुड़ करके उसको और अच्छा निखार सकता है और अच्छा उसको अर्निंग का साधन बना सकता है। तो निश्चित रूप से हमारा जो इंस्टीट्यूट है हर प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, और इनको विभिन्न क्षेत्रों में वो जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है उसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज न केवल

0: सकता है, बल्कि हम उसमें मदद भी करते हैं विद्यार्थी।
1: तो डॉक्टर शुक्ला जी, आपने हमारे श्रोताओं को पर्यटन, पर्यटन शिक्षा और युवाओं के करियर से जुड़े जो बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में जो आज उपयोगी जानकारी साझा की है, हमें विश्वास है कि ये बातचीत इन हमारे श्रोताओं को नए अवसरों से परिचित भी कराएगी और आगरा की जो समृद्ध पर्यटन विरासत है उसको समझने के लिए और उसका संरक्षण करने के लिए भी प्रेरित करेगी। आप हमारे साथ, हमारे स्टूडियो आकर हमारे श्रोताओं के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: आज के अतिथि इस कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे टूरिज्म इंडस्ट्रीज पर वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर उमेंद्र नारायण शुक्ला से अनेंद्र सिंह की बातचीत। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा केंद्र के स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन।

आप सुन रहे थे वो दिन याद करो फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और तलत महमूद की। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वो सात दिन, आइए सुनते हैं फिल्म का गीत किशोर कुमार और अनुराधा की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कुमार और अनुराधा की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं यारा दिलदारा फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, संगीत जतिन ललित का।

यादों की कसम फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं दो बदन फिल्म का गीत आशा भोसले के स्वर में। शुक्रिया बदायूनी की गीत रचना को संगीत दिया है रवि ने।

दो बदन फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले के स्वर में। गीतकार थे शकील बदायूनी, संगीत रवि का था। इसके साथ ही लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी संध्याकालीन सभा के साथ

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता, उस समय स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवाहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमलों के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने यमन यात्रा संबंधी 2017 की अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर कुछ शर्तें लगाने के लिए जारी की गई थी। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को यमन की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगर जरूरी हो तो स्थानीय सुरक्षा स्थिति का पूरा आकलन करने के बाद यात्रा करने का परामर्श दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के समाज सुधारकों का महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक

0: का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के द्वारिका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने मन्नम स्मृति मंडपम का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मन्नाथ पद्मनाभन आजीविक सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और समुचित सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा भी लगाया। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन को जन आंदोलन में बदलना है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्य मित्र भार्गव उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला डबल्स और पुरुष सिंगल्स के फाइनल खेले जाएंगे। महिला डबल्स में शाम 5:30 बजे चीन की गुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलिना माल्डोनोविका की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्राबोस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, इसी सभा में अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी 5:30 पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपसे करेंगे चर्चा मृदा संरक्षण और हरित आवरण विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे श्वेता सागर से उनकी वार्ता जिसका विषय होगा आशा से है सृजन संभव। खेल दुनिया में जानेंगे फीफा के सितारों के बारे में और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामलोक 6:00। इसमें चर्चा का विषय रहेगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। वार्ता होगी पशुओं में टीकाकरण कब और कैसे विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर हरिश्चंद्र। इसके अलावा हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत और जानकारी देंगे मंडी भाव की और मौसम की। मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 पर चर्चा का विषय रहेगा श्रमिकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता।

इसके अलावा सुनेगा वार्ता स्वच्छता अभियान में आमजन की भूमिका विषय पर। वार्ताकार होंगे राकेश कुमार मौर्य। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, इसमें आज वार्ता होगी आओ बचाएं कल के लिए जल विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉ आरपी पांडेय। 7:31 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। 8:00 फिल्म संगीत में हम आपको सुनाएंगे गाने नए पुराने। 8:30 पर सुनेगा चित्रपट संगीत। श्रोताओं, रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा रूपकों का अखिल भारतीय और 10:00 आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:05 पर। 6:25 पर चिंतन में आप सुनेंगे सुकरात के विचार। श्री रामचरितमानस का संगीत में प्रसंग सुनिएगा 6:35 पर। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता संतुलित उर्वरक क्यों और कैसे विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉ एस के काकरान। प्रसारण समय रहेगा 6:45 का। 7:10 पर कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य चर्चा। इसमें डॉ एच एल राजपूत जानकारी देंगे बरसात के मौसम में स्वास्थ्य रक्षा विषय पर। 7:31 पर हमारे श्रोता सुनेंगे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या।

0: श्रोताओं, रविशंकर और साथियों की आवाजों में ये था फिल्म आस्था का भजन, जिसे लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था शारंग देव ने। अगला भजन सुनेंगे रविंद्र साठे और साथियों की आवाजों में, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओ, यशवंत फिल्म से ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी रविंद्र साठे और साथियों की, गीत के बोल थे समीर के, संगीत था आनंद मिलन का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म छाया से ये भक्ति गीत। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस भजन को संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने।

श्रोताओ, आरती मुखर्जी के गाए फिल्म गीत गाथा चल से ये भजन अभी आपने सुना। इसी के साथ कार्यक्रम सुर संध्या अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर एक बार समय हो गया है आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का। मैं आपकी आज की होस्ट और दोस्त वाणी बंसल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोज़ की तरह आज भी हम बातें करेंगे कुछ ज़रूरी और इंस्पायरिंग मुद्दों पर, अपने आप को एंटरटेन करेंगे और शेयर करेंगे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। बस आप प्रोग्राम के अंत तक जुड़िए रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, मानसून शुरू हो गया है, अब गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और सुहाने मौसम में ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने को मिलेगा। लेकिन ये हवाएं तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक धीरे धीरे चलती रहें। जब ये विकराल आंधी का रूप ले लेती हैं तो अच्छे अच्छों की सांसें अटक जाती हैं। ये धूल भरी आंधियाँ जान माल को हानि पहुँचाती हैं, कृषि और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी करती हैं और मृदा यानी टॉप सॉइल की परत को उड़ा ले जाती हैं। इससे उस जगह का बंजर जमीन या रेगिस्तान में बदलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि टॉप सॉइल ही वह परत होती है जो सबसे उपजाऊ और पोषक तत्वों से

भरपूर होती है। इन धूल और रेत भरी आंधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 12 जुलाई को रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में बढ़ती पर्यावरणीय और स्वास्थ्य चुनौतियों, विशेष रूप से सांस संबंधी बीमारियों पर प्रकाश डालता है। क्लाइमेट चेंज और लैंड के मिसमैनेजमेंट के कारण ये तूफान दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र इन तूफानों के प्रभाव को कम करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। और दोस्तों, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हो सकता है मृदा यानी टॉप सॉइल का संरक्षण करके और हरित आवरण यानी मिट्टी को एक ग्रीन कवर देकर। मृदा संरक्षण और हरित आवरण पर्यावरण के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो एक दूसरे के पूरक भी हैं। पौधों और पेड़ों का हरित आवरण मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधकर और हवा पानी के वेग को कम करके सॉइल इरोजन को रोकता है। यह ग्रीन कवर मिट्टी को सीधी धूप और हवा से भी बचाता है, जिससे पानी कम एवेपोरेट होता है, मिट्टी में नमी बनी रहती है और मिट्टी का तापमान भी नियंत्रित रहता है, तथा केचुए व अन्य मित्र जीवाणु फलते फूलते हैं और पत्तियां और पौधे सड़कर मिट्टी में प्राकृतिक खाद बन जाते हैं, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। इसके बदले स्वस्थ मिट्टी इन पौधों को पनपने के लिए आवश्यक पोषक तत्व देती है। भारत सरकार ने मृदा संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख योजनाएं और अभियान चलाए हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नगर वन योजना आदि। इनका मुख्य उद्देश्य भूमि की उर्वरता को बचाना, वनों का विस्तार करना और पर्यावरण में सुधार करना है। आज भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महावृक्षारोपण का अभियान चलाया गया, जिसमें अनुमानित 35 करोड़ पौधे लगाए गए। दोस्तों, सरकार तो अपने स्तर पर कार्य कर ही रही है, आप भी निजी स्तर पर मृदा संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं मियावाकी फॉरेस्ट बनाकर। मियावाकी टेक्निक जैपनीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई है। यह वृक्षारोपण की एक ऐसी विधि है जिसमें छोटे से क्षेत्र में स्वदेशी पौधों को बहुत पास पास लगाया जाता है। जगह की कमी के कारण भारत में इसका उपयोग शहरों में तेजी से डेंस और आत्मनिर्भर जंगल उगाने के लिए हो रहा है। इस अर्बन फॉरेस्ट को उगाने के लिए आपको बहुत सारी जगह नहीं चाहिए। आप घर के बैकयार्ड में या पास के किसी खाली प्लॉट में या किसी पार्क में इसे उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए सबसे पहले पेड़ों की लोकल स्पीशीज का चयन करना होता है। ऐसे ही पौधे लगाए जाते हैं जो कि जगह के वातावरण के अनुकूल हों। इसके बाद मिट्टी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए लगभग 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें जैविक खाद और पानी सोखने वाले तत्व मिलाए जाते हैं। फिर पौधों को रैंडम तरीके से पास पास लगाया जाता है, इस तरह कि 1 स्क्वायर मीटर में 3 से 4 पौधे लगे हुए हों। पौधे लगाने का भी एक खास तरीका है। मिट्टी के 1 से 2 फुट ऊंचे टीले बनाकर पौधों को लगाया जाता है। इससे जड़ों को अच्छे से हवा और पानी मिलता रहता है। नमी बनाए रखने के लिए पौधों के चारों ओर पुआल या सूखी पत्तियों की एक परत बिछाई जाती है। पहले 2-3 वर्षों में नियमित पानी देना पड़ता है, उसके बाद यह जंगल आत्मनिर्भर हो जाता है। यह जंगल पारंपरिक विधि से 10 गुना तेजी से बढ़ता है और 30 गुना अधिक घना भी होता है। अभी मानसून शुरू ही हुआ है और यह बिल्कुल आइडियल समय है पौधों को रोपने का। तो जल्दी से आसपास कोई जगह तलाश कीजिए, पौधे चुनिए और अपने दोस्तों या परिजनों के साथ मियावाकी फॉरेस्ट जरूर बनाइए। भारत में कई सारी ऐसी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो साइट का आकलन करने में, स्थानीय प्रजातियों को चुनने में और मियावाकी जंगल बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। और इसी के साथ समय हो गया है आज के सवाल का। तो बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट कहाँ पर है। जब तक आप उत्तर ढूंढ रहे हैं, तब तक सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, तो ढूंढ पाए क्या आप जवाब? यदि नहीं तो मैं बता देती हूँ। उत्तर सुनकर आपको खुशी और गर्व महसूस होगा, क्योंकि यह कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट गुजरात के कच्छ में भुज में स्थित स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल में है। 470 एकड़ में फैले और 5 लाख से ज़्यादा स्थानीय पेड़ों वाले इस हरे भरे इलाके को मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर आर के नायर की देखरेख में डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद अब समय है एक और सवाल का। तो बताइए, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? जवाब है फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसके फैंस की तादाद अरबों में है। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सिंगल स्पोर्टिंग इवेंट है। अभी 2026 में चल रहे वर्ल्ड कप के लिए अनुमान है कि दुनिया भर में 5 से 6 अरब दर्शक इस इवेंट से जुड़ेंगे। दरअसल इसे खेलने के लिए सिर्फ एक फुटबॉल चाहिए और रूल्स भी काफ़ी सिंपल हैं, जिससे लोग इसे काफ़ी आसानी से खेल पाते हैं और अपने आप को

0: इससे जोड़ पाते हैं, इसलिए यह खेल दुनिया भर में इतना पॉपुलर बन गया है। इतना ही नहीं, इस खेल को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने में अनेक महान खिलाड़ियों का योगदान भी रहा है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, समर्पण, खेल भावना और संघर्षों के बावजूद हार ना मानकर करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। फुटबॉल के इतिहास में पेले, डिएगो माराडोना, जिनेदिन जिदान और योहान क्रूज जैसे महान खिलाड़ियों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन पिछले दो दशकों में जिस प्रतिस्पर्धा ने दुनिया भर के फुटबॉल फैंस को सबसे ज्यादा रोमांचित किया है, वह थी लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। लियोनेल मेसी, जिन्हें गोट फुटबॉलर भी माना जाता है, अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। बचपन में मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नामक बीमारी का पता चला, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत धीमा था। मात्र 13 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार से दूर अर्जेंटीना छोड़कर स्पेन चले गए, जहां एफसी बार्सिलोना ने उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया और उनके इलाज का खर्च भी उठाया। इलाज के तौर पर मेसी को हर रात अपने पैरों पर खुद ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते थे, लेकिन इसके बावजूद अपने असीम जुनून, कड़ी मेहनत और शानदार खेल के दम पर उन्होंने युवा टीम से लेकर सीनियर टीम तक अपनी जगह पक्की कर ली और अपनी टीम के लिए कई खिताब भी जीते। उन्होंने 2022 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को ऐतिहासिक जीत दिलाई और अभी इजिप्ट के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में उन्होंने कैसे एक गोल और एक निर्णायक असिस्ट देकर अर्जेंटीना की मैच में रोमांचक वापसी कराई, यह तो आप सबको पता ही होगा। इसके अलावा मेसी 8 बार बैलन डी'ओर का पुरस्कार भी जीत चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संघर्ष भी एक ऐसे गरीब परिवार से शुरू हुआ था, जहां आर्थिक तंगी के कारण उनकी माँ उन्हें जन्म तक नहीं देना चाहती थी। अपने सपनों को सच करने के लिए रोनाल्डो सिर्फ 12 साल की उम्र में अपने घर और परिवार को छोड़कर लिस्बन आ गए। 15 साल की उम्र में उन्हें भी हार्ट रेसिंग या टैकीकार्डिया नामक बीमारी हो गई, जिसमें दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती थी। इस बीमारी से उनका फुटबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म होने का खतरा था, लेकिन एक सफल सर्जरी के बाद वे पूरी तरह से ठीक होकर वापस मैदान पर लौटे। रोनाल्डो ने अपनी लगन से कई रिकॉर्ड तोड़े और 5 बार बैलन डी'ओर पुरस्कार भी जीता। दोस्तों, ये सब हो पाया क्योंकि इन खिलाड़ियों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, हमेशा आशा रखी कि जरूर कुछ अच्छा होगा। और आज 12 जुलाई को हम मना भी रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की वार्ताकार श्वेता सागर को। आशा ही सृजन संभव है पर।
1: जीवन एक सुनहरा उपहार है, एक निरंतर साधना और एक सुखद यात्रा है। वैसे तो हम सभी के जीवन में परमात्मा ने धन्यवाद करने को बहुत कुछ दिया है, जिसे हम अगर कुछ समय हर दिन याद कर लें तो अभाव और दुख कभी हमें व्यथित ना करे। लेकिन फिर भी जीवन में कोई छोटी या बड़ी बात आती है जिससे मन धीरज खोने लगता है, कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिससे निकलने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में व्यक्ति को एक ही शक्ति बाहर निकालती है और वो है आशा और उम्मीद। शक्ति इसलिए कहा क्योंकि ये बढ़ती भी है, कम भी होती है और एकत्रित भी होती है। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आशा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि संपूर्ण जीवन को भाग्य बनाने की जो कलम है उस समय ही प्राप्त होती है। ज्यादातर युवाओं को सुगम परिस्थितियां नहीं प्राप्त होती, जिससे उन्हें विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है उनकी शिक्षा अच्छी ना हुई हो, जन्म के समय शारीरिक और भावनात्मक क्षति हुई हो, वे किसी हिंसा का शिकार हुए हो या फिर बौद्धिक और सामाजिक किसी अड़चन का सामना कर रहे हो। समस्याएं तो अनेक हो सकती हैं और सिर्फ युवा के जीवन में ही क्यों, उम्र के किसी भी पड़ाव पर ये अवरोध आ सकते हैं। लेकिन अगर मन में आशा का दीप जल रहा है और मानसिकता में एक सुगमता है कि ठीक है, ये परिस्थिति है, पार हो जाएगी, एक बार नहीं बार बार कहना स्वयं से कि मैं इसमें विजयी रहूंगा, तो निश्चित ही परिस्थिति बदलती ही है। इसे एक केस स्टडी के द्वारा समझते हैं। ऋषभ पंत

जो कि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, उन्हें साल 2022 में गंभीर परिस्थिति से निकलना पड़ा। वे दुर्घटना का शिकार हुए और कई चोटों को भी सहन करना पड़ा। उन्हें उस समय ये भी निश्चित नहीं था कि वह पुनः मैच खेल भी पाएंगे या नहीं। जरा सोचिए, जीवन में आपको जिससे सर्वाधिक प्रेम हो और वो आपसे छूट जाए तो कैसा लगेगा? फिर यहाँ उन्होंने आशा की शक्ति जागृत की और अपने सपनों को भी फिर से जीने की दृढ़ इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया। वहाँ ध्यान लगाया जहाँ उन्हें सर्वाधिक ध्यान देने की सच में आवश्यकता थी, और वो था स्वयं का पुनर्निर्माण। शारीरिक और मानसिक दोनों ही बातों में एक सुनहरी आशा रखी, और न वे ठीक हुए लेकिन अपने लक्ष्यों को भी एक नई ऊर्जा से परिभाषित भी किया। तो आशा रखना एक अच्छा संस्कार है। हर बात में एक शक्तिशाली और नवीन सृजन करना ही लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं जिससे ये शक्ति हम में निरंतर बनी रहे? सर्वप्रथम हमारी मानसिकता ऐसी हो कि उसमें अधिक अवरोध ना हो। उदाहरण के लिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं उनके साथ नहीं बात कर सकता, मैं ये नहीं खा सकता, आदि आदि। नियम रखना अच्छा है, पर ऐसा उसमें कोई कठोरपन ना हो जिससे कि आपको अंदरूनी ठहराव का अनुभव हो। हर परिस्थिति का विकल्प अवश्य रखें। दूसरा, सदा समझदारी भरे विकल्प चुनें। भले ही तत्काल प्रभाव में आपको वो विकल्प अच्छा ना लगे, लेकिन आगे सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य होंगे। जैसे यदि बीमारी है तो आशापूर्ण रहें और स्वस्थ जीवन शैली, खान पान उसको रखें, तो भले ही उस समय आपका मनपसंद खाना छूटेगा, परंतु शीघ्र ही आपको मनचाहा स्वास्थ्य भी मिलेगा। तीसरा, हमें सदा स्वयं को शिक्षित और नए नए कौशल सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम कुशल होंगे समय आने पर उतना हम उसको सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोग में ला पाएंगे। चौथा, हमें सदा सामाजिक संबंधों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे न केवल हम नए नए अवसरों को जान पाएंगे, लेकिन दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा भी प्राप्त कर पाएंगे। और अंत में सबसे आवश्यक पहलू तो ये है कि हर दिन हमें अपने शारीरिक भोजन की तरह आध्यात्मिक भोजन या कुछ शक्तिशाली विचारों को भी ग्रहण करना चाहिए। हमें खुद की ट्रेनिंग हर दिन करनी होगी जिससे कोई भी बात में हम सदा विजयी रहें। देखिए, सृजन तो प्रकृति का नियम है ही। हर पल कुछ ना कुछ रचा जा रहा है। फूल, पत्तियाँ, पौधे आदि सृजन ही है जो सभी के लिए सुखद है। इसी प्रकार हमारा भी मन यदि जागृत है और शक्तिशाली है तो हमारे भी संकल्प आशापूर्ण होंगे, और इसी शक्ति मात्र से एक सुंदर सृजन मेरे मन के अंदर भी होगा और समाज में भी वो प्रकम्पन प्रवाहित होंगे, जिससे सुंदर समाज का भी सृजन संभव है। आशापूर्ण होने वाले व्यक्तित्व की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। आप इन्हें दूर से ही देखकर पहचान सकते हैं। तो हमें भी उसी कसौटी पर खुद को रखना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि क्या हम सामाजिक योग्यता रखते हैं, क्या किसी के दुख या विषम परिस्थितियों में उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, हमारे साथियों या हमारे आसपास के रिश्तों में हमारे संबंध कैसे हैं। मधुर हैं तो अच्छा है, लेकिन कम से कम नकारात्मक नहीं होने चाहिए। हमें संभाषण की कला आनी चाहिए और एक सहज स्वभाव होने से आशापूर्ण रहने में मदद मिलती है। हर बार आपको सकारात्मक सोचने का भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सकारात्मकता ही हमारे जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। तो सुबह आँख खुलते ही अपने आप को धन्यवाद देना है, प्रकृति को धन्यवाद देना है, समाज को धन्यवाद देना है, अपने सुंदर रिश्तों को और अपने स्वास्थ्य को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना है, और साथ ही साथ स्वयं को ये याद दिलाना है कि मैं एक शुद्ध सात्विक प्रकाश हूँ। तो इसी

0: आशा से ही एक नई चेतना जन्म लेगी, नया संकल्प बनेगा और एक नया सृजन होगा। हम चलेंगे, दौड़ेंगे, गिर भी सकते हैं, लेकिन दोबारा उठकर खड़े होंगे, यही आशा है।
1: दोस्तों, हम सुन रहे थे श्वेता सागर को, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम आशा रखकर बुरे समय से आसानी से बाहर आ सकते हैं और अपने लिए नए रास्ते बना सकते हैं। इसी पॉजिटिविटी के साथ हम अपने लिए एक अलग करियर पाथ भी बना सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कैसे हम सॉइल इरोजन रोकने में योगदान दे सकते हैं, ग्रीन कवर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस क्षेत्र में, जिसे ग्रीन जॉब्स भी बोला जाता है, अपना करियर ही बना लें तो हम पर्यावरण को बचाने का काम और अच्छे से कर पाएंगे। क्लाइमेट चेंज और घटते नेचुरल रिसोर्सेज के चलते पर्यावरण अनुकूल नौकरियों का महत्व पहले से कई अधिक बढ़ गया है। भारत में ग्रीन इकोनॉमी की तेजी से विस्तार के साथ ग्रीन जॉब्स हम युवाओं के लिए रोजगार की एक उभरती हुई फील्ड बनकर सामने आई है। आज हम युवा सोलर और विंड एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार्बन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी तथा क्लाइमेट रिसर्च जैसे कई सारे क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्ट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसा होने के कारण आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और भी तेजी से बढ़ेंगे। ग्रीन जॉब्स में करियर बनाने के लिए आप 12वीं के बाद बीटेक, बीई, बीआर्क, बीएससी, बी प्लान, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री या ज्योग्राफी जैसे विषयों में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी मैनेजमेंट या ग्रीन बिल्डिंग जैसे विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेट कोर्स करके एक्सपर्टीज प्राप्त कर सकते हैं। भारत में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और कई सारे स्टेट और नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो इस क्षेत्र से जुड़े कोर्सेज और ट्रेनिंग देते हैं। पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और फील्ड वर्क में भाग लेने से एक्सपीरियंस मिलता है और इससे रोजगार की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ग्रीन जॉब्स न केवल एक डिफरेंट करियर ऑप्शन प्रदान करती हैं, बल्कि देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भी ले जाती हैं। तो आइए अपने ख्वाबों को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का।

दोस्तों चलते चलते आपके लिए मॉनसून स्पेशल टिप। संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाएं, बाहर के स्ट्रीट फूड से परहेज करें और अपनी डाइट में अदरक, लहसुन, हल्दी और नींबू जैसी चीज़ें शामिल करें जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब समय है आप सबसे विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी शाम ठीक 5:30 बजे। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6 बजे है। अब प्रस्तुत है हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम ग्राम्यलोक।

श्रोताओं, आज के ग्रामीलोक कार्यक्रम में मैं यशपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी राम राम। किसान साथियों, अषाढ़ का महीना चल रहा है और सावन का महीना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अभी 4-5 दिनों से होने वाली बरसात ने मानसून आने का संकेत तो दे ही दिया है, यानी वर्षा ऋतु का आगमन इस मौसम में साल भर के लिए पर्यावरण में ऊर्जा भरने का समय होता है। चारों ओर हरियाली देखने को मिलती है, खेत खलियान और जंगलों में नए अंकुरण का समय है। नदी नहर और पोखर तालाब भर जाते हैं, जिसकी वजह से भूजल स्तर बेहतर हो जाता है, जो पूरे साल भर का काम करता है। श्रोताओं, बरसात का यह मौसम धरती की ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण की प्यास बुझाता है। इस मौसम में ऐसा लगता है जैसे हमारी धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। किसान साथियों, हम किसानों के लिए तो यह मौसम भगवान के आशीर्वाद के समान है, क्योंकि इस मौसम की अच्छी बरसात खेती किसानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वहीं अगर कम बरसात हो या सूखा पड़ जाए तो इसका सीधा प्रभाव हमारी खेती पर पड़ता है। जी हाँ किसान भाइयों, अच्छी बरसात होती है तो साल भर के लिए खेती में पानी की व्यवस्था हो जाती है, जिससे अच्छी फसल पैदा होती है। लेकिन कम बरसात हो, सूखा पड़ जाए या बाढ़ से पूरी खेती बर्बाद हो जाती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए किसान साथियों, कृषि के साथ साथ अपने बच्चों को शिक्षित भी बनाएं, जिससे वो कृषि के अलावा दूसरे रोजगार और अच्छी नौकरी पा सकें। खासकर छोटे सीमांत और गरीब किसानों को अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और हां श्रोताओ, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोरी अब आड़े नहीं आएगी, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। जी हां श्रोताओ, हमारे प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई यह एक बहुत महत्वपूर्ण निःशुल्क कोचिंग योजना है।

0: इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता प्रदान करना है जो अपनी स्थिति के कारण यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, नीट और जेई जैसी प्रतिभागी परीक्षाओं की महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत एसएससी, बैंकिंग और रेलवे जैसी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। श्रोताओं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें आवेदन कैसे करें और इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो यह हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में वह छात्र आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। जो छात्र इस योजना में यूपीएससी, यूपीपीएससी यानी सिविल सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं, वो ग्रेजुएट यानी स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होने चाहिए। जो नीट या जेई यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, वो विज्ञान वर्ग से 11वीं या 12वीं में पढ़ रहे हों या उत्तीर्ण कर चुके हों। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब पात्रता के बाद बात आती है कि भाई आवेदन कैसे करना है। इस योजना से जुड़ने के लिए और निःशुल्क कक्षाओं का लाभ उठाने के लिए छात्रों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यानी abhyudaywi.up.gov.in यानी abhyuday.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। यदि आप इस योजना में ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं तो भाई ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। आप अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय यानी विकास भवन या कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त करके उसे भरकर वहीं जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य या जिला स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उसके बाद मेरिट और काउंसलिंग के आधार पर चयनित छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए आवंटित किया जाता है। इस योजना की कोचिंग में अनुभवी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन किया जाता है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, प्रश्न बैंक और नोट्स बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। श्रोताओं, प्रदेश के सभी मंडलों में एवं जिलों में कक्षाएं संचालित की जाती हैं। इसके अलावा अभ्युदय पोर्टल पर डिजिटल सामग्री, ई बुक्स एवं मॉक टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध होती है। यानी जो छात्र ऑफलाइन कक्षाओं में नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा की भी व्यवस्था है। मेधावी छात्रों को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टैबलेट आदि की भी सुविधा प्रदान की जाती है। यानी हमारे बच्चे या कोई भी छात्र मेधावी है तो उसके लिए सरकार द्वारा अनेकों प्रकार की सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत मिल सकती हैं। सुविधाओं के अभाव में मेधावी छात्र बड़ी या उच्च शिक्षा से वंचित न रहें, इसी को ध्यान में रहते हुए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुरुआत की गई है। श्रोताओं, आज के इस युग में परीक्षा सबके लिए जरूरी भी है और रोजगार या नौकरी के लिए शिक्षा एक साधन भी है। जी हाँ श्रोताओं, किसी भी रोजगार या नौकरी को पाने के लिए शिक्षा सबसे मजबूत साधन है। इसीलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का लाभ लें। योजना के नवीन सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न जिलों में आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 से बढ़ाकर 15 जुलाई 2026 कर दी गई है। तो साथियों, इस योजना में आवेदन करके लाभ लें और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाएं। श्रोताओं, सरकार की किसी भी योजना का अगर लाभ लेना है तो उसके लिए कभी भी बहुत ज्यादा देरी न करें, क्योंकि अंतिम तिथि जैसा हमने बताया कि 15 जुलाई 2026 है। अपने बच्चों को इसमें परीक्षा दिलवाएं और इस मुफ्त योजना का लाभ लें। आपके साथ हम अपने कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक विराम ले लेते हैं और मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, हमारी धरोहरें हमारी सांस्कृतिक पहचान होती हैं। अब देखिए, इस वर्ष सावन का महीना जुलाई के अंतिम गुरुवार से शुरू हो रहा है और भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए यह मास बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर सावन के चारों सोमवारों का समय शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे आगरा में भी सावन के चार सोमवार में प्रमुख चार शिव मंदिरों में पूजा अर्चना का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, सावन के पवित्र महीने में आगरा शहर शिवमय हो जाता है। यहाँ शहर के चारों कोनों पर स्थित चार प्रमुख शिवालयों कैलाश, बल्केश्वर, राजेश्वर और पृथ्वीनाथ मंदिरों की नंगे पैर करीब 40 से 43 किलोमीटर की परिक्रमा करने की करीब 250 साल पुरानी अनूठी परंपरा है। आगरा के सावन में शिव भक्ति का तरीका भी अनोखा है। सावन के दूसरे सोमवार से ठीक पहले वाली रात को यानी रविवार की शाम को परिक्रमा शुरू की जाती है। यह परिक्रमा प्राचीन काल से चल रही है। इतिहासकार मानते हैं कि भाई परिक्रमा प्राचीन काल से ही लगाई जाती है, परंतु औरंगजेब के समय परिक्रमा को बंद करा दिया गया था। वर्ष 1775 में मराठाओं का प्रभुत्व बढ़ने के बाद ध्वस्त कराए गए करीब 14 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया और 1827 के आसपास प्लेग फैला था। तब उस समय भगवान की कृपा पाने हेतु यह पवित्र परिक्रमा पुनः प्रारंभ की गई। श्रोताओं, पूरे रास्ते परिक्रमा मार्ग पर बम बम भोले का उद्घोष करते हुए भक्ति में लीन युवाओं के जत्थे परिक्रमा वाली रात आगरा की सड़कों पर नजर आते हैं। शिव मंदिर की इस तरह की परिक्रमा पूरे भारत वर्ष में किसी अन्य शहर में नहीं लगाई जाती है, इसीलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है और यह हमारी लोक धरोहर का साधन बनती है। श्रोताओं, हमारे आगरा शहर के पूर्व में बल्केश्वर, पश्चिम में पृथ्वीनाथ, उत्तर में कैलाश और दक्षिण में राजेश्वर शिव मंदिर स्थित हैं। यानी हमारे आगरा शहर को चारों कोनों से भगवान शिव ने सुरक्षित बना रखा है और अपने आशीर्वाद को शहर को प्रदान करते रहते हैं। शहर के चारों कोनों पर स्थित इन मंदिरों पर सावन के चारों सोमवार में भव्य शिव मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भोलेनाथ की भक्ति का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। सावन के प्रथम सोमवार को राजेश्वर महादेव मंदिर पर मेला लगता है। यह मंदिर लगभग 900 साल पुराना है। यहाँ लाखों श्रद्धालु शिव पूजा करते हैं, कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। दूसरे सोमवार को यमुना किनारे स्थित बल्केश्वर महादेव मंदिर पर मेला आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि लगभग 700 वर्ष पहले यहाँ बेला के जंगलों में स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए थे। यहाँ दर्शन करने वाले साधक को ऐसा माना जाता है कि महाकाल की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। श्रोताओं, सावन के तीसरे सोमवार को यमुना तट पर स्थित कैलाश मंदिर में बेहद भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने यहां स्वयं कुछ समय के लिए विश्राम किया था। इस दिन दूर दराज से आए भक्त यमुना में डुबकी लगाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को पृथ्वीनाथ मंदिर पर मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले के संपन्न होने के साथ ही आगरा के चारों कोनों के शिवालयों की परिक्रमा पूरी होती है। श्रोताओं, सावन में आगरा के इन चारों शिवालयों पर मेले आयोजन के साथ साथ शिव भक्त जलाभिषेक और शिव की पूजा अर्चना करके अपनी अटूट आस्था का प्रदर्शन करते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि आगरा की सांस्कृतिक एकता और लोक धरोहर का प्रतीक है। आगरा शहर हमारा जितना प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन उसकी लोक धरोहर है।

श्रोताओं, अभी आने वाले सावन के महीने के मेले के आयोजन के महत्व के बारे में तो हमने समझा, लेकिन देख रहे हैं कि भाई सावन से पहले बीच बीच में होने वाली ये रिमझिम बरसात भी हो रही है। आइए होने वाली इस रिमझिम बरसात का आनंद लेते हैं और सुनते हैं यह मधुर लोकगीत।

0: किसान साथियों, अच्छी पैदावार के लिए हम अपनी फसलों का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक वैसे ही अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए हमें अपने पशुओं के स्वास्थ्य और उनके खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और जब बात पशुओं के स्वास्थ्य की होती है तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई पशुओं को रोग लगने ही ना पाए। इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है। जैसे इन दिनों बरसात के मौसम में पशुओं में ऐसी बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं जिन्हें हम टीकाकरण के द्वारा रोक सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, इसीलिए आज हमारी वार्ता में डॉक्टर हरीश चंद्र आपको पशुओं में टीकाकरण कब और कैसे करवाएं इस पर जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं यह वार्ता।
1: प्रिय पशुपालक भाइयों, पशुओं से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए हमें जिन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है उनमें सर्वप्रथम हमें अच्छी

नस्ल के पशुओं का चयन करना चाहिए। इसके बाद उनके लिए अच्छे एवं सुविधाजनक आवास की व्यवस्था, उचित पौष्टिक आहार की खिलाई पिलाई की व्यवस्था करनी है। पशुओं में प्रजनन स्वस्थ एवं बाधा रहित हो सके एवं हमें उत्पादन अधिक मात्रा में मिल सके, इसके लिए प्रजनन संबंधी देखभाल एवं पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण कराना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो अन्य व्यवस्थाएं आप चाहे जितनी अच्छी कर लें, पशुओं से अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते और पशुपालन आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। पशुओं को रोग और बीमारियों से बचाने के लिए पशुओं में होने वाली बीमारियों की जानकारी, उनके बचाव के लिए टीकाकरण कब और कैसे किया जाए इसकी जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर हम पशुपालकों को ऐसी ही जानकारी से अवगत कराएंगे। पशुओं की बीमारी में प्रमुख रूप से खुरपका, मुंहपका, गला घोंटू, लंगड़ी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर, एंटीरोटॉक्सिमिया आदि हैं। इन सभी बीमारियों की कारगर रोकथाम सिर्फ टीकाकरण से ही संभव है। टीकाकरण से बीमारियों की रोकथाम करना इलाज की तुलना में बहुत ही सस्ता पड़ता है तथा कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके होने के बाद कितना भी इलाज किया जाए परंतु वे ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण एक उचित समाधान है। खुरपका, मुंहपका, इसको आम बोलचाल की भाषा में खुसीटा या पका के नाम से भी जाना जाता है। यह विषाणु से होने वाली बीमारी है। बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इस बीमारी में पशु मरता तो नहीं है परंतु किसी काम का नहीं रह जाता है, अर्थात दूध या किसी अन्य कार्य को करने की हालत में नहीं रह जाता है और गर्भपात की संभावना भी बनी रहती है। बीमारी में प्रमुख रूप से मुंह तथा पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कभी कभी पैरों में कीड़े भी पड़ जाते हैं जिससे पशु चलना फिरना बंद कर देता है और खाना पीना छोड़ देता है। पशु बहुत कमजोर हो जाता है और उसका उत्पादन भी बहुत कम हो जाता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। यह टीका वर्ष में 2 बार लगाया जाता है, एक बार मार्च अप्रैल के महीने में तथा दूसरी बार सितंबर अक्टूबर के महीने में। उम्र के अनुसार पहला टीका 4 माह की उम्र के बाद लगाया जाता है, दूसरा टीका जिसे बूस्टर टीका भी कहते हैं 6 माह बाद लगाया जाता है। इसके बाद प्रति 6 माह पर अर्थात साल में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। HS या गला घोंटू, इस बीमारी को बोलचाल की भाषा में घुर्रका भी कहते हैं। यह बहुत ही घातक एवं तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इसकी रोकथाम टीकाकरण से ही संभव है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा पड़ता है और पशु के ठीक होने की कोई गारंटी नहीं रह जाती है। इस बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, मुंह से घर घर की आवाज आना तथा गर्दन के निचले वाले हिस्से में सूजन का आना है। बीमारी का पहली बार टीका 4 माह की उम्र के बाद तथा उसके बाद प्रतिवर्ष वर्षा शुरू होने से पहले जून जुलाई के महीने में लगाया जाना चाहिए। यह टीका भी पशुपालन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निःशुल्क लगाया जाता है। गला घोंटू की बीमारी कभी कभी ठंड के दिनों में भी हो जाती है, इसलिए इस बीमारी का टीका नम इलाकों में दोबारा 6 महीने बाद भी लगाया जा सकता है। BQ, इस बीमारी को लंगड़ी या एक टंगा या चौरंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी अधिकतर जवान पशुओं में जिनकी उम्र 3 से 4 साल होती है ज्यादा प्रभाव दिखाती है। यह बीमारी भी एक घातक रोग है। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार होता है, एक पैर से लंगड़ाता है, कभी कभी पशु चारों पैरों से भी लंगड़ाता है, पशु के पुट्ठों पर सूजन आ जाती है जिसे दबाने पर चर चर की आवाज आती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कि सूजन में हवा या गैस भरी हो। इस बीमारी का कारगर इलाज काफी मुश्किल होता है। इसका टीकाकरण भी 4 माह की उम्र के बाद अवश्य करा लेना चाहिए। बूस्टर टीका पहले टीके के 6 माह बाद किया जाता है, उसके बाद प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त में टीकाकरण करा सकते हैं। इस बीमारी का टीका गला घोंटू के टीके के साथ मिला हुआ भी मिलता है, हालांकि यह बीमारी इस क्षेत्र में बहुत कम मिलती है। ब्रुसेलोसिस, यह एक संक्रामक गर्भपात की बीमारी है। इसमें पशु बच्चा फेंक देता है, अधिकांशतः पशु 6 महीने के बाद ही बच्चा फेंकता है। इस बीमारी से पशु स्थायी रूप से बांझ भी हो जाता है। बीमारी का टीकाकरण 4 माह से 8 माह की उम्र के बीच लगाया जाना अच्छे परिणाम देता है तथा एक बार टीकाकरण पशु को जीवन भर इस बीमारी से सुरक्षित रखता है। PPR, इस बीमारी

0: को पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी प्रमुख रूप से भेड़ व बकरियों की बीमारी है। यह बहुत ही घातक एवं संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से पशु में तेज बुखार, मुंह में छाले, नाक का बहना, दस्त लगना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा बाद में निमोनिया भी हो जाता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है। इस बीमारी में मृत्यु दर काफी अधिक होती है। बीमार पशुओं में से इलाज के बावजूद भी लगभग 85% तक पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसका टीकाकरण भी 4 माह की उम्र के बाद किया जाता है। एक बार टीका लगाने के बाद पशु 3 वर्ष तक इस बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। यह टीका भी पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है। एंटीरोटॉक्सीमिया, यह भेड़ बकरियों की आमाशय एवं आंत संबंधी बहुत ही घातक बीमारी है। इस बीमारी में पशु को खूनी दस्त, तेज बुखार तथा पेट दर्द होता है। इस बीमारी का टीका भी 4 माह की उम्र के बाद लगाया जाता है। और अंत में टीकाकरण संबंधी कुछ आवश्यक बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। किसी भी बीमारी का टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में ही किया जाता है। गर्भावस्था के आखिरी दिनों अर्थात 8 महीने से अधिक गर्भित पशु को टीका नहीं लगाया जाना है। 4 माह से छोटे बच्चों को भी टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। टीकाकरण संबंधी पशुपालकों में कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि टीके से दूध कम हो जाता है या बच्चा गिर जाता है, जो कि बिल्कुल गलत।
1: श्रोताओं, अभी आपने हमारी वार्ता में डॉक्टर हरिश्चंद्र से पशुओं में टीकाकरण कब और कैसे करवाएं इस पर जानकारी ली। और आइए अब हम आपको बताते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए आपका संगीतमय मनोरंजन करवाते हैं और आनंद लेते हैं इस मधुर लोकगीत का।

ये था ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम ग्राम्यालोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल अपनी रेडियो साथी शालिनी भदौरिया के साथ। तो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। साथियों, जब हम अपने अपने कामों से लौटकर घर आते हैं और जब अपने परिवार से मिलते हैं और उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे देखते हैं तो हमारी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। आखिरकार हम इतनी मेहनत मजदूरी करते ही अपने परिवार वालों के लिए है ना, ताकि हम अपने परिवार का आज और कल संवार सकें। साथियों, हर इंसान का, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ये सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, ताकि जो परेशानी जो तकलीफ आज हम झेल रहे हैं हमारे बच्चे उन परेशानियों को ना झेलें। और साथियों, गरीबी से निकलने का सबसे बड़ा रास्ता तो शिक्षा ही है ना, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ना खुद को बल्कि परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को भी गरीबी के जंजाल से निकाल सकता है। शिक्षा रोजगार के दरवाजे खोलती है। पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ मजदूरी पे निर्भर नहीं रहता, वो सरकारी नौकरी, बैंक, कंप्यूटर, दुकान, कहीं भी काम कर सकता है। शिक्षा आत्मविश्वास बढ़ाती है। पढ़ा लिखा इंसान अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, उसे किसी के सामने

फसाद फैलाने की जरूरत नहीं होती। शिक्षा सेहत और समझ देती है। पढ़ा लिखा इंसान अपने बच्चों की साफ सफाई, उनका अच्छा खाना, जरूरत पड़ने पर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, इन सब बातों को जानता है। शिक्षा पूरी नस्ल बदल देती है। आज आप ईंट उठा रहे हैं, कल आपका बेटा इंजीनियर बनकर बिल्डिंग बनाएगा। आज आप सिलाई कर रही हैं और कल आपकी बेटी टीचर बनकर कई बच्चों को पढ़ाएगी। साथियों, फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, देखिए खर्चे तो हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक बात याद रखिए साथियों, अगर आज आप घंटों मेहनत कर चंद रुपए कमाते हैं, लेकिन आप अगर अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें तो कल वो बच्चे कुछ मेहनत से हमसे कई गुना अधिक धन कमा सकते हैं। साथियों, ईंट, गारा, कपड़ा, खेत, ये सब कुछ बनता और बिगड़ता है, लेकिन शिक्षा वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती, जो चोरी नहीं होती, जो साथ लेकर जाई जा सकती है, क्योंकि आपकी घंटों की मेहनत, आपके बच्चों की शिक्षा पूरे परिवार का उज्जवल भविष्य बनाएगी। और साथियों, अब के समय में तो जितने भी लोग हैं वो सब शिक्षा के प्रति जागरूक हो चुके हैं, और खुशी की बात यह है कि हर व्यक्ति, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजता है। और हमारी सरकार भी लोगों को जागरूक करने में और शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई अभियान चला रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसका मकसद है हर बच्चे को हर गली तक स्कूल पहुँचाना, और आज गांव-गांव में स्कूल खुल चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले लोग कहते थे कि बेटियों को पढ़ाकर क्या फ़ायदा, वो तो पराए घर चली जाती हैं। आज वही बेटी डॉक्टर, पुलिस, टीचर बनकर परिवार का नाम रोशन कर रही है। सरकार मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म भी देती है। सरकारी स्कूलों में अब किताबें, बैग, जूते, मोजे, ये सब मुफ्त मिलते हैं, ताकि जो गरीब माँ बाप हैं उन्हें ये सोचना ना पड़े कि हम पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा पाएंगे। मिड डे मील की योजना सर्व शिक्षा अभियान में एक मील का पत्थर साबित हुई है। साथियों, अगर पढ़ाई के साथ साथ पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन भी मिले तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं आएंगे। पौढ़ शिक्षा और साक्षरता अभियान, जो माँ बाप स्कूल नहीं जा पाए उनके लिए शाम को क्लासेस लगती हैं, ताकि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख सकें, अपने कुछ सरकारी काम कर सकें, बैंक जा सकें, अपने फॉर्म भर सकें। और साथियों, इन सब कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि आज गली के हर नुक्कड़ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल का बस्ता लटकाए स्कूल को चले जा रहे हैं। पहले लड़कियों को या तो शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, या फिर उन्हें चौथी या पाँचवीं के बाद घर बैठा दिया जाता था। आज वही लड़कियां 10वीं, 12वीं और कॉलेज तक जा रही हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। पहले मजदूर का बेटा भी मजदूर ही बनता था, आज वो कंप्यूटर सीख रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है और अच्छी नौकरी कर रहा है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। याद रखिए साथियों, ईंट पत्थर से घर बनता है, लेकिन शिक्षा से पीढ़ियाँ बनती हैं। आज आपने जो पसीना बहाया है वो आपके बच्चों की कलम पर स्याही बनकर उभरेगा। हमारी मेहनत हमारे बच्चों के पंख बनेंगी, ताकि वो खुले आसमान में उड़ सके, बिल्कुल इस गीत के बोलों की तरह।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, जिस प्रकार सरकार आम जन को शिक्षित करने के लिए कई अभियान चलाती है, वैसे ही सरकार स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी कई अभियान चलाती है। लेकिन सिर्फ अभियान चलाने या कानून बनाने मात्र से हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव तो आते हैं लोगों की सोच से। तो स्वच्छता अभियानों में आम जनों की क्या भूमिका हो सकती है, आइए इस विषय पर सुनते हैं ये वार्ता, जिसके वार्ताकार हैं राकेश कुमार मौर्य।
3: स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और जान है तो जहान है, ऐसे न जाने कितने ही सुंदर पंक्तियां आपने सुनी होंगी। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वातावरण का होना अति आवश्यक है। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन की उपयोगी कर्म है। कुछ वर्षों पहले की बात करें तो प्रत्येक जन सुबह उठकर नित्य कर्म करने के

पश्चात साफ सफाई में लग जाता था। फिर वो चाहे खेती बाड़ी हो, घर हो, पशुपालन या अभी और कुछ। यही कारण था कि मनुष्य दीर्घ काल तक स्वस्थ रहता था। काम करने से मांसपेशियां चलती हैं और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। उन दिनों लोगों में स्वच्छ रहने की एक सनक सी थी, एक दूसरे के परस्पर सहयोग की भावना रहती थी, जिससे एकता व अखंडता को बल मिलता था। कुछ दशकों पहले महात्मा गांधी ने स्वच्छता का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया। जी हाँ, आपको याद आ गया, उन्होंने शौचालय तक साफ किया था, जिसके बारे में मैं, आप और हम सभी ने सुना है। गांधी जी ने संपूर्ण विश्व को ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता के बारे में बताया, जिसे हम सभी राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी ने स्वच्छता की मिसाल कायम की, क्योंकि उनके पास झिझक नहीं थी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस सफाई करनी है और कर दिया। उन्होंने संपूर्ण जीवन आम आदमी बनकर जिया। वहीं हम हैं, हमारे घरों के सामने कूड़ा, करकट, गंदी नालियां इत्यादि रहती हैं, लेकिन हम साफ सफाई नहीं करते, क्योंकि साफ सफाई करने में हम अपनी प्रतिष्ठा का हनन समझते हैं। हम यह नहीं समझते हैं कि हमें यहाँ रहना है, और यदि कूड़ा करकट सड़ता है तो तमाम प्रकार के वायु देश से पर्यावरण दूषित होता है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं और चिकित्सा की जरूरत होगी। ग्रामीण परिवेश में तो लोग जागरूक नहीं होते, परंतु शहरों में भी वैसा ही माहौल दिखने को मिलता है। अगर हम हफ्ते में एक दिन कुछ घंटे निकाल लें तो हमारे आसपास का वातावरण अच्छा हो सकता है और हमारे कार्यों का भी सामाजिक स्तर पर सराहना हो सकती है। वर्तमान परिवेश में गंगा सफाई अभियान एक ज्वलंत मुद्दा है। गंगा का घाट आज स्वच्छ नहीं है, जबकि प्रत्येक श्रद्धालु की श्रद्धा उसमें निहित है। लाखों करोड़ों भक्त इस पावन नदी में प्रतिदिन डुबकी लगाकर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, परंतु हमारे कृत्यों से गंगा दूषित हो गई है। इसकी सफाई के लिए कई सारे अभियान चलाए गए, किंतु हम आज भी इस काम में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि प्रत्येक लोग इस काम के प्रति जागरूक नहीं है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक यह अभियान सफल नहीं हो सकता। ऐसे ही न जाने कितनी ही नदियां हैं और सभी दूषित हैं। इन नदियों के दूषित होने की सबसे बड़ी वजह शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले नाले, कूड़ा करकट या कल कारखानों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी है। सभी शहर लगभग किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं और सबका यही आलम है। यदि नदियों को प्रदूषित होने से बचाना है तो नदियों से शहर को दूर बसाना चाहिए, ताकि नदियों का पानी गंदा नहीं हो, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में यही पानी शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जाता है और आप सभी इसका सेवन भी करते हैं। अगर आप सभी लोग यह सोच लें कि हमें स्वस्थ रहना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस कूड़ा करकट बॉक्स में डालें, गंदे नाली के पानी को शहर से दूर कर गिराया जाए, और हाँ, इसमें नगर निगम को भी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। यह आप सभी के पहल से ही होगा। अभी कुछ महीने पहले वर्तमान केंद्र सरकार ने नदियों की सफाई के लिए अहम कदम उठाया, जो कि सराहनीय है। आप अपना कुछ समय दान कर स्वच्छता अभियान से जुड़कर राष्ट्र के विकास में शामिल हो सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कैसे दृढ़ संकल्पित होकर हम अपने आसपास का वातावरण और अपने समीप के लोगों की समस्या दूर कर सकते हैं। एक बूढ़ी हड्डियों का ढांचा, जिसे आज हम माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, उस इंसान ने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। जी हाँ, वह नाम है दशरथ मांझी। आम लोग रास्ते की समस्या से ग्रसित थे, लेकिन बीच में था बड़ा सा पहाड़। लेकिन पहल करने वाला कोई न था। जब दशरथ मांझी फावड़ा लेकर निकल पड़े और कई वर्षों तक पहाड़ को काटते रहे, और एक दिन उन्होंने रास्ता बना दिया। आज पूरा देश उस इंसान पर फख्र महसूस करता है। तो सुना आपने कि कैसे आपकी छोटी सी पहल क्या कुछ कर सकती है और आप विकास की दौड़ में सार्थक साबित हो सकते हैं। स्वच्छता का आम आदमी से गहरा संबंध है। इसके बिना स्वच्छ वातावरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे देश में मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि मजदूर को हम हेय दृष्टि से देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह वर्ग सबसे ज्यादा परिश्रम कर देश के विकास का आधार बनाता है, चाहे वह मनरेगा हो, नगर निगम, ट्रांसपोर्ट या रेलवे। मजदूर वर्ग को आप सभी आम जन मानते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा वर्ग है जो हम सभी के लिए कठिन परिश्रम कर अच्छा वातावरण बनाता है। अगर हमारे आसपास साफ सफाई होगी तभी हम भी प्रसन्न रह सकते हैं। आप

0: चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, एक नई चेतना जागरूक करने की जरूरत है। 2 अक्टूबर को हमने महात्मा गांधी की जयंती मनाई है, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। सत्य अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने विचारों की पराकाष्ठा साबित की थी। वर्तमान केंद्र सरकार ने 25 सितंबर से मेक इंडिया और स्वच्छ भारत निर्माण कार्यक्रम 2 अक्टूबर से आरंभ किया है, जिसकी अगुवाई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि आज तक आम लोगों ने सफाई और स्वच्छता का जिम्मा लिया था, पर अब मैं स्वयं ही झाड़ू लगाऊंगा और देशवासियों से निवेदन करता हूं कि वे भी अपने आसपास का वातावरण सही करने के लिए श्रमदान करें। यह एक अच्छी पहल है नैतिकता और मानवता की। अगर राष्ट्रीय स्तर पर यह काम होता है तो प्रत्येक जन श्रम को करने को तैयार होगा और खुद को साफ करने में हेय दृष्टि से नहीं देखेगा। ऐसा नहीं कि आम जन ही साफ करेंगे, कोई भी इंसान काम कर सकता है, चाहे वह किसी पद पर ही कार्यरत क्यों न हो। यह आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप अपने शहर को साफ सुथरा रखें, नैतिकता एवं कर्तव्य का बोध कराएं। स्वच्छ भारत निर्माण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की चौंगोर चर्चा हो रही है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वास्तव में आम जन भी योजना बना चुका है कि अगर प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान में झाड़ू लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फेसबुक, ट्विटर से जुड़ा हर आदमी इस अभियान के प्रचार प्रसार में लग चुका है। ग्रामीण तबका भी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत निर्माण के लिए तैयार है और देखे तो वास्तव में एक नई वैचारिक सोच की उत्पत्ति हुई है, जहां चारों ओर भारत के नवनिर्माण में छोटा हो या बड़ा, आम हो या खास, सबने विकास की धारा से खुद को जोड़ने का प्रयास किया है, जो कि सराहनीय है। आप सबकी भूमिका स्वच्छ भारत के निर्माण में सराहनीय कदम है, जो आपको पूरे समाज और पूरे विश्व के लिए सर्वोत्तम उदाहरण बनेगा।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता स्वच्छता अभियान में आम जन की भूमिका विषय पर, और वार्ताकार थे राकेश कुमार मौर्य।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, आज ज्ञान सागर में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर जो धरती से 90 फीट नीचे स्थित है, और जहां शिव जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का निवास है। आज इस गुफा में कलयुग के रहस्य छुपे हुए हैं। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा की। ये गुफा एक प्राचीन शिव मंदिर है जो समुद्र तल से 1670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वही ये गुफा धरती से 90 फीट गहरी है। इसमें जाने के लिए बस एक पतला सा सकरा रास्ता है, जिसमें चेन पकड़कर आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है। स्कंद पुराण के अनुसार ये गुफा त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण द्वारा खोजी गई थी, और आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से खोजा था। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। ये गुफा पत्थरों से बनी हुई है, जिसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ के जाने का रास्ता बेहद चिकना है। गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई 1.50 फीट है, और शिवलिंग को छूने की लंबाई 3 फीट है। यहाँ शिवलिंग को लेकर ये मान्यता है कि जब ये शिवलिंग

गुफा की छत को छू लेगा। वो दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। सकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध के आवेश में आकर जब गजानन का मस्तक शरीर से अलग किया था तो वो सर यहीं इसी गुफा में आकर गिरा था और आज भी वो सर उसी गुफा में रखा हुआ है। उस गुफा की दीवारों पर हंस बने हुए हैं जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये ब्रह्मा जी के हंस हैं। गुफा के अंदर एक हवन कुंड भी है। इस कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था जिससे सभी सांप जलकर भस्म हो गए थे। इस गुफा में 1000 पैर वाला हाथी भी बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ 4 खंभे हैं जो चारों युगों सतयुग, त्रेता द्वापर और कलयुग का प्रतीक है। कलयुग का खंभा धीरे धीरे कम हो रहा है जो इसके अंत की भविष्यवाणी को दर्शाता है। साथियों, सुंदर पहाड़ियों से ढके इस तीर्थ स्थान के दर्शन का महत्व कुछ और ही है। तो अगली बार जब भी आपको किसी रहस्यमयी और अद्भुत जगह जाने का मन हो तो वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन अवश्य कीजिए। एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। साथियों, अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी हमारे श्रमिक श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन

0: परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हान्यू और मलाडोनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपसे बात करने के लिए तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
3: मेरा मोबाइल नंबर
4: 8299। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan and the United Arab Emirates. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon ship. Iran's Revolutionary Guard said it has closed the Strait of Hormuz until further notice and warned of further action if US strikes continue. The mortal remains of 15 Indian nationals who lost their lives in yesterday's boat capsize near Phu Quoc Island in Vietnam are being transported to Ho Chi Minh City. The Indian Embassy in Vietnam today informed in a social media post that after the completion of necessary formalities there, the mortal remains will be transported to India at the earliest. The embassy said that 15 survivors of the tragic boat accident have been discharged from hospital after receiving medical treatment and are returning to India. Home Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone of a series of development projects of the Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Gujarat. On the occasion, the minister also launched a massive tree plantation drive under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign, which saw the planting of over 1 crore 25 lakh saplings across his Lok Sabha constituency, Gandhinagar. Union Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Mr. Chauhan said Prime Minister Narendra Modi has taken several key initiatives to tackle climate change and global warming. Union Minister for Housing and Urban Affairs Manohar Lal has emphasized the need for adopting environmental friendly technology in construction sector on the 172nd Foundation Day of Central Public Works Department in New Delhi. The Union Minister also virtually laid

0: the foundation stone of National Council for Public Works building at Ghaziabad in Uttar Pradesh. The government has refuted a fake image circulating on social media claiming that ethanol blended petrol can cause problems in a vehicle's fuel tank. The Press Information Bureau's fact-check unit has termed the claim as false. It said the Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that E20 petrol supplied by oil marketing companies conforms to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards. The ministry said ethanol and petrol are completely miscible and do not separate or form layers when the fuel meets the prescribed standards. The United States, the United Kingdom and a dozen other Western and Asian countries today reasserted that China's expansive claims in the South China Sea are illegal based on a 2016 arbitration ruling. A joint statement issued by the 14 nations said they reject destabilizing actions in the disputed waters that threaten regional stability. The South China Sea remains a major flashpoint with repeated territorial standoffs involving China and the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei and Taiwan. In the historic one-off women's test between hosts England and India at the Lords in London, visitors were 306 for 7 in their second innings on day 3 when reports last came in. England were bowled out for 170 runs in their first innings yesterday, while India were all out for 285 runs. Semi-final lineup for FIFA World Cup has emerged with Argentina, England, France and Spain sealing spots in the last four. England defeated Norway 2-1 while Argentina outclassed Switzerland 3-1 in the quarter-final this morning. That is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर. श्रोताओं, 7:10 हुए हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा. इस कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है आओ बचाएं कल के लिए जल. वार्ताकार हैं डॉक्टर आरपी पांडे.
2: यह तथ्य सर्वविदित है कि जल ही जीवन है. यह मानव जीवन, समस्त जीवधारियों तथा वनस्पतियों हेतु परम आवश्यक एवं आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है. लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण, सिंचित भूमि में वृद्धि, जल का दुरुपयोग, जल प्रदूषण और स्वच्छ जल के सिकुड़ते स्रोत आदि के कारण जल की समस्या वर्तमान सदी की सर्वाधिक ज्वलंत एवं महत्वपूर्ण समस्या बन गई है. और यदि इसका अतिशीघ्र समाधान न किया गया तो विश्व में भूमि एवं पेट्रोल के स्थान पर पानी के लिए युद्ध लड़े जाने लगेंगे. विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा जल से आवृत है, किंतु इसमें मीठे जल का अंश मात्र 3% है. इसमें भी 2% बर्फ और मात्र 1% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है. विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति जल संपदा के मामले में बेहतर है. हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल संसाधन उपलब्ध होता है, जिसमें 30 करोड़ हेक्टेयर मीटर मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है. इस 30 करोड़ हेक्टेयर में से 70% जल प्रदूषित होकर बर्बाद कर दिया जाता है. इस कारण भारत में विशाल जलराशि उपलब्ध होने पर भी भारी जल संकट व्याप्त है. इस जल संकट की समस्या के समाधान एवं पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की रक्षा हेतु एक प्रभावी जल प्रबंधन की आवश्यकता है. प्रभावी जल प्रबंधन से ही भविष्य के लिए जल की बचत की जा सकती है. इस हेतु सर्वप्रथम लोगों में जल की बचत के प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिए. जागरूक नागरिक ही समाज को एक अच्छी राह दिखा सकते हैं. जल प्रबंधन के अंतर्गत वर्षा जल का संग्रह करना, नदियों एवं नहरों में जल प्रवाह को नियमित करना, जल की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना, स्वच्छ जल का निश्चित भंडार बनाए रखना, भूमिगत जल का निश्चित भंडार बनाए रखना, भूमिगत जल का अनियमित दोहन रोकना एवं भूमिगत जल स्तर को सदैव एक निश्चित गहराई तक बनाए रखना जल प्रबंधन के मुख्य कार्यक्रम हैं। यदि हमारा समाज मिलकर इन सभी जल प्रबंधन के कार्यक्रमों का पालन करता है तो निश्चित ही भविष्य में आने वाले जल संकट से बचा जा सकता है. जल संरक्षण के अंतर्गत वर्षा के जल चक्र से लेकर समुद्र में पहुंचे।

0: तक की प्रक्रिया को नियंत्रित करना सबसे बड़ा कार्य है। जल का संचय जल की समुद्राभिमुख गति को कम करने से ही हो सकती है। इसके लिए नदियों में अनेक स्थानों पर छोटे बड़े बांध बनाना, वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करना मुख्य कार्य है। इससे धरातलीय जल प्रवाह बाधित होगा तथा भौम जल स्तर में सुधार होगा। जल स्तर को ऊपर उठाने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका यह है कि ग्रामों एवं शहरों में घरों की नालियों का जल तालाबों में एकत्रित किया जाए। यह जल धीरे धीरे रिसता हुआ जमीन के अंदर पहुंचता है, जिससे जल का स्तर ऊपर आता है। एक तरीका यह भी है कि लोग अपने मकानों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए टंकियां बनाएं, जिससे कि घरेलू जल की जरूरतों को पूरा करने के साथ घर के अंदर एक बोरिंग भी करवा दें, जिससे के माध्यम से फालतू वर्षा का जल जमीन के अंदर भेज सकें। इस प्रकार पानी बर्बाद होने से बचेगा, साथ ही साथ जमीन के अंदर का वाटर लेवल उचित ऊंचा बना रहेगा। भारत में घरेलू पानी के उपयोग के साथ साथ सिंचाई कार्य में पानी का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। यदि हमारे किसान भाई सिंचाई की नवीन तकनीकों, माइक्रो तकनीक एवं ड्रिप तकनीक को अपनाएं, तो कम जल की खपत में अधिक सिंचाई का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए सिंचाई की छिड़काव पद्धति, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति आजकल कृषि फार्मों में खूब प्रचलित हो रही है। इसके द्वारा 25% से लेकर 50% तक कम पानी के खर्चे में अधिक सिंचाई की जा सकती है। इसी प्रकार ट्यूबवेल, तालाब एवं झीलों के पानी को भी खेतों तक ऐसी विधियों से, विशेषकर पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाएं, जिससे कि पानी बर्बाद होने से बचे। सामान्यतः भारत एवं विदेशों में नहरों का जल पीने के साथ साथ सिंचाई के लिए अधिक प्रयोग होता है। यह जल बम्बों, कच्ची नालियों, गूलों आदि के माध्यम से खेतों तक पहुंचता है। यह जल भी खेतों तक पहुंचते पहुंचते लगभग 25% बर्बाद हो जाता है। अतः इसकी बर्बादी रोकने के लिए बम्बे, नाली, गूलों को अच्छी तरह बांध कर रखा जाना चाहिए, साथ ही साथ इनका रख रखाव भी अच्छा होना चाहिए। आधुनिक युग में जल संरक्षण में सरकारी कार्यक्रमों के साथ साथ स्वयंसेवी संगठन भी भारी योगदान दे रहे हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में श्री राजेंद्र सिंह जी ने वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यक्रम चलाकर बहुत बड़ी हरियाली भरी भूमि पैदा कर दी है, जिससे वहां प्रदूषण से मुक्ति प्राप्त हुई है, साथ ही साथ स्वच्छ जल की समस्या भी कम हुई है। इसी के अंतर्गत तरुण भारत संघ नामक संगठन ने भी जल संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आजकल यमुना जल की सफाई के लिए मथुरा में सभी हिंदू मुसलमान युवक एक होकर जो कार्य कर रहे हैं, वो भी देशवासियों को नदियों की सफाई से संबंधित एक अच्छा पैगाम है। यदि हम सब मिलकर प्रदूषित नदियों, झीलों को स्वच्छ बना लें, सिंचाई एवं घरेलू पानी की बर्बादी रोक लें, वर्षा जल को संचित करें, नदियों के प्रवाह को नियंत्रित कर लें, छोटे छोटे बांध बना लें, तो हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि हम भविष्य में आने वाले जल संकट से बच सकते हैं और एक खुशहाल एवं जागरूक राष्ट्र का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे वार्ता आओ बचाएं कल के लिए जल। वार्ताकार थे डॉक्टर आरपी पांडे। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

0: केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्रा ने कहा, 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला, न्यास के अधीन ही करेंगे काम। और बारिश के बाद आगरा में यमुना और बलिया में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूर्वांचल के कई स्थानों पर बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पौधरोपण महाअभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत आज 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी के पौधों को रोपकर इस महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के असंतुलन को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि पर्यावरण के प्रति हर नागरिक अपने दायित्व का निर्वहन करे। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भौतिक विकास के साथ साथ प्रदेश में वनाच्छादन को विस्तार देने में सफलता हासिल की है।
1: यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है। नए नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने वनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास वाटिका की स्थापना, वन की आधारित कैलेंडर का विमोचन और मौलश्री का पौधा लगाकर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे और चेक भी प्रदान किए। इस अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्रदेश भर में चलाए गए वृक्षारोपण महाअभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।

0: वहीं प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने अभियान में हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पौधरोपण महाअभियान के तहत उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और माँ के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान है। आगरा के सिंगंद्रा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केपी मलिक ने वृक्षारोपण किया। कानपुर नगर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इटावा में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण किया। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। 14 जुलाई से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा के समय को मौजूदा 3 घंटे से घटाकर केवल 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भारत का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसमें टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर लगाए गए हैं, ताकि वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स काटा जा सके। हादसे की स्थिति में AI सक्षम कैमरे तुरंत NHAI नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर उन्नाव लालगंज के साथ साथ गंगा एक्सप्रेस से आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्रा ने आज अयोध्या में बताया कि रामकथा संग्रहालय की सभी गैलरियों की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। संग्रहालय में भगवान श्री राम के वनगमन से जुड़ी यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संग्रहालय के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। श्री मिश्र ने बताया कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें CEO की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे।
3: मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे, और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन CEO को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर CEO जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी।
4: EPFO की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज जालौन जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तरणताल और विकसित खेल परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में कल और 14 जुलाई को 2 दिन सभी जिलों में विश्व कौशल दिवस के अवसर पर वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में जीरो पॉवर्टी अभियान में चिन्हित गरीब परिवारों के युवाओं और दिव्यांगों को वरीयता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि इन 2 दिवसीय रोजगार मेलों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए। QR कोड के जरिए युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फिर रुचि और योग्यता के आधार पर विभिन्न कंपनियों में उन्हें रोजगार मिलेगा। इस सिलसिले में सभी जानकारी

0: युवाओं को आईटीआई में दी जाएंगी। 14 जुलाई को प्रयागराज जिले के नैनी स्थित मां गायत्री महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3000 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में कल से वर्षा का क्रम जारी है। मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
1: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि मानसून कब तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पे छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला आने वाले अगले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर थोड़ा बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।
0: उधर लगातार हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बलिया में गंगा, आगरा और इटावा में यमुना, बिजनौर में रामगंगा, झांसी में बेतवा और सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9 वर्षों में राज्य में भौतिक विकास के साथ वन क्षेत्र में भी हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्रा ने कहा, 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला, न्यास के अधीन ही करेंगे काम। और बारिश के बाद आगरा में यमुना और बलिया में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूर्वांचल के कई स्थानों पर बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सुगंध, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे।
4: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज का युग विज्ञान, तकनीक और आधुनिकता का युग है। आज हमारे बच्चों के पास ज्ञान प्राप्त करने के अनगिनत साधन हैं। पर क्या देखा है, ये सब होते हुए भी आज बच्चों के व्यवहार से एक चिंताजनक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। श्रोताओ, छोटी छोटी बातों पर बच्चों का गुस्सा करना, बात न मानने पर चिड़चिड़ापन दिखाना, धैर्य की कमी और आक्रामक व्यवहार आज अनेक बच्चों की जैसे सामान्य प्रवृत्ति ही बनती जा रही है। साथ ही ये केवल परिवार या विद्यालय की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यकीनन इसका प्रभाव भविष्य में समाज और राष्ट्र पर भी पड़ेगा, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार नागरिक और देश के भविष्य के निर्माता है। श्रोताओ, बच्चों में बढ़ते गुस्से के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जहां तक देखने में आता है उनकी बदलती जीवन शैली है। आज अधिकांश बच्चे मोबाइल, टीवी।

और वीडियो गेम में अपना समय अधिक बिताते हैं। यहां तक कि हिंसात्मक खेल, आक्रामक दृश्य और सोशल मीडिया का लगातार प्रभाव उनके मन और हृदय पर पड़ता है। साथियों, वे वास्तविक जीवन की अपेक्षा आभासी दुनिया में अपना समय अधिक बिता रहे हैं और यही वजह है कि उनका धैर्य कम होता जा रहा है और वे छोटी सी ही असफलता या मनचाही चीज न मिलने पर आक्रामक रवैया अपना लेते हैं। अगर श्रोताओं देखा जाए तो एक कारण ये भी है कि आजकल परिवार में संवादों की कमी है। जी हाँ, जिसे हम सरल भाषा में कहें तो बातचीत की कमी है। आज माता पिता अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना कम हो गया है। बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते और धीरे धीरे उनके भीतर तनाव और नाराजगी जमा होने लगती है, जो कि बाद में एक गुस्से के बड़े रूप में सामने आती है। अगर एक कारण और भी देखा जाए श्रोताओं, तो ये भी है कि आज प्रतिस्पर्धा जो अत्यधिक बढ़ी है, इसका भी बच्चों पर दबाव है। अच्छे अंक लाना, हर प्रतियोगिता में आगे रहने और दूसरों से बेहतर बनने की होड़ बच्चों के मन पर आज मानसिक दबाव डालती है। जब वे अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते तो बदले में उनमें निराशा और क्रोध उत्पन्न हो जाता है। श्रोताओ, और कौन कौन से कारण हो सकते हैं इस सब के, हम आपसे बात करेंगे इस गीत को सुनाने के बाद।

श्रोतो, आज बच्चों में बढ़ते जो गुस्सा है उसका एक कारण और भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनुशासन और संस्कारों की कमी है। साथियों, यदि बचपन से बच्चों में धैर्य, सम्मान, संयम और सहनशीलता जैसे मूल्य नहीं सिखाए जाते उन्हें, तो वे अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना नहीं सीख पाते और इसका परिणाम होता है कि वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री या नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाना भी है। साथियों, यदि शिक्षा के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, या यूं कहें कि अगर हम नहीं देते तो कहीं ना कहीं ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा। संस्कार बच्चों को सही और गलत का अंतर समझाते हैं, बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं, दूसरों की भावनाओं का आदर करना सिखाते हैं और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति देते हैं। साथियों, विद्यालय और परिवार दोनों की भूमिका इसमें समान रूप से महत्वपूर्ण है। विद्यालय में नैतिक शिक्षा, प्रेरणादायक कहानियां, योग, ध्यान, खेलकूद और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सहयोग, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का विकास किया जा सकता है। दूसरी ओर, परिवार में माता-पिता यदि स्वयं शांत, संयमित और सकारात्मक व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। जी हाँ श्रोताओं, बच्चे उपदेश से अधिक अपने बड़ों के व्यवहार का अनुसरण करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को केवल सफल बनने की नहीं, बल्कि श्रेष्ठ इंसान बनने की शिक्षा दी जाए।

समझाया जाए कि जीवन में हार जीत, सफलता असफलता और सुख दुख सभी आते हैं। इन परिस्थितियों का सामना धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से करना ही सच्ची सफलता है।

दहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर

जी श्रोताओं, बच्चों में खेलकूद, संगीत, कला, पुस्तक, पठन, प्रकृति के साथ समय बिताने,

और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर मिलने चाहिए। इससे उनका मानसिक संतुलन बना रहता है और वे अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीख जाते हैं। श्रोताओं, महापुरुषों का जीवन भी हमें यही शिक्षा देता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और धैर्य का मार्ग अपनाकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि क्रोध नहीं बल्कि संयम सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, यदि बच्चों को ऐसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से परिचित कराया जाए तो उनमें भी सकारात्मक सोच और अच्छे संस्कार अवश्य विकसित होंगे। साथियों, ये कहना उचित होगा कि बच्चों में बढ़ता गुस्सा केवल उनकी समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। इसका समाधान केवल नियम बनाने से नहीं बल्कि प्रेम, संवाद, अनुशासन और संस्कारों के समन्वय से संभव है। श्रोताओं, शिक्षा और संस्कार बेशक एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है जबकि संस्कार उसे महान बनाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश उज्जवल, सुरक्षित और संस्कारित बने तो हमें आज के बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य, धैर्य, करुणा और जिम्मेदारी भी सिखानी होगी, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भारत का भविष्य है और उनका चरित्र ही राष्ट्र के भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ अब सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: कम ऑन अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे?
2: हाँ कम ऑन, खुदा ही रोशन कर सकता भाई।
3: ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

श्रोताओ, ये था फिल्म दिलवाले का गीत, जिसे स्वर दिया था कुमार सानू ने। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था नदीम श्रवण का। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक के स्वर में फिल्म राज से ये गीत। शब्द रचना समीर की, संगीत रचना नदीम श्रवण की।

श्रोताओ, ये आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की, बोल थे समीर की, संगीत था नदीम श्रवण का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। श्रोताओ, अब आपको सुनाते हैं कुछ पुराने नगमे।

श्रोताओं, उजाला फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत में ढाला था शंकर जयकिशन ने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म फकीरा से ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

श्रोताओ, ये आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म थी आपकी परछाइयां। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। चित्रपट संगीत में आइए सुनते हैं कुछ और गीत।

सावन को आने दो। श्रोताओ, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना। गीत को लिखा था गौहर कानपुरी ने। राजकमल के संगीत निर्देशन में आवाजें थी जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की। आइए अब सुनते हैं नरेंद्र चंचल का गाया फिल्म बेनाम से ये गीत। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, शब्दकार संगीतकार राहुल देव वर्मन।

श्रोताओं, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म दयावान के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को

0: वो हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4

रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के

0: men's singles final between top seed Jannik Sinner and second seed Alexander Zverev underway in London. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि अब नाए हुरमुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में, जिनमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी, उनके जस्ते खाकी को हो ची मिन्ह सिटी लाया गया है। अब उन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के यैनिक सिनर और दूसरे दर्जे के एलेक्जेंडर ज़वेरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत ने आज ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। भारत ने इस मदद पर ओमान के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के जारी वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। उसने एक बार फिर कहा है कि सिफारती हल के लिए जारी मुजाकिरात जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल किया जा सके। अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुली है जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। अमरीका ने यह ऐलान ईरान के पासदारान इनकलाब IRGC की तरफ से आबनाए हुरमुज को मजीद कोई नोटिस जारी किए जाने तक बंद करने के ऐलान के कुछ ही घंटे के बाद किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहे जाने के बाद दिया गया है कि आबनाए हुरमुज कमर्शियल जहाजों के लिए खुली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि समंदर में जहाजों की आमदोरफ्त आबनाए हुरमुज के रास्ते जारी है और अमरीकी फौजें बकौल उसके ईरानी जारहियत हिरासानी धमकियों और मनमाने ऐलानात के बावजूद आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैनात हैं। उसने जोर देकर कहा कि ईरान आबनाए हुरमुज को कंट्रोल नहीं करता और महफूज राहदारी वाले रास्ते खुले हैं। वियतनाम के फूकोक जजीरे के करीब तेज रफ्तार कश्ती पलटने के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों का जस्द खाकी आज हो ची मिन्ह सिटी पहुंच गया है। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जरूरी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद महलूकीन के जस्द खाकी को हवाई जहाज के जरिए भारत लाया जाएगा। सफारतखाने ने कहा कि वह कौंसिलखाना और वियतनाम के हुक्काम के साथ राबते में हैं ताकि जस्द खाकी की वतन वापसी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके। सिफारतखाने ने बताया कि महफूज निकाले गए 17 भारतीय सयाहों में से 16 सयाह को भारत लाया जा रहा है, जबकि एक सयाह जिसकी हालत संगीन बनी हुई है फूकोक के एक अस्पताल में जेरे इलाज है। इस दौरान वियतनाम के सदर ली मिन होंग ने हादसे की जांच का हुक्म जारी किया है और हुक्काम को हिदायत दी है कि कसूरवारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। आज मुल्क भर में शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का एहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से पूरी रियासत के लिए वृक्षारोपण महायज्ञ मुहिम का आगाज किया। उन्होंने लिंक एक्सप्रेसवे के नजदीक मुबारक त्रिवेणी यानी 3 दरख्त नीम पीपल और बरगद के पौधे लगाए।

0: गए। उन्होंने ताल रिंग रोड पर मुलसरी का पौधा भी लगाया। रियासत में आज 35 करोड़ 27 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर एक तारीख रकम की है। एक पेड़ मां के नाम के उन्वान से पूरी रियासत में शाम 6:12 तक कुल 35 करोड़ 27 लाख 89,926 पौधे लगाए गए। ये हुकूमत के 35 करोड़ के निशाने से 27,89,000 ज्यादा पौधे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हुसूलियाबी पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने भी इस मुहिम के हिस्से के तौर पर जन भवन के अहाते में संदल का पौधा लगाया। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: प्रोग्राम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में संदल के 29 पौधे लगाए गए। जन भवन के अफसरान और मुलाजिमीन ने सिंधी खेड़ा के सरकारी गर्ल्स होम की लड़कियों के साथ मिलकर शजरकारी की इस मुहिम में हिस्सा लिया। बहुत से वजरा और अवामी नुमाइंदों ने एनजीओ अरकान मुख्तलिफ महकमों तलबा और आम लोगों के साथ मिलकर मुहिम में हिस्सा लिया। ये मुहिम रियासत के सभी 18 डिवीजनों और 75 जिलों में चलाई गई। रियासत में इस साल 5 जून को भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में इस साल मजमूई तौर पर 40,29,00,000 पौधे लगाए गए हैं। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर गांधीनगर में भी बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके दौरान आज उनके लोकसभा हलके में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र प्रोग्राम और पर्यावरण संरक्षण संकल्प तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शजरकारी माहौल के तहफ्फुज के लिए इंतहाई अहम है और इससे एक पायदार मुस्तकबिल की यकीन दहानी होती है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर में शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके तहत पूरी रियासत में 21,00,000 पौधे लगाए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज जोर देकर कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि वो मुल्क के समाजी मुसलहीन के अजीम विरसे का एहतराम करें और उसे बरकरार रखें। जनाब राधाकृष्णन आज नई दिल्ली के द्वारिका के मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाजी मुसले और मुजाहिद आजादी मन्नथु पद्मनाभन के मुजस्मे की नकाब कुशाई और मन्नम स्मृति मंडपम का आगाज करने के बाद बात कर रहे थे। मजमे से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि मन्नथु पद्मनाभन ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इंसाफ तालीम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ करती। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800117800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप पर भी भेज सकते हैं। लोग इसके लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और वजीर आजम को बराह रास्त अपनी तजावीज SMS पर मौसूला लिंक के जरिए राब्ता कायम कर सकते हैं। आइंदा नशरे के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएंगी। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से इस माह की 17 तारीख तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड में भारतीय ताजिरों के एक आला सतह के वफद की क्यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद यूरोप के साथ भारत की इक्तिसादी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने तामीर के शोबे में माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए, जिसका अहतमाम नई दिल्ली में तामीरात के महकमे के 172वें योम तासीस के मौके पर किया गया था, वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि कोई भी इमारत या ढांचा तामीर करते हुए उसकी पायदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कल एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का आज इंतकाल हो गया। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम निस्फ सरनिगुं रहेगा। इसके अलावा उस दिन कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी साथी थे। उनकी उम्र 71 साल रही। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान ग्राहम अमरीका की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक एक अहम आवाज के तौर पर उभरे थे। अमरीका, बरतानिया और एक दर्जन दीगर मगरबी और एशियाई ममालिक ने आज दो बार जोर देकर कहा है कि बहिरे चीन में चीन के वसी दावे 2016 के सालिसी के फैसले की बुनियाद पर गैर कानूनी हैं।

0: मंगोलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट्स चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के यानिक सिनर और दूसरे दर्जे के अलेक्जेंडर ज़ेवरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: In our national program of features, we now bring you a feature titled PG Accommodations, a home away from home.

0: पिता पंडित सोमनाथ मरडूर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मरडूर ख्याल, ठुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर। Awarded the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar by the Sangeet Natak Academy, Kumar Mardur stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior Gharanas, along with training under his father Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other Gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
0: Aaj ke is karyakram mein aapke saath tabla par Pandit Satlingappa Desai Kallur aur हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मरडूर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chhaya Nat, Vilambit Jhumra, Inayat Ho, Drut Teen Taal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drut Teen Taal.

0: छायानट। अब श्री कुमार मर्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री, विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।
1: यू जस्ट हर्ड राग छायानट। श्री कुमार मर्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री, विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी धारवाड़ एंड रिलेड फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू फोक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman today. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Oman authorities for their support. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region.